मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो घड़ी में भोर के 5:56 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है इस मंगल ध्वनि के साथ।

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के।

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। भोर के 6 बजने को है। अब पहले हिंदी में और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।

0: श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Ajay Kumar. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today. He will dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat across the road, power and industrial sectors.

श्रोताओं, ये भक्ति रचनाएं आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। विषय है कर्म योग, वाचक स्वर जशपाल सिंह राठौड़ का।
1: गीता में कर्म योग पर इतना विशद विवेचन है कि मद भगवत गीता स्वयं कर्म का पर्याय बन गई। एक सूत्र है, कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन है। इसमें एक बात ये स्पष्ट होती है, हमारे हाथों में केवल कर्म ही है, फल पर नियंत्रण हमारा नहीं होता है। पुरुष व महिलाएं जब भी आराधना स्थल पर जाते हैं, श्रद्धा भाव से ईश्वर को जो कुछ भी अर्पित करते हैं, वह भी तो ईश्वर का ही दिया होता है। हमारा तो वहाँ भी कर्म ही होता है।

0: जीवन के चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी तो कर्म पर ही आधारित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि मोक्ष का मूल आधार भी कर्म है। ये भी सत्य है कि कर्म रहित जीवन का कोई औचित्य नहीं होता। कहा भी जाता है, अकर्मण्य व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई वजूद नहीं होता है। परिवार, समाज, देश के लिए वो भार स्वरूप होता है। येषां विद्यान तपोन दानम ज्ञानम शीलम गुणोन धर्मः ते मृत्यलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आप जानते हैं, किसान वर्षा होने के बावजूद यदि खेत में बिजाई और निराई नहीं करता है, खेत की समय पर उचित देखभाल नहीं करता है, तो वह अच्छी फसल की उम्मीद कैसे कर सकता है। अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं भी अपना अध्ययन कड़ी मेहनत से नहीं करते हैं, यानी एकलव्य जैसी एकाग्रता, कलाकार जैसी सतत साधना और रियाज नहीं करते हैं, तो सफलता की उम्मीद करना बेमानी होता है। किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति कार्यरत है तो उसे कर्म की प्रधानता तो स्वीकार करनी ही होगी। जीवन में कर्म ही एक ऐसा योग है जिसके करने से हम अपना अभीष्ट लक्ष्य अर्जित कर पाते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात, मात्र इच्छा करने अथवा हवा में किले बनाने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, उसके लिए करना होता है उद्यम, परिश्रम। उसी प्रकार जैसे जंगल में सिंह सोया रहता है, विचरण नहीं करता है, तब ऐसे में उसके मुख में स्वतः ही कोई आहार नहीं जाता है, यानी शेर को भूखा रहना होता है। कर्मयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, व्यक्ति का कर्ता भाव। जहाँ भी व्यक्ति कर्ता भाव बनकर कर्म करता है, वहीं प्रकृतिजन्य परिणाम जुड़ जाते हैं। अतः उचित ये है कि कर्म भी करें और कर्ता भाव का बंधन या अहंकार व्यक्ति पर हावी न हो। व्यक्ति चाहे कोई भी क्यों न हो, उसे कर्म तो करना ही होता है। कर्म ही लक्ष्य प्राप्ति अथवा सफलता का मूल स्रोत होता है। जीवन यात्रा में चरैवेति चरण वै मधु विदंती ही, यानी चलते रहो निरंतर कर्म करते रहो। अनवरत चलने वाले पथिक कर्म योगी को ही जीवन के माधुर्य और सौंदर्य के दर्शन होते हैं।
1: अभी आप आज का चिंतन सुन रहे थे। विषय था कर्म योग। वाचक स्वर था यशपाल सिंह राठौड़ का। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरत पर है।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 988 किलो हर्ट्स, DRM 909 किलो हर्ट्स, FM 100.1 किलो मेगा हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारी आज की तीनों सभाओं में प्रसारित मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। 7:10 पर खेतिहर आवाज़ के कार्यक्रम में

0: मुलाकात का महत्व विषय पर ग्रामीण श्रोताओं को जानकारी दी जाएगी। दोपहर 12:50 पर कार्यक्रम होगा खेत खलियान, जिसमें आज बुवाई से पहले ध्यान रखने योग्य बातें विषय पर ग्रामीण श्रोता सुनेंगे जानकारी। चौपाल कार्यक्रम होगा संध्या 7 बजे, जिसमें गीतानो गजरो उपलब्ध हुए तो बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी ग्रामीण श्रोता सुन पाएंगे। मानसकान आप सुना करते हैं 7:20 पर, आज सुनेगा भाग संख्या 265। मुख्य स्वर होगा राजन साजन मिश्रा और अनुराधा पौडवाल का। राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम मरुमंगल में हमारे आज के कलाकार होंगे मंथन डाबरा। प्रोग्राम सुप्रभात आप सुना करते हैं 7:30। श्रोताओं, आज पर्यावरण दिवस है, इस विषय पर वार्ता होगी पर्यावरण संरक्षण। वार्ताकार होंगे धर्मवीर सारस्वत। कुछ युगल फिल्मी गीतों का लुत्फ आप ले सकते हैं 9:30 पर। 10:34 पर कार्यक्रम होगा गा मेरे मन का, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतमाला। दिन में 11 बजे आप हमारे केंद्र से सुनेंगे। दोपहर 12:05 पर कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए। कुछ और फिल्मी नगमे आप सुन सकते हैं दोपहर बाद 2:30। प्रोग्राम एक ही फिल्म से होगा रात 8:00। संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीत। साप्ताहिक पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी की खुशबू होगा रात 9:30 पर। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे दुर्गा राम। कुछ और फिल्मी नगमे आप सुनेंगे रात 10:30। दिन में 10 बजे आप सुनेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष पर डॉक्टर M.M. सक्सेना से नवीन सिसोदिया की बातचीत, झोंक माहिती। प्रोग्राम सराइकी होगा 6:05 पर। युवा श्रोता, शाम 5 बजे युवाणी कार्यक्रम में PM सूत्रीय फॉर्मूला पर जानकारी। लू से बचें, स्वस्थ रहें। राजस्थानी लोकभाषा, शिक्षा और कौशल विषय पर जानकारी और टुडे हिस्ट्री विषय पर जानकारी युवा श्रोता अपने इस कार्यक्रम में सुन पाएंगे। बहनों के लिए उनका अपना कार्यक्रम होगा घर आंगन दोपहर 1:05 पर, जिसमें आज विश्व पर्यावरण दिवस विषय पर जानकारी। गर्मी में हल्के रंगों के कपड़े क्यों पहने, टिप्स आप सुनेंगे रेफ्रिजरेटर की दुर्गंध से छुटकारा कैसे पाएं। एक अन्य विषय पर जानकारी होगी टी टाइम चाहत या जरूरत। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं हमारे केंद्र से 8:45 पर, दोपहर 12:30 पर और रात 9:15 पर। रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से संध्या 6:40 पर जिले की चिट्ठी रिले की जाएगी। अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की तीनों सभाओं में प्रसारित मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरत पर है। 6:55 होने को है और पहले संस्कृत में, 7 बजे हिंदी में, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम्। प्रवाचको नरेंद्र दत्त सेमवाल। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरातस्य दमनक्षेत्रस्य भ्रमणं करिष्यति। सः सूरतनगरे राजमार्गस्य विद्युदुत्पादन प्रकल्पस्य औद्यमिकक्षेत्रस्य च कृते 818,000 करोड़ रुपयाणां बहुविध विकास परियोजनानां समर्पणं शिलान्यासं च करिष्यति। श्रीमोदी सूरतनगरे 200 शय्यायुक्तं ESIC इति चिकित्सालयम् अपि उद्घाटयिष्यति, यत् विशिष्टक्षेत्रेषु आधुनिक माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाः प्रदास्यति। प्रधानमंत्री

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने

0: देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पशु पालन को काम धाम है जो करे, और पशु पालन को काम धाम इशू है कि जो हर परिवार है जो थोड़े या बड़े पैमाने पर करे, पर इमें विशेष तौर कई भाई लोग तो इशा जगह पशु पालन को व्यवसाय है जो भी रोजगार है भांगे, पर इमें व्यापार सुनियोजित ढंग से या पशु पालन को काम धाम है जो अच्छी तौर तरीके से करा तो वो भी अपने ये कैसे किसान की अर्थव्यवस्था में बड़ो ठोस आधार है जो प्रदान करे। ये पशुओं ने आप रखा तो मान वर्ष भर ती फसल का अवशेष है तूड़ी है नीर है इन पर आपने पालना पड़े, पर इंगे सागे सागे हरियो चारो भी आप टेम सारू दे छठ बारह महीना हरियो चारो लगातार मिले कोनी जैके शू पशुओं में बढ़ोतरी जकी कम हो जाए दूध उत्पादन में कमी आ जाए और इंगे सागे सागे प्रजनन क्षमता पर भी इंगो विपरीत प्रभाव पड़े। इन समस्या से निजात पाने खातर आपने वैज्ञानिक पशुओं खातर अजोला पशु आहार है जो विकसित करो है, तो वो आहार के तरीके से आप इन्हें उत्पादन कर सका और क्या वो पशुओं ने खिलाया जाए। अजोला दुधारू पशुओं खातर उत्तम गुणवत्ता युक्त पूरक आहार है। अजोला जल स्तर पर मुक्त रूप से तैरने वाली तेजी से बढ़ने वाली जलीय फर्न है। अजोला छोटे छोटे समूह में सघन हरित गुच्छे की तरह तैरती रहे, वो उत्तम गुणवत्ता युक्त वालों प्रोटीन को अच्छो स्रोत है। पशुओं खातर प्रोटीन को मुख्य स्रोत है। अजोला की पिनाटा जाती है जिकी पाई जाए। अजोला सामान्य अवस्था में वो फर्न 3 दिन में दुगुनी हो जाए। पशुओं खातर आदर्श आहार है। किसान भाइयों अजोला उत्पादन तकनीक के बारे में बातचीत करा। छायादार जिग्या पर आपने 20x3x1 फुट यानी के 20 फुट लंबी 3 फुट चौड़ी और 1 फुट गहरी आकार की अपने क्यारी जिकी बना लेनी चाहिए। इन क्यारी में प्लास्टिक सीट अच्छी तरह बिछा गए और ऊपर के किनारा पर मिट्टी शुभिने दबा कर मजबूत कर देनी चाहिए। इन क्यारी में 1 इंच मोटी उपजाऊ मिट्टी की परत जकी भी अपने बिछा देनी चाहिए। 5-7 किलोग्राम गोबर जो को 2-3 दिन पुराना होना चाहिए। 10-15 लीटर पानी में घोल बना के मिट्टी में अपने फैला देना चाहिए। क्यारी में 7-8 इंच तक पानी भरना चाहिए। जैके शू क्यारी में पानी की गहराई है जैकी लगभग आधे फुट तक हो जाए। अब उपजाऊ मिट्टी और गोबर की खाद ने जल में अच्छी तरह घोल बना के क्यारी में अपने घाल देना चाहिए। इन घोल में 2 किलोग्राम ताजा अजोला ने फैला देनी चाहिए। इनके बाद में 1 लीटर पानी को अच्छी तरह से अजोला पर छिड़काव कर देना चाहिए जैके शू अजोला आपकी सही स्थिति में आ जाए। अब क्यारी ने नायलोन जाली से ढक देनी चाहिए क्योंकि इनमें कीड़ा है कागला है या चिड़िया जका खावे ने तो इन्हें नायलोन की जाली से अपने ढक देना चाहिए। 15-20 दिन में अजोला की बढ़वार जकी हो जाएगी और 21वें दिन अपने लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला प्रतिदिन प्राप्त होने लग जाएगा। अभी अजोला ने अच्छी तरह अपने निकाल गए और साफ पानी से धो गए और दुधारी पशुओं ने देना चाहिए। 1.5 से 2 किलोग्राम ताज़ा अजोला ने बांटे के माँ खिलाना चाहिए और दुधारू पशुओं ने देना चाहिए जैके शू 15% तय दूध उत्पादन में जैकी बढ़ोतरी हो जाए। किसान भाइयों पशुओं की शारीरिक वृद्धि में और दूध उत्पादन में वो उत्तम लाभ देवे। शुरू की अवस्था में अजोला की मात्रा प्रति पशु कम देनी चाहिए, धीरे धीरे इन्हें बढ़ानी चाहिए। अजोला में प्रोटीन रेशा इथर सत्व कैल्शियम फॉस्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम ए तो वही है। इंगे सागे सागे अति सूक्ष्म तत्वों की बात करा जिया मैग्नीज है जिंक है तांबो लोहा सोडियम अंग भी पूर्ति हो करे। अब अजोला जो आप क्यारी में गाले इंगे रख रखा होगा भी अपना तौर तरीका ध्यान में रखना चाहिए। क्यारी में जल स्तर लगभग आधो फुट तक होना चाहिए। 3 महीना में 1 एकड़ पानी और मिट्टी ने बदलते रहना चाहिए जबकि शू नई क्यारी के रूप में दोबारा संवर्धन हो जाए। अजोला की अच्छी बढ़वार खातर तापमान 20-35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। सर्दी की ऋतु में तापमान कम हो जाए तो क्यारी ने पुरानी बोरी या टाट या चादर से ढक के रखनी चाहिए। 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला की उपज प्राप्त करने खातर आपने 20 ग्राम सुपरफास्फेट और 50 किलोग्राम गोबर को घोल बना के हर महीने क्यारी में अपने मिला देना चाहिए। इस अपने हर रोज 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला जकी प्राप्त हो जाएगी। नहीं तरह से अजोला आहार दे के पशुपालन भाई लोग लाभ है जो को उठा सके। पर अब हूँ चालू राम राम सा राम राम।
1: खेती रवास्ते कार्यक्रम में अभिग्रम श्रोता सुन रहे थे जानकारी अजोला आहार का महत्व। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए मुखरम परिहार की आवाज में ये लोक भजन सुनिए।

मुकराम परिहार की आवाज में अभी आपने ये लोक भजन सुना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 7:20 होने को हैं। कार्यक्रम सुनिए मानस गान। आज सुनिए भाग संख्या 265, मुख्य स्वर राजन साजन मिश्रा और अनुराधा पौड़वाल का।

मानस गाना आपने अभी सुना। आज आप सुन रहे थे भाग संख्या 265। मुख्य स्वर था राजन साजन मिश्रा और अनुराधा पौड़वाल का। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कार्यक्रम सुनिए सुप्रभात। दोस्तों बात करेंगे संगीत पर। जहां शब्द खत्म होते हैं वहीं से संगीत शुरू होता है। संगीत से ही साज और आवाज है, संगीत से ही अंत और आगाज है। चिड़ियों के चहकने में संगीत का आभास है, सागर की लहरों में संगीत की आवाज है, बादल के गर्जने में संगीत का ही तो शोर है, बारिश के बरसने में संगीत का ही सोच है, धड़कनों में सांसों में जीवन का संगीत है, संगीत से लगाव संगीत से ही प्रीत है। आप कितने भी तनाव में हो अगर पसंदीदा गीत आप सुन लें तो आपका दिमाग रीसेट हो जाता है। संघर्ष भरे दिनों में संगीत बहुत सुकून देता है। संगीत हिम्मत देता है। कभी आप बहुत ज्यादा तनाव में हो तो कुछ ऐसे गीत जो मोटिवेट करते हैं आपको सुन लिए जाएं तो आराम मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए संगीत मनोबल को बढ़ाने वाला होता है।

संगीत हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। गाने गाकर और संगीत बजाकर हम अपने मन की बात भी कह सकते हैं। संगीत समाज में मिलनसार भावना को भी बढ़ाता है। गाने और नृत्य के द्वारा लोग मिलकर आनंद और खुशी का अनुभव करते हैं। दोस्तों, संगीत हर किसी की सांस्कृतिक धरोहर का जरूरी हिस्सा है। अलग अलग संगीत ग्रंथों, रागों और तालों के माध्यम से हमें ये विरासत में मिला है। संगीत कई तरह का हो सकता है, जैसे शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, पॉप संगीत इत्यादि। तो दोस्तों, बातचीत और भी करेंगे, हम आपको गीत सुनवा दें। आवाज़ मुकेश की, फिल्म का नाम मधुमती।

सुहाना सफर और ये मौसम हसी, मधुवती फिल्म में अभी आपने मुकेश को सुना। सुप्रभात कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से, और मैं हूं आपके

0: आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत। दोस्तों, आज पर्यावरण दिवस है। आप जानते हैं कि हमारी वायु और पानी बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है। वायु प्रदूषण से हमारे आंखों में जलन, खांसी, अस्थमा, बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा खतरा वायु प्रदूषण से रहता है। लंबी अवधि तक यह हार्ट और ब्रेन पर भी असर करता है। एक अध्ययन के मुताबिक एक पेड़ लगभग 22 किलो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है एक साल में। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, अपने इस देश को हरा भरा बनाएं। हमारे केंद्र से कई बार आप सुनते हैं कि पानी की हर बूंद कीमती है, इसे व्यर्थ ना बहने दें। प्राणवायु ऑक्सीजन के साथ साथ जल ही जीवन है, इस विषय पर भी चर्चा करनी होगी। हमारा शरीर 70% जल से बना हुआ है, बिना जल के जीवन संभव नहीं है। तो दोस्तों, प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए अनमोल उपहारों को हम संभाल के रखें। प्राणवायु ऑक्सीजन के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और जल को दूषित होने से बचाएं और इसे व्यर्थ ना बहने दें। पर्यावरण दिवस पर हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता। पर्यावरण संरक्षण वार्ताकार धर्मवीर शर्मा।
1: श्रोताओं, पर्यावरण अर्थात हमारे जीवन का आधार है। पर्यावरण को बचाकर रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विश्व में प्रत्येक 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वीडन के स्टॉकहोम में पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तब से ही हर वर्ष यानी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष पर्यावरण को बचाने एवं इसको शुद्ध रखने के लिए एक नया संकल्प लिया जाता है। 2026 की थीम है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीयकरण और सूखे से निपटना। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है दुनिया की 40% भूमि खराब हो चुकी है। भारत में भी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाके इसकी चपेट में आ रहे हैं। आज के मशीनीकरण और आधुनिकता की दौड़ में पर्यावरण बहुत ही प्रदूषित होता जा रहा है। हमें अगर स्वस्थ जीवन जीना है और आने वाली पीढ़ियां एवं सभी जीवों को बचाना है तो पर्यावरण को शुद्ध रखना होगा। इसी संकल्प के साथ भारत सरकार ने भी एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत देश भर में लाखों की संख्या में पौधे लगाए जा रहे हैं। यही पौधे विशाल पेड़ बनकर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राण वायु और शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। श्रोताओं, हमें वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हर दिन अपने स्तर पर हर छोटे बड़े कदम उठाने होंगे। श्रोताओं, ये प्रकृति हमसे कुछ नहीं मांगती है, बस ये तो हमें देना ही जानती है। हरे भरे पेड़, ऑक्सीजन, खूबसूरत वादियां, नदियां, जिन्हें देखकर हम कितना सुकून पाते हैं और शुद्ध सांस ले पा रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया से हरे पेड़ों की तस्वीरें लगा देने से पर्यावरण बचने वाला नहीं है। सांस तो हम प्रत्येक सेकंड ले रहे हैं, जो कि इसी प्रकृति की वजह से संभव है। अशुद्ध होते वातावरण को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करने होंगे। अपने जीवन में अधिक से अधिक पौधारोपण करना होगा। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना होगा। प्लास्टिक का अधिक प्रयोग भी पर्यावरण को बिगाड़ रहा है। सब्जी लेने जब हम बाजार जाएं तो घर पर बनी कपड़े की थैली में ही सब्जी या अन्य सामान लेकर आएं, या बाजार में उपलब्ध जूट की बनी थैलियों का प्रयोग करें। पानी को व्यर्थ ना गवाएं। पानी का सदुपयोग पर्यावरण को बचाने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। बिना जरूरत के बिजली या पंखों को चालू रखना प्रकृति पर दबाव बनाना होता है। इसलिए बिजली और जल का सही उपयोग भी पर्यावरण को शुद्ध बनाने की तरफ एक सराहनीय कदम है। जहां तक संभव हो हमें पैदल

0: चलना चाहिए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाने के लिए वाहनों, मोटरसाइकिल इत्यादि का प्रयोग कम करना या बंद करना भी पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक अच्छा प्रयास साबित होगा। श्रोताओं, आजकल घरों में RO वाटर प्यूरीफायर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जितना पानी पीने के लिए प्रयोग होता है उससे दुगना पानी पीने की पाइप से व्यर्थ ही चला जा रहा होता है। इसलिए हमें RO के पीछे एक बाल्टी रखनी चाहिए। उस पानी से घर में पोछा लगा सकते हैं या फिर गमलों में लगे पौधों में पानी देकर पर्यावरण को बचाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। श्रोताओं, हमारी संस्कृति में प्रकृति को भगवान माना गया है। हमने नदियों को माँ की संज्ञा दी है, पेड़ों को देवता माना है। पीपल, बरगद, तुलसी की पूजा क्यों की जाती थी? क्योंकि यह हमें सबसे अधिक ऑक्सीजन देते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हम इन्हें भुलाई जा रहे हैं। आज परिंदे हमारे घर के आंगन में नहीं आते क्योंकि हमारे घरों में पेड़ ही नहीं होते हैं। तो आइए हम भी संकल्प लें, पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अधिक से अधिक पौधे लगाएं, जो लगे हुए हैं उनमें समय समय पर पानी दें, अपने वाहनों को भी सही रखें ताकि उनके इंजन से प्रदूषित करने वाला धुआं ना निकले। ध्वनि प्रदूषण को कम करें, प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें, जल और बिजली का सदुपयोग करें। 5 जून केवल पर्यावरण दिवस मनाकर ही ना रुकें बल्कि पर्यावरण जीवन की शुरुआत करें और पर्यावरण को बचाने के अपने अपने प्रयास जारी रखें। पानी में गंदगी के नाले छोड़ना, कारखानों से निकलने वाला प्रदूषित जल, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेतों में अत्यधिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने से भूमि खराब हो जाती है जिससे फसलें कम होने लगती है, इसका स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर होता है। इन सब को हमको रोकना होगा। इन्हीं सब के कारण जल प्रदूषित हो रहा है और बीमारियां बढ़ती जा रही है। पेड़ों की अत्यधिक कटाई होने पर जंगल खत्म हो रहे हैं जिससे बरसात कम हो रही है और भूमि बंजर होती जा रही है। कारखानों से निकलने वाला हानिकारक धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण को बढ़ाता जा रहा है। इन सब को हमें रोकना होगा। अपने वाहनों को अच्छी तरह से रखना होगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे और प्रदूषित जल को अलग जगह इकट्ठा करना होगा। इसी तरह से ध्वनि प्रदूषण वाहनों को सही ढंग से ना रखने से भी फैलता जा रहा है। वाहनों पर तेज आवाज में स्पीकर चलाना, इससे बहुत ही ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है क्योंकि इससे वातावरण में बहुत ज्यादा शोर होता है जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है, विशेषकर बुजुर्ग लोगों को। पुराने वाहनों में भी इंजन की तेज आवाज निकलती है क्योंकि वो अच्छी तरह से रिपेयर नहीं किए जाते। इस प्रदूषण से भी बहुत प्रदूषण फैलता है। कारखानों से निकलने वाला शोर भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें पर्यावरण को बचाने के लिए सबको मिलकर प्रयास करने होंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे और जल, वायु, ध्वनि, ताकि इनका प्रदूषण ना फैले। इन सब प्रयासों से हम स्वच्छ हवा में सांस ले सकेंगे। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे।
1: पर्यावरण संरक्षण, अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे, वार्ताकार थे धर्मवीर शर्मा। श्रोताओं, आज पर्यावरण दिवस है, चलो आज एक वादा करें, धरती मां से नाता जोड़ें, जो हमने दिया उसे जहर अब उसे अमृत से मोड़ें। कटते पेड़ चीखते हैं, सुनो जरा उनकी पुकार, सूखी नदियां पूछती हैं कहां गया वो प्यार दुलार। धुआं उगलती चिमनियां, सांसों की करती चोरी, प्लास्टिक की बेड़ियों में जकड़ी नदियां भूली भाली, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हर आंगन को हरा बनाएं, पानी की हर बूंद बचाएं, कचरे को आदत से हटाएं। यह धरती नहीं विरासत में मिली, बच्चों से उधार ली है, साफ हवा, नीला अंबर उन्हें भी तो सौंपनी है। तो चलो ऐसा है प्रकृति का आज सहारा बनाएं, पर्यावरण दिवस मनाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं।

प्यासा सावन फिल्म का गीत अभी आपने सुना, सुरेश वाडकर और लता की आवाजों में। श्रोताओं, सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का उल्लंघन ना करें, इसी में ही आपकी सुरक्षा है। जीवन अमूल्य है, सड़क पर चलते समय हमेशा सावधानी बरतें, हमेशा ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, जेब्रा क्रॉसिंग पर चलकर सड़क पार करें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग हमेशा करें, और सबसे खास बात, गाड़ी चलाते समय कभी भी मोबाइल का प्रयोग ना करें। अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। अपने वाहन की पार्किंग का ध्यान रखें। अपने वाहन की पार्किंग इस तरह से करें कि दूसरे अपनी गाड़ी निकालते वक्त किसी समस्या का सामना ना करें। बहुत ज्यादा हॉर्न का प्रयोग ना करें, इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और लोगों की एकाग्रता पर भी प्रभाव पड़ता है। लेन अनुशासन बनाए रखें। अगर आप किसी लेन में चल रहे हैं तो उसे फॉलो करें और बिना किसी अनुदेश के लेन को ना तोड़ें।

गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश और लता की आवाज में शोर फिल्म से। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़के है ये मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। सुप्रभात कार्यक्रम से अपने दोस्त हरप्रीत को अनुमति दें। नमस्कार, और आप सुनते रहिए शोर फिल्म का ये एक दो गाना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरत का है। 8 बजने को हैं अब पहले समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर खबरनामा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रास्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4%

0: तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2 से 6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
1: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमेरिका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्र

0: स्वयं सेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate an

0: as a court sent Lokesh Bajaj, owner of the hotel where 21 people were killed in a devastating fire, to police custody, the Delhi government said it would withdraw its bed and breakfast policy, reports the Pioneer. A picture on its front page shows family members at the last rites of the victims of the fire under the headline, Eight Fires, One Broken Family. Still seething with anger at the Congress ditching it and switching over to the TVK immediately after the Tamil Nadu Assembly elections, the DMK announced its decision to boycott the INDIA block meeting slated for the 8th of June, says a top headline in the Statesman. Rebel Rita Brata's expulsion from TMC void, writes the Asian Age, quoting the West Bengal Assembly Speaker, adding that there are 61 MLAs in the rebel camp. And its editorial, titled Funding India's Climate Future, a $1 trillion question, the Hindu writes that India will require roughly $2.5 trillion by 2030 to meet its nationally determined contributions. Over the longer term, the cost of achieving net zero emissions by 2070 is estimated at $10.1 trillion, nearly three times India's current GDP. And finally, in what climbers are calling a miracle, 52-year-old Sherpa guide, who was presumed dead at Mount Everest after he vanished during descent on May 29th, was found alive 6 days after base camp, reports the Times of India under the headline, Sherpa survives six-day Everest ordeal, sans food, oxygen. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasana Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under-18 Asia Cup hockey tournament in Japan today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन जा रहे हैं, जहां वो तकरीबन 21,800 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो आयुष वजारत की योग 365 मुहिम के सफीर बने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के दबाव से भारत रूस ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। उन्होंने भारत को एक काबिल भरोसा साझेदार करार दिया है। और जापान में आज 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सूरत जा रहे हैं, जहां वो सड़कों, बिजली और सनती शोबों में 18,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। जनाब मोदी पहले हाजिरा जाएंगे और सनती और बुनियादी ढांचे के मौजूदा प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दोपहर को एक बड़े जलसायाम से खिताब करेंगे। जनाब मोदी शाम को दमन जाएंगे और तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: इलाकाई बुनियादी ढांचे को खास तौर से फरोग देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 8 लेन वाले वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के दरमियान कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वजीर आजम कबायली खत्तों और मुजस्मा इत्तेहाद तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए कौमी शाहराह 56 पर अहम हिस्से को 4 लेन बनाने का संगे बुनियाद भी रखेंगे। अवामी फलाह बहबूद की खातिर वो सूरत में एक जदीद 200 बिस्तर वाले ESIC अस्पताल का भी इफ्तिताह करेंगे, जो 24 घंटे इमरजेंसी और

0: 해. रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रूस की कलीदी साझेदारी की सताइश की है और जोर देकर कहा है कि रूस के साथ अपना इश्तराक कम करने के लिए भारत पर दबाव डालने की मगरबी मुल्कों की कोशिशें लाहासिल हैं और इनसे आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच रहा है। सरकर्दा आलमी खबर रसा एजेंसियों के सरबराहों के साथ गुफ्तगु में सदर पुतिन ने भारत की मुआशी तरक्की और उसकी आज़ादाना खारजा पॉलिसी को सराहा और कहा कि रूस भारत के साथ अपने इकतसादी राबतों को वसत देने का पाबंद है। सदर पुतिन ने कहा कि भारत की मुआशी तरक्की उस मेहनत का नतीजा है जो भारत सरकार वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कर रही है। रूस के सदर ने यह भी कहा कि अमरीका के साथ भारत के सिफारती राबतों से रूस के साथ वक्त की कसौटी पर खरे उतरने वाले उसके रिश्तों में कोई खलल नहीं पड़ता और ना ही ये कमजोर होते हैं। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक काबिल भरोसा साझेदार मानता है और किसी दूसरे मुल्क के साथ भारत के बाहमी ताल्लुकात की वजह से किसी तरह के मनफी मुजमरात की कोई बात नहीं है। सदर पुतिन ने मजीद कहा कि भारत एक अजीम मुल्क और अजीम जमहूरियत है और रूस के साथ अपने ताल्लुकात को वसअत देता रहेगा। आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुरे अर्ज़ पर ज़िंदगी बचाने के लिए बेदारी पैदा करने की खातिर माहौलियात से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 1973 से हर साल 5 जून को ये दिन मनाया जाता है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: फितरत और कुर्राए अर्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहौलियात के एतबार से मुस्बत इक़दामात करने के लिए बेदारी बढ़ाने की खातिर ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर माहौलियात जंगलात और आबो हवा की तब्दीली महकमे के मरकज़ी वज़ीर भूपेंद्र यादव एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत कौमी राजधानी में मैदान गढ़ी के मकाम पर नमो ऑक्सीजन पार्क में दरख्त लगाने के लिए एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ रियासतों में कई मरकज़ी वज़ीर वज़राए आला अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली माहौलियात के आलमी दिन की तकरीबात में शामिल होंगे। मुख्तलिफ मुहिम तकरीबात और इकदामात के ज़रिए ये दिन लोगों और मुख्तलिफ तबकों को इस बात की तरगीब देता है कि वो पायदार मुस्तकबिल की खातिर माहौलियाती चैलेंजों से निमटने के लिए तब्दीलियाँ करें। दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने सभी की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो ज़्यादा साफ, ज़्यादा सरसब्ज व शादाब और ज़्यादा पायदार मुस्तकबिल के लिए काम करें। माहौलियात जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के महकमे के मरकज़ी वज़ीर भूपेंद्र यादव ने सभी लोगों पर जोर दिया है कि वो आबो हवा और मुस्तकबिल की खातिर फितरत से तहरीक हासिल करते रहने के अहद का अदा करें। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में कल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह दो रोज़ा लेवेंडर फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे जिसका मौजू लेवेंडर गोज़ ग्लोबल है। चौथा लेवेंडर फेस्टिवल 6 और 7 जून को डोडा ज़िले के भद्रवाह के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मुनक्किद किया जा रहा है। CSIR IIIM की जानिब से मुनक्किदा इस फेस्टिवल का मकसद जम्मू कश्मीर में पर्पल इनकलाब और लेवेंडर पर मबनी देही कारोबार की मुसलसल कामयाबी का जश्न मनाना है। समुद्री अशिया की बरामदात पर दो रोज़ा कौमी वर्कशॉप आज से विशाखापट्टनम में शुरू हो रही है जिसका मकसद भारत की समुद्री अशिया की बरामदात में इजाफा करना और मुल्क भर में इस शोबे को मुस्तहकम करना है। इस वर्कशॉप में बेहतर बुनियादी ढांचे, कदर में इजाफे और पॉलिसी मदद के जरिए समुद्री अशिया की बरामदात में बेहतरी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साहिली कर्नाटक, केरलम, माहे, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और क्राइकल के हिस्सों में दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश का भी इम्कान है। मुल्क के शिमाल मशरक़ी हिस्से, ज़ैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार जज़ायर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में भी आज बारिश हो सकती है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान आज साहली आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में गर्मी और हब्स वाला मौसम रहेगा। आज जापान के ककामी गहारा स्टेडियम में 18 साल तक की उम्र के मर्दों के एशिया कप के हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। पूल ए में 9 पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन हासिल करने के बाद भारत सेमीफाइनल में पहुंचा है। भारतीय टीम का ग्रुप मरहले

0: आखिरी मैच चीनी ताइपे के साथ था, जिसे उसने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 13-1 से जीता था। भारतीय टीम को सिर्फ जापान के हाथों शिकस्त का सामना हुआ था। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम फाइनल में या तो जापान या पूल बी की सबसे ऊपर रहने वाली टीम का मुकाबला करेगी। खवातीन के अंडर 18 एशिया कप में भारतीय टीम ग्रुप मरहले में कोई भी मैच न हारने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है और आज भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे उसका चीन से मुकाबला होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, वेनेजुएला की कारगुजार सदर की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वजीर आजम आज गुजरात दादर नगर हवेली में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी का यह बयान भी नुमाया अहमियत के साथ शाये हुआ है कि खुद किफालत के लिए मुतबादिल तवानाई जरूरी है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के तआवुन से बने डिजिटल पोर्टल का ऐलान। मगरबी बंगाल की कानूनसाज असेंबली ने कौमी ई विधान एप्लीकेशन के निफाज के लिए मुफाहमत पर दस्तखत किए। कुछ बैन अलावामी खबरें इस तरह से हैं, अमरीकी कांग्रेस ने ट्रंप की आमरीत को रोका, तुर्की और सऊदी अरब की आबनाए हरमुस के मुतबादल के तौर पर रेल रूट पर गुफ्तगू।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन जा रहे हैं, जहां वो तकरीबन 21,800 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म ने आलमी योग आसन चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो आयुष वजारत की योगा 365 मुहिम के सफ़ीर बने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के दबाव से भारत रूस ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। और जापान में आज 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए जगजीत सिंह को।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप जगजीत सिंह को सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 9 बजने को है हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस आज, प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान 2026 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले और प्रदेश में नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत ये दिवस वर्ष 1973 से हर साल 5 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के सिद्धांत से प्रेरित होकर हम सभी मिशन लाइफ की भावना से काम करते रहेंगे, साथ ही हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और हरित बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सभी से प्रकृति संरक्षण, जल संवर्धन, वृक्षारोपण और पर्यावरण संतुलन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध

0: पर्यावरण के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया है। इस अवसर पर प्रदेश में आज से हरियालो राजस्थान 2026 अभियान शुरू होगा। राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में पौधा रोप कर करेंगे। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान की भी शुरुआत होगी। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। अभियान के दौरान इस मॉनसून सीजन में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पर्यावरण दिवस पर समारोह रखा गया है, इसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। प्रदेश में गंगा दशमी से शुरू हुए 15 दिन के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का भी आज समापन हो रहा है। अभियान के तहत आज जिला स्तरीय समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले भामाशाहों, संस्थाओं, पंचायतों, नगर निकायों और जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान दिए जाएंगे। अजमेर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बूढ़ा पुष्कर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान के तहत जन भागीदारी से जल संरक्षण से जुड़े कई कार्य किए गए।
1: जिले भर में अभियान के दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी की कई प्रेरक सफलताएं सामने आई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की सफाई, जल संग्रहण संरचनाओं के पुनर्जीवन और पौधरोपण गतिविधियों ने लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज समापन अवसर पर जल संरक्षण कार्यों का अवलोकन, तुलसी पौध वितरण, हरियालो राजस्थान अभियान की तैयारियां तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान ने जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने विश्वभर के खिलाड़ियों से चैंपियनशिप के बाद भी लोगों को योग के प्रति जागरूक करते रहने का आग्रह किया।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: 8 जून तक चलने वाली इस योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। गौरतलब है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को अलग अलग श्रेणियों में 6 पुरस्कार मिले हैं। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ये सम्मान प्रदान किए। योजना के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में राजस्थान को मई महीने के दौरान रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के सर्वाधिक आवेदन, इंस्टॉलेशन और वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में 2रा पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार 90 लाख से 1.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं वाले राज्यों की श्रेणी में दिया गया। इसी तरह सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन वाले 10 जिलों की श्रेणी में जयपुर को 7वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। ऊर्जा सचिव और राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आधारभूत ढांचे के विकास से राज्य के विकास को गति मिली है। वे कल जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की बैठक में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क तंत्र को मजबूत, सुरक्षित और व्यापक बनाने के लिए उनकी सरकार बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पारदर्शिता और गुणवत्ता के

0: साथ सड़कों का निर्माण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जालौर झालावाड़, श्रीगंगानगर कोटपूतली, अजमेर बांसवाड़ा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के संबंध में चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाकर उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है। मीडिया से बातचीत में श्री डांगी ने कहा कि वे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। श्री डांगी ने उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्र और राज्य नेतृत्व का आभार जताया। दूसरी ओर सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने कल रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। गौरतलब है कि इन 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में एक नए परिसंचरण तंत्र के सक्रिय होने से कल राजधानी जयपुर सहित 7 शहरों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाएं भी चलीं। सवाईमाधोपुर में रात से ही रुक रुक कर बरसात का दौर चलता रहा। भीलवाड़ा में कभी रिमझिम और कभी तेज बरसात का दौर जारी रहा। जिले के गुलाबपुरा, आसींद, शाहपुरा, जहाजपुरा और मांडलगढ़ सहित भीलवाड़ा में हुई बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों का कहना है कि कपास की फसल में ये बारिश फायदेमंद साबित होगी। पाली में अलसुबह तेज अंधड़ से पेड़ और होल्डिंग्स गिर गए। भरतपुर में भी आज सुबह हल्की बरसात हुई। कोटपूतली, बहरोड के नारायणपुर, विराटनगर और पावटा सहित विभिन्न स्थानों पर कल रात बारिश हुई। इससे कई इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहाँ आंधी और बरसात के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की आशंका जताई है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून केरलम पहुंच गया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 28 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस आज। प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान 2026 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। पीएम सूर्य घर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले। और प्रदेश में नए परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई स्थानों पर आंधी और बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मरुमंगल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए भारती सोनी को।

0: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिलें सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बींजवायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144-67186।
1: मोर मंगल कार्यक्रम में आप भारती सोनी को सुन रहे हैं।

मरुमंगल कार्यक्रम में आज आप भारती सोनी को सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं कुछ युगल फिल्मी गीत।

अभी आपने रफू चक्कर फिल्म में शैलेंद्र सिंह और आशा को सुना। हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें, दिन में 10 बजे आप सुनेंगे विशेष भेंट वार्ता पर्यावरण दिवस के अवसर पर डॉक्टर M.M. सक्सेना से नवीन सिसोदिया की बातचीत। समय दिन में 10 बजे।

0: महकी बहकी मस्त अदाएं, चाल शराबी है शावा, चाल शराबी है शावा, तेरी चाल शराबी है शावा।
1: जा जा।

दाग फिल्म में आप लता और मीनू पुरुषोत्तम को सुन रहे हैं। ये युगल फिल्म में गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत।

दो रास्ते फिल्म में आप मोहम्मद रफी और लता को सुन रहे हैं। युगल फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स, DRM 909 किलोहर्ट्स, FM 100.1 किलो मेगाहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप हमारे प्रसारण सुन रहे हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप कुछ युगल फिल्मी गीत सुन रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हम आपको सुनवा रहे हैं इस अवसर पर भेंट वार्ता डॉक्टर एम एम सक्सेना से। इनसे बातचीत कर रहे हैं नवीन सिसोदिया। तो आइए सुनते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह विशेष वार्ता।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस विशेष साक्षात्कार में हमारे आकाशवाणी सूरतगढ़ के स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर एम एम सक्सेना। आप एनवायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर हैं और पिछले 45 वर्षों से भारतीय रेगिस्तान की पारिस्थितिकी और जैव विविधता पर कार्य कर रहे हैं। आप एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हैं और शिक्षाविद, मैं कहूँगा। आपको IUCN के मेंबर के रूप में 2026 से 29 तक के कार्यकाल में पुनः नामांकित किया गया है। आप विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में जैसे MGSU, जोधपुर यूनिवर्सिटी में विभिन्न पदों पर प्रोफेसर, डीन, विभागाध्यक्ष और वाइस चांसलर तक आप रहे हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी आप मेंबर के रूप में रह चुके हैं। आपने PhD जो है एनवायरमेंटल साइंस में जोधपुर से की है। साथ ही आप एक रचनाकार भी हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं और आर्ट को अच्छी तरह समझते हैं। विटलिंग आर्ट जो है वो आपका हाल ही में जो हम कहें हॉबी के रूप में उभरा है। और साथ ही आपने बहुत सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गेस्ट के रूप में भी काम किया है और आपके बहुत सारे रिसर्च पेपर भी हैं जो प्रकाशित हुए हैं। 22 PhD स्टूडेंट्स आपके अंडर काम कर चुके हैं। साथ ही आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनरेबल डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त कर चुके हैं। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर एम एम सक्सेना उपस्थित हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार इन्होंने अपनी जो जर्नी है वो शुरू की थी और ये जो इनकी यात्रा रही है इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी जिससे हम समझ सकें कि एनवायरमेंटल साइंस क्या है, किस प्रकार विशेषकर भारतीय रेगिस्तान की जो पारिस्थितिकी है किस प्रकार काम करती है। सबसे पहले प्रोफेसर एम एम सक्सेना, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद। देखिए, मेरी एक यात्रा बड़ी सरल सी रही है।
1: जी सर।
2: स्कूल एजुकेशन मेरी जयपुर में हुई, सरकारी स्कूल में। खाकी नहकर, सफ़ेद कमीज पहन करके, पस्ता लटका करके हम जाते थे।
1: जी सर।
2: और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं जोधपुर आया और जोधपुर में वहीं हमने BSc, MSc, PhD तक की शिक्षा प्राप्त की।
1: जी।
2: MSc की जहाँ तक सवाल है, मेरा जुआलॉजी एक सब्जेक्ट था और जुआलॉजी में स्पेशलाइजेशन एनवायरमेंटल बायोलॉजी होता था और उसका प्रथम बैच था। तो प्रथम बैच में हमने पसंद किया कि हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में MSc करें, क्योंकि एक नया क्षेत्र था और हमारी रुचि भी थी एनवायरमेंट में। इसलिए MSc जुआलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन एनवायरमेंटल बायोलॉजी करते हुए उसी सब्जेक्ट्स में मैंने फिर PhD करी। जोधपुर के निकट एक लेक है सरदार समंद, सरदार समंद झील की पारिस्थितिकी पर मेरा PhD का काम है। और उस काम के साथ ही

0: करते हुए मुझे एक अवसर मिला कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग में मेरा चयन हो गया।
1: जी,
0: एक जूनियर साइंटिफिक पोजीशन में काम करते हुए मुझे और अवसर मिले कि मैं राजस्थान और गुजरात में फैले हुए मरुस्थल में विस्तृत काम कर सकूं और वहां की इकोलॉजी
1: जी
0: और वहां की जो जैव विविधता है उसका बारीकी से अध्ययन कर सकूं। इसी बीच मुझे एक अवसर मिला कि जोधपुर विश्वविद्यालय में मेरा चयन एक साइंटिस्ट के रूप में हुआ, जिसे रिसर्च साइंटिस्ट कहा गया, और रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर काम करते हुए राजस्थान की दो झील हैं, सांभर और डीडवाना।
1: जी,
0: ये दोनों ही खारे पानी की झील हैं और इस पर हमारे पास एक प्रोजेक्ट था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इन झीलों में एक विशिष्ट जीव पाया जाता है आर्टेमिया।
1: जी,
0: और इस आर्टेमिया पर जो हमने काम किया और उस समय प्रकाशित किया उसका आज तक 40 साल बाद भी बड़ा इम्पैक्ट है।
1: जी,
0: तो इस तरह से रुचि बनती गई और राजस्थान गुजरात इस क्षेत्र में फैले हुए रेगिस्तान में हमने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। विशेष करके जल पारिस्थितिकी पर जब मैं काम कर रहा था तो गुजरात में तो भावनगर से एक स्पंज जाति के वर्ग के एक स्पंज जाति का नई जाति का भी हमने खोज की
1: जी,
0: जिसको हमने बाद में नाम दिया कॉर्वो स्पॉन्जिला भावनगरेंसिस।
1: जी,
0: तो इस तरह से रुचि बढ़ती गई और काम आगे चलता गया। रिसर्च स्टूडेंट्स हमारे पास रहे, उनको भी हमने अलग अलग समस्याएं दी जिस पर वो काम कर सकें, जो पारिस्थितिकी तंत्र में जलीय तंत्र से भी संबंधित थी और स्थलीय तंत्र से भी।
1: डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि एनवायरमेंटल साइंस के प्रति आपका रुझान था, वो कैसे डेवलप हुआ, कोई विशेष इसमें आपको घटना याद आती है?
0: देखिए, मैं शुरू से ही क्षेत्र में यानी फील्ड में काम करने में इंटरेस्टेड था।
1: जी,
0: लेबोरेटरी के काम में मेरी रुचि उतनी नहीं थी जितनी की फील्ड में थी। पक्षियों का अध्ययन या विभिन्न प्रकार के पौधों का अध्ययन, ये शुरू से मेरी एक जिज्ञासा रही। विभिन्न प्रकार की जो पक्षी पाए जाते थे, बर्ड वाचिंग का काम मैं शुरू से करता था, तो मुझे ये रुचि थी कि कौन कौन से पक्षी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं।
1: जी,
0: इसी तरह से और दूसरे छोटे या बड़े एनिमल्स।
1: जी सर,
0: और क्योंकि बॉटनी का भी स्टूडेंट था तो विभिन्न प्रकार के पादप यहीं क्यों पाए जाते हैं और किसी क्षेत्र में क्यों नहीं पाए जाते, प्राणी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं और किसी क्षेत्र में क्यों नहीं पाए जाते, इस तरीके एक अभिरुचि थी। और उसको हमारे संबल मिला हमारे शिक्षकों से, हमारे शोध निर्देशकों से, तो उन्होंने गाइड किया और उससे रुचि जो थी और ज्यादा गहरी से गहरी होती है।
1: जी बिल्कुल। और आपको लगभग 45 वर्ष हो गए इस क्षेत्र में काम करते हुए। हम अगर समझना चाहें कि भारतीय रेगिस्तान जो काफी लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है, इसकी पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसकी क्या एकल है या फिर आप कहेंगे कि कुछ कुछ दूरी पर बदलती रहती?
0: जी देखिए, भारतीय मरुस्थल जिसको अपन थार रेगिस्तान मोटे तौर पर कहते हैं, थार पारकर से थार रेगिस्तान आज हम कहते हैं, और मोटे तौर पर क्योंकि अब हिंदुस्तान में ही काम कर रहे हैं तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट या इंडियन डेजर्ट के नाम से इसको पुकारते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इंडियन डेजर्ट का जो मैक्सिमम पार्ट है, करीब 70% से अधिक, वो हमारे राजस्थान में, कुछ पार्ट इसका गुजरात में है और थोड़ा बहुत पार्ट जो अब ग्रीन हो चुका है वो पंजाब और हरियाणा में भी।
1: जी
0: देखिए, इस रेगिस्तान की जो भौगोलिक परिस्थिति है, आप जानते हैं कि हमारे उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर जाएं तो इसके पश्चिमी अरावली रेंज जो पार हो रही है राजस्थान के नक्शे से, उसके सिर्फ पश्चिमी भाग में रेगिस्तान है लेकिन पूर्वी भाग में रेगिस्तान नहीं है। तो अरावली रेंज को हम एक इस तरह की रेखा के रूप में मान सकते हैं कि ये डिमार्केट करता है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट की परिस्थितिकी निश्चित रूप से अपने आप में विशिष्ट है। दुनिया में बहुत सारे रेगिस्तान है, ठंडे रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है, हमारा रेगिस्तान एक गर्म रेगिस्तान है। इसके कुछ विशिष्ट करेक्टर्स हैं, जैसे एनुअल रेनफॉल यहाँ पर 30 सेंटीमीटर या इससे कम रहता है एवरेज। यहाँ पर तापीय परिवर्तन दिन के हों, रात के हों और मौसमी हों, ये बहुत ही एक्सट्रीम है। जहाँ आप देखते हैं कि 0 से 50 तक टेम्परेचर रेंज करता है, दिन और रात के टेम्परेचर में भी बड़ा वेरिएशन है।
1: जी।
0: तीसरी चीज जो है वो यहाँ पर पानी की कमी, या तो पानी है नहीं सरफेस वाटर, और है तो बहुत कम है, और जो कुछ है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है या कहें कि क्षारीय है।
1: जी।
0: और ग्राउंड वाटर का जहाँ तक सवाल है, ये भी बहुत गहरा है जिस तक पहुँच बहुत मुश्किल है, और है भी तो बड़ा खारा या कहीं कहीं पर तो फ्लोराइड और नाइट्रेट युक्त। इस सब परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर भोजन का भी एक अभाव है, फोडर जो पशुओं के लिए होना चाहिए वो भी कम है।
1: जी।
0: तो चाहे मानव जाति हो, चाहे पौधे हो, चाहे पशु पक्षी हो, ये सभी लंबे पीरियड से यहाँ पर आकर के अडेप्ट हुए। और अडेप्शन या जिसको हम अनुकूलन कहें, ये एक्लिमेटाइजेशन नहीं है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का नहीं है, इसमें सैकड़ों हजारों वर्ष लगे हैं जहाँ पर प्रजातियां अपने आप को इन परिस्थितियों के लिए अनुकूल कर पाई। इसलिए मैं इसको एक स्पेशल इकोलॉजिकल जोन कहता हूँ। जैसे आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, इस तरह से ये SEZ एक स्पेशल इकोलॉजिकल जोन है जहाँ पर पौधे प्राणी अनुकूलित हैं। आप मान के चलिए कि एक ऊंट जो है वो दलदल में नहीं रह सकता।
1: बिल्कुल।
0: यहाँ का जो ब्लैक बक और चिंकारा है वो किसी दलदली या हरे क्षेत्र में उतनी सफलता से नहीं रह सकता। यहाँ के जो जर्बिल्स हैं जिसको अपन डेजर्ट के

0: चूहे कहते हैं,
1: जी
0: वो उतनी सफलता से और क्षेत्रों में नहीं रह सकते। यही सच है यहाँ की वनस्पति के बारे में, और यहाँ की जो वनस्पति है वो भी अपने आप में विशिष्ट है। यही नहीं, मैंने यहाँ के जलीय जीवों पर भी बहुत काम किया। यहाँ की जो एल्गी है वो भी विशिष्ट है,
1: जी
0: यहाँ के जो सूक्ष्म जलीय जीव हैं वो भी अपने आप में विशिष्ट है। और आपने जो एक सवाल किया कि पूरा रेगिस्तान क्या एक जैसा है,
1: जी
0: जी ऐसा भी नहीं है। मैं गुजरात में भी बहुत जगह गया, और भुज में जो गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी है, गाइड जिसको नाम से जानते हैं, उनके साथ मेरी यूनिवर्सिटी का एक MOU भी है।
1: जी
0: वहाँ की परिस्थिति की और यहाँ की परिस्थिति को हम तुलनात्मक रूप से भी अध्ययन करते हैं। कच्छ क्षेत्र की जो परिस्थिति की है वो हमारे रेगिस्तान जो राजस्थान का है इससे कुछ भिन्न है।
1: जी
0: वहाँ पर दलदली क्षेत्र है, कच्छ का क्षेत्र आप जानते हैं कि वो पूरा रन ऑफ कच्छ, जिसको हम व्हाइट डेजर्ट भी कहते हैं, पूरा नमकीन क्षेत्र है, नमकीन सतह पूरी भूमि पर फैली हुई है लंबे समुद्र के किनारों पर। और उन परिस्थितियों में जो जीव वनस्पति और प्राणी रहते हैं वो हमारे इस क्षेत्र के यानी राजस्थान के क्षेत्र से भिन्न है।
1: तो जो कच्छ का क्षेत्र आपने बताया, तो क्या वो थार रेगिस्तान का हिस्सा है?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अच्छा
0: वो समुद्री तट तक किसी समय में ये हमारा क्षेत्र भी माना जाता है कि समुद्र के अंदर ही था। धीरे
1: बिल्कुल।
0: धीरे समुद्र रिसीट करता गया और उसके साथ जो गुजरात के क्षेत्र से होता हुआ वहां तक पहुंच गया। तो निश्चित रूप से आप देखिए कि सौराष्ट्र का क्षेत्र और भुज का क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र रेगिस्तान ही है,
1: जी
0: जो कुछ हद तक रेगिस्तान राजस्थान के रेगिस्तान से मिलता है लेकिन कुछ मायने में भिन्न भी है।
1: जी डॉक्टर
0: और
1: साहब, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो श्रोता हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि जिस वनस्पति को हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जो जीव जंतु हम हमारे पास देखते हैं, उनकी महत्ता क्या है। जैसे हम बात करें यहाँ उगने वाली वनस्पति की, कैर है, सांगरी है, ये सब चीज़ें जो है इनको हम अगर मेडिसिनल यूज़ भी इनका देखें, या फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पौधे हैं औषधीय है, जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। जैसे डेजर्ट का ही एक पौधा अगर हम कहें एलोवेरा, एलोवेरा
0: जी
1: भी
0: जी
1: डेजर्ट का ही है,
0: हाँ
1: जो हाल ही के वर्षों में इतना चर्चा में आया है।
0: जी जी
1: तो यहाँ हम देखते हैं कि जितने भी वेजिटेशंस हैं उनमें कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं।
0: एग्जैक्टली देखिए, मैं इस पर थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा आपको।
1: जी
0: जो मैंने शुरू में कहा कि ये सारी चीज़ें अनुकूलित हैं, और पेड़ पौधे और प्राणी ही अनुकूलित नहीं है, हम लोग जो रेगिस्तान के वासी हैं वो भी इसके लिए अनुकूलित हैं।
1: जी
0: हमारे को पर्याप्त जल नहीं मिलता था, तो आप देखिए हमने जल संरक्षण के लिए अपने आप को कैसे व्यवस्थित किया।
1: जी
0: एक लोटे पानी से 5 जने अपनी प्यास बुझा लेते हैं, हम पानी को झूठा नहीं करते।
1: बिल्कुल।
0: एक तगारी पानी लेकर के उसमें नहा भी लेते हैं और कपड़े भी धो लेते हैं। ये हमारी दिनचर्या इस तरह से हमने अपने आप को ढाल लिया।
1: बिल्कुल।
0: और जहाँ तक हमारे भोजन का सवाल है, देखिए भोजन में हमारे को हरी वनस्पति या हरी सब्जियाँ नहीं मिला करती थी। हमारे पास साल भर ऐसे साधन नहीं होते थे कि हम फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रेश फूड प्राप्त कर सकें।
1: जी
0: तो उसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर पापड़, बढ़िया, अचार,
1: जी
0: ये किस तरह से हमने विकसित किए
1: बिल्कुल।
0: कि इनको हम साल भर उपयोग कर सकें। आज जिस मौसम में हमें काचरे मिल रहे हैं, जिस मौसम में हमें मतीरे मिल रहे हैं, जिस मौसम में हमें सांगरी मिल रही है, उसको उस सीजन में लेकर ग्वारफलियां तक सुखा करके और हम पूरे साल काम में लेते थे। तो ये एक प्रकार का अनुकूलन था कि हम किस तरह से। अब रही बात, इसको हम कुछ हद तक मजबूरी भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था।
1: ऑप्शन ही नहीं थे।
0: जी हाँ, तो अब सांगरी आज तो एक 5-स्टार होटल्स की लग्जरी बन गई है।
1: बिल्कुल
0: कैर, कुमटिये, सांगरी जो आप बाजार में जाएं तो 1500 रुपये किलो है।
1: बिल्कुल।
0: किसी समय में ये वाइल्ड हुआ करती थी और
1: वाइल्ड
0: आज भी
1: थी,
0: वाइल्ड ही है।
1: आज भी वाइल्ड ही है।
0: जी, और इनको तोड़ कर लाते हैं। अब क्योंकि इसकी कमर्शियल वैल्यू पता पड़ गई तो जो किसान भाई हैं वो भी सचेत हो गए और अब उन्हें पता है कि इस सांगरी की क्या वैल्यू मिल सकती है। तो उसको हम घर में काम में लेने की बजाय बेचें तो ज़्यादा शायद लाभ मिल सकता
1: बेचने का
0: है,
1: उसको वो प्रायोरिटी रखते हैं।
0: प्रायोरिटी। और मेडिसिनल प्लांट्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, देखिए कि हमने जो भी मेडिसिंस, मेडिसिंस क्या कहूँ मैं, भोजन भी कहूँ, तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस था।
1: जी
0: शायद हमारे पूर्वजों ने कई ऐसी चीज़ें खाई होंगी जो विषाक्त रही होंगी
1: हो सकता
0: और
1: है।
0: फिर उनको अवॉइड किया कि ये खाने योग्य है, ये खाने योग्य नहीं है। और इसी तरह से मेडिसिन भी इवॉल्व हुई कि इसका इस रोग में लाभ मिला, इसमें लाभ नहीं मिला, आँख के दूध से हानियां हुई।
1: जी
0: तो सांगरी जहाँ तक है, कैर, कुमटियाँ हैं कि पेट के लिए लाभकारी हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पूर्वजों ने उनका मेडिसिनल उपयोग देखते हुए उनको प्रमोट किया।
1: जी
0: किसी समय तो चाय भी एक औषधि के रूप में काम में ली जाती थी। ये इतनी फ्रिक्वेंट नहीं थी कि हर घर में चाय पी जाए,
1: जी
0: सर्दी जुकाम होता तो चाय बनती थी। तो इसका उपयोग मेडिसिनल था, लेकिन मेडिसिनल उपयोग को जब बाहर लोगों ने जाना तो इन वनस्पतियों का, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया एलोवेरा का, ये तो एक सकुलेंट प्लांट है जिसके अंदर बहुत मात्रा के अंदर जल रहता है।
1: जी
0: और अब तो इसका इस तरह से उपयोग करने लगे कि इसको आप इससे नहा लीजिए, इसको शरीर पे लगा लीजिए, इसको बालों में लगा लीजिए।

0: इसको लगा के शेव कर लीजिए, इसको खा लीजिए,
1: जूस
0: इसका
1: बना
0: अचार डाल
1: लीजिए।
0: लीजिए, इसके जूस पी लीजिए, और क्या कुछ नहीं कर लीजिए एलोवेरा के साथ। तो एक इस तरह का ये ओमनी यूजेबल प्लांट बन गया
1: बिल्कुल
0: कि इसको मेडिसिनल वैल्यू डेफिनेटली लोगों ने इसको रिकग्नाइज किया और भारी मात्रा में डिमांड है, और अब इसका कमर्शियल प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ पर होने लगा।
1: बिल्कुल, अब तो कमर्शियल है
0: कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका कमर्शियल प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे खेजड़ी।
1: जी।
0: खेजड़ी जो है वो नेचुरली होती है, और टिश्यू कल्चर या इससे कुछ कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन उतनी अधिक सफलता नहीं मिलती जितनी कि वो वाइल्ड रूप। इसी तरह
1: जी
0: से कैर का है, कैर भी आज बहुत महंगे हैं, जितना छोटा कैर उतनी ज़्यादा कीमत,
1: बिल्कुल
0: और इसका उपयोग भी मेडिसिनल भी है, अचार में भी है, भोजन में भी है, लेकिन इसकी भी खेती करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये वाइल्ड है और जंगलों से ही इसको चुग करके लाते हैं और बेचते हैं।
1: ऐसी क्या वजह है कि इनको हम कमर्शलाइज नहीं कर पा रहे हैं? खेती करना, इनको तो ज़्यादा केयर भी नहीं चाहिए, इनको अलग से न्यूट्रिएंट्स भी नहीं चाहिए, इनको पानी भी ज़्यादा नहीं चाहिए।
0: देखिए होता क्या है कि सीड का जो जर्मिनेशन है
1: जी
0: ये बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपने नाम सुना होगा एक डोडो पक्षी का।
1: हाँ
0: ये डोडो पक्षी लुप्त क्यों हो गया? और डोडो पक्षी लुप्त तो हो गया शिकार की वजह से, लेकिन इसके शिकार के साथ ही बहुत सारी बेरीज जो थी वो लुप्त हो गई। लगता है कि पक्षी के लुप्त होने से बेरीज का लुप्त होने का क्या संबंध है?
1: जी
0: ये डोडो पक्षी उन बेरीज को खाता था, उनके सीड्स के कोट को डाइजेस्ट कर लेता था, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट सीड का जो फीकल मैटर में निकलता था वो ग्रो कर पाता था नेचुरली।
1: जी
0: तो निश्चित रूप से ऐसे कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे कि इनके सीड नेचुरली तो ग्रो कर जाते हैं लेकिन हम गमलों में लगाएं तो ग्रो नहीं करते।
1: जी अगर इनको अगर कमर्शियली ग्रो किया जाए, जैसे प्रयास भी किए जा रहे हैं,
0: किए जा रहे हैं,
1: खेजड़ी
0: टिश्यू
1: की
0: कल्चर
1: अलग
0: से भी
1: अलग
0: इनको ग्रो किया जा
1: हाँ
0: रहा है।
1: वैरायटीज हैं जो छोटी हैं, खेजड़ी की अब जो वैरायटीज आ रही हैं,
0: खजूर तक की छोटी वैरायटी आपने
1: खजूर तक की
0: डेवलप कर
1: छोटी
0: दी।
1: वैरायटीज आने लग
0: हाँ,
1: गई है। टिश्यू कल्चर इसमें काफ़ी योगदान
0: टिश्यू
1: दे रहा
0: कल्चर
1: है।
0: का निश्चित रूप से
1: हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है
0: जी
1: इसके अंदर जब हम एक आम आदमी की तरह देखते हैं तो उसकी वैल्यू हम नहीं पहचान पाते, कि जैसे खेजड़ी है, केर है। आज हम खेती कर रहे हैं तो खेती के दौरान हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो ऐसे पेड़ हैं या फिर झाड़ियां हैं, केर भी उनमें आता है, उनको हम खत्म करते जा रहे
0: ये
1: हैं।
0: बहुत ही सटीक सवाल आपने किया है। देखिए मैं इस पे बार बार जोर देता रहा हूँ कि हम रेगिस्तान को हरा भरा क्यों करना चाहते हैं। मैं सभी से कहता हूँ कि सुनहरा रेगिस्तान सुनहरा ही अच्छा है,
1: जी।
0: इसे ऐसा ही रहने दीजिए, क्योंकि ये एक विशिष्ट परिस्थिति की तंत्र है। यहाँ के जो प्राणी हैं, पौधे हैं, ये गैर मरुस्थलीय क्षेत्रों में जीवित नहीं रह
1: और
0: पाएंगे।
1: जैसा आपने जिक्र किया, हजारों साल लगे हैं इसको
0: एग्जैक्टली,
1: इस रूप में आने में।
0: इस रूप में आने में और नष्ट करने में तो आपको कुछ वर्ष लगेंगे या कुछ माह ही लगेंगे।
1: जी
0: कैर के पौधे समाप्त कर दीजिए, कहाँ उगाएंगे इसे? क्या हम इसको समुद्री तटों पर उगा लेंगे?
1: संभव ही नहीं है।
0: संभव नहीं है। क्या हम इसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उगा लेंगे? असंभव सा लगता है, क्योंकि इनको पौधे को उगना ही काफी नहीं होता, उसका जीवन जो है वो यहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। पौधा उग भी गया तो क्या उसमें फ्रूटिंग हो रही है, क्या उसमें फ्लावरिंग हो रही है, नहीं हो रही है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। एक पौधा बना लेना काफी नहीं होता, पौधे में फ्रूटिंग फ्लावरिंग ये सब चीजें मौसम पर और जलवायु पर निर्भर करती है। तो यहाँ के जो पौधे और वनस्पति, आप कहें कि वृक्ष हैं, झाड़ियाँ हैं, वृक्ष तो बहुत कम है, झाड़ियाँ हैं और छोटे हर्ब्स हैं, ये विशिष्ट हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस मरुस्थल को हरा मत करिए, पारिस्थितिकी तंत्र को सुनहरे रेगिस्तान के रूप में रहने दीजिए। वरना ये स्पीशीज, मैंने आपको ऊँट का ही उदाहरण दिया था, वो तो एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल है,
1: जी
0: ऊँट कहीं गैर मरुस्थलीय क्षेत्रों में जीवित रह पाएगा?
1: नहीं रह सकता।
0: आपको दिखने में तो सिर्फ ये लगता है कि इसके पैर गद्दीदार हैं, इसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ऊँट ने अपने आप को किस तरह से अडेप्ट किया है।
1: जी
0: किसको पता है कि उसके किडनी का स्ट्रक्चर क्या है? इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला दो भाग होते हैं जो जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करते हैं। ऊँट के किडनी में जल का पुनः अवशोषण अधिकतम हो जाता है ताकि उसका मूत्र जो है वो बहुत गाढ़ा और
1: येलो
0: कंसंट्रेटेड हाइपरटोनिक
1: कंसंट्रेटेड।
0: होता है।
1: ओके
0: ये किडनी एक दिन में तो विकसित नहीं हो सकती।
1: नहीं
0: ऊँट को पसीना नहीं आता, क्या ये एक दिन में विकसित हो सकता है?
1: नहीं हो सकता।
0: ऊँट का व्यवहार, वो किस दिशा में सिर करके खड़ा होता है धूप के समय? एक क्लाउड्सले थॉमसन करके वैज्ञानिक हुए जो ऑस्ट्रेलिया के थे, उन्होंने उस पर बहुत अच्छी रिसर्च करी है ऊँट पे, जिसमें उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से व्यवहार की दृष्टि से, जल संरक्षण की दृष्टि से, भोजन की दृष्टि से, कैसे इसने ऊँट ने अपने आप को एडप्ट किया है डेजर्ट परिस्थितियों के लिए।
1: जी
0: ये तो एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप देखिए रेगिस्तान में जो चूहे मिलते हैं, आम आदमी के लिए चूहा मतलब चूहा होता है, चाहे घर में चूहा घूम रहा है वो, छोटी चूहिया घूम रही है वो, या रेगिस्तान में घूम रहा है वो, ये
1: बिल्कुल
0: ऐसा सही नहीं है। घर में जो चूहा घूम रहा है वो रेटस रेटस है, जो हमारे देशनोक में मंदिर में चूहा मिल रहा है वो रेटस रेटस है, लेकिन जो हमारे खेतों में चूहा मिल रहा है वो रेटस रेटस नहीं है,
1: अच्छा वो अलग है।
0: वो मेरियोनिस हरियानी है ज्यादातर। मेरियोनिस हरियानी यानी डेजर्ट जरबिल। इसकी पूंछ पर ब्रश के समान बाल होते हैं, हल्के भूरे रंग का होता है, बड़ा साफ सुथरा।

0: मित्रा, इसकी भी परिस्थिति की जो है वो भिन्न है। देखिए, बाहर टेम्परेचर, बिल के बाहर टेम्परेचर हो सकता है 50 हो, लेकिन बिल में टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो एयर कंडीशन परिस्थितियों में ये रह रहा है। और रेगिस्तान के लिए तो कहा जाता है कि रेगिस्तान दिन में सोता है, रात को जगता है।
1: जी,
0: ज़्यादातर यहाँ के जीव जो हैं
1: रात को
0: वो
1: निकलते हैं।
0: दिन में विश्राम करते हैं, चाहे बिल्ली हो, चाहे लोमड़ी हो, चाहे आपके चूहे हो, जैसे मैंने आपको कहा जरबिल, या बड़े मैमल्स जैसा इवन ब्लू बुल है, नीलगाय जिसको आप कह रहे हैं,
1: जी
0: चिंकारा है, ब्लैक बक है, ये सब यहाँ की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित है। और इससे भिन्न इनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। शायद आपको ताज्जुब होगा कि चिंकारा जो है वो जीवन भर पानी नहीं पीता,
1: जीवन भर
0: जीवन भर उसको पानी की आवश्यकता ही नहीं है।
1: तो वो अपनी पानी की नीड्स कैसे पूरी करता है?
0: हाँ, अगर आप पानी देंगे तो पीलेगा, आप कहेंगे कि सर मैंने दिया और इसने पी लिया,
1: अच्छा,
0: वरना उसको आवश्यकता नहीं है। उसमें दो तीन तरीके हैं। एक तो जो कुछ वो भोजन ले रहा है उसमें कुछ जो जल मिल रहा है
1: जी,
0: उसका पूरा उपयोग कर रहा है। नंबर दो, पसीना नहीं आ रहा, पानी का बचत। नंबर तीन, उसका मूत्र जो है वो बहुत कंसंट्रेटेड है, हाइपरटोनिक है, मिनिमम लॉस पानी का। और चौथा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है मेटाबॉलिक वाटर। देखिए, जो भोजन का विघटन होता है,
1: जी,
0: विज्ञान की दृष्टि से कहें तो C6H12O6 + 6O2 इज इकल टू 6CO2 + 6H2O।
1: जी,
0: दिस 6H2O जो है
1: वो
0: वो कंजर्व कर रहा है,
1: अच्छा,
0: भोजन से भी जो पानी निकल रहा है उसको वेस्ट नहीं जाने दे रहा,
1: तो उसकी किडनीज उसको भी वापस भेज रही हैं।
0: सब कुछ वो अपने संरक्षित कर रहा है, मिनिमम वाटर लॉस कर रहा है,
1: जी,
0: इसलिए उसको जीवन में पानी पीने की आवश्यकता ही नहीं है। ये किसी को शायद अचंभित लगे कि ऐसा भी होता है क्या। डेजर्ट में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो जीवन पर्यंत पानी
1: ये
0: नहीं
1: भी तो
0: पीते।
1: इनका अडेप्टेशन है, क्योंकि जैसा आपने बताया हाईली कंसेंट्रेटेड यूरिन होता है इनका,
0: जी
1: और अगर हमारी बात करें ह्यूमंस की, तो हाईली कंसेंट्रेटेड यूरिन अगर होने लगता है तो हम डिहाइड्रेशन की तरफ पहुंचते हैं।
0: देखिए, नहीं, डिहाइड्रेशन ये उल्टी बात हो गई। अगर
1: उल्टा
0: हमारा
1: है
0: हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन है तो पानी रिटेन हो रहा है, हमारे हाथ पैरों में सूजन आ जाएगी।
1: उसकी वजह, लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं रहेगी क्या?
0: नहीं, डिहाइड्रेशन तो पानी का अधिक लॉस होने से होता है।
1: जी,
0: डिहाइड्रेशन तो पानी का अधिक लॉस हो जाए, चाहे उल्टी से हो जाए, चाहे हमारी मल के साथ हो जाए या यूरिन के साथ हो जाए।
1: जी,
0: ये तो उनमें जल को संरक्षित करने का तरीका है कि पानी को जाने ही ना था शरीर से, चाहे पसीने के रूप में। देखिए, दो तीन तरीके से पानी का लॉस होता है हमारी बॉडी से, या तो यूरिन से जाता है, या पसीने से जा रहा है, या हमारे मल पदार्थ के साथ जाता है। आप देखिए, ऊँट की जो फीकल मैटर है, या जो डेजर्ट के जो एनिमल्स हैं उनका फीकल मैटर है, मल पदार्थ, कितना ड्राई होता है।
1: जी, बिल्कुल
0: वो भैंस के मल पदार्थ से आप उसकी तुलना करिए,
1: नहीं कर सकते।
0: नहीं कर सकते ना। भैंस का जो मल पदार्थ है जिसको हम गोबर कह रहे हैं, कितना ज़्यादा पानी है उसमें।
1: जी,
0: लेकिन हमारे ऊँट है, या हिरन है, या ब्लू ब्लू बुल जिसको हम नीलगाय कह रहे हैं, इनका फीकल मैटर लगभग ड्राई होता है,
1: जी
0: मिनिमम पानी का लॉस करते हैं ये।
1: साथ ही हमने अभी बात की थी किस प्रकार प्रत्येक जो जीव है, प्रत्येक वेजिटेशन है, इनका इंटरकनेक्शन जो है वो भी रहता है। जैसे हम केर का अगर झाड़ी की बात करें, उसमें एक स्पेसिफिक टाइप की चिड़िया है जो अपना घर बना के रखती है। जाल का पेड़ है, उसमें भी जो हमारी घरेलू चिड़िया है काफ़ी बड़ी संख्या में रहती है, इनकी जड़ों में वहाँ पर भी अलग तरह के जो बिल बनाने वाले जीव जंतु है वो रहते हैं, तो इनकी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी भी काफ़ी
0: एग्जैक्टली
1: है।
0: देखिए, एक झाड़ है, श्रब जिसको हम कह दें,
1: जी हाँ,
0: वो अपने आप में एक छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसको हम माइक्रो इकोसिस्टम कह देते हैं। माइक्रो इकोसिस्टम से तात्पर्य यह है कि उसकी टहनियों पर आपने बताया कि कुछ विभिन्न प्रकार के पक्षी विशिष्ट ही अपना
1: विशिष्ट,
0: घोंसला
1: हाँ,
0: बनाते हैं। पक्षी जब अपना घोंसला बनाता है, तो अब मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि पक्षी हमारे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं। उनमें ये इनहेरेंट गुण है कि अपना घोंसला कहाँ बनाया जाए ताकि उनके बच्चे संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें।
1: जी,
0: अमूमन ये तक देखा जाता है कि पक्षी कितनी ऊंचाई पर घोंसला बना रहा है, ये इस चीज़ को इंगित करता है कि इस वर्ष वर्षा कैसी होगी। यदि बाढ़ आने की संभावना है या वर्षा अधिक होगी और जल भराव की संभावना है, तो पक्षी अपना घोंसला ऊंचाई
1: ऊंचा
0: पर
1: बनाएगा।
0: बनाएगा। और अगर ड्राई रहना है, ड्राउट आना है, तो पक्षी अपना घोंसला निचले स्तर पर भी बना सकता है। एक बात,
1: जी,
0: पक्षी बहुत बार अपना प्रजनन ही डेफर कर देते हैं, प्रजनन करते ही नहीं, अंडे देते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगली बार ड्राउट आने वाला है, उनके बच्चे जीवित कैसे रहेंगे,
1: अच्छा,
0: उनको भोजन पानी मिलेगा ही नहीं। तो अच्छा है कि डेफर कर दें, अगली बार जब सीजन अच्छा होगा तब बच्चे देंगे, अंडे देंगे। दूसरा, आप कह रहे हैं कि कैर का झाड़ जो है जमीन पर बहुत अच्छा फैला होता है,
1: हाँ,
0: तो मोर उनके नीचे अंडे दे देंगे, गोडावन उनके नीचे अंडे दे देंगे, क्योंकि वो सेफ और सुरक्षित हैं,
1: जी,
0: क्योंकि ये ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड्स हैं, ये घोंसले नहीं बना रही, मिट्टी को थोड़ा सा खोदते हैं और वहीं पर अंडे दे देते हैं। लेकिन वहां तक लोमड़ी और कुत्ते या अन्य जीवों की पहुंच नहीं हो पाती,
1: नहीं,
0: इसलिए वो मानते हैं कि यहाँ पर हमारे अंडे सुरक्षित हैं।
1: जी,
0: तो एक छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है,
1: माइक्रो,
0: माइक्रो इकोसिस्टम है। पौधों की गहराई तक जाइए, जड़ों तक जाइए, तो जड़ों में भी बहुत सारे निमेटोड्स मिलेंगे आपको,
1: बिल्कुल,
0: कोलम्बेला यानी इंसेक्ट्स भी मिलेंगे, और वो विशिष्ट हैं।
1: बरोइंग एनिमल्स भी होते हैं
0: बरोइंग
1: उनके।
0: एनिमल्स भी होंगे, बरोइंग एनिमल्स जैसे मैंने आपको अभी चूहे का ही एग्जाम्पल दिया,
1: हाँ
0: लिजर्ड्स है, यहाँ का यूरोमेस्टिक्स जिसको स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड या सांडा कहते हैं,
1: जी, बिल्कुल,
0: वो विशिष्ट रूप से इसी क्षेत्र में मिलता है, और कहीं मिलेगा ही नहीं आपको।

0: वो स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड इस क्षेत्र का विशिष्ट है। स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड भी पानी नहीं पीता, वो लोकस्ट खा रहा है और जो इंसेक्ट्स खा रहा है उसमें जो पानी मिल रहा है उससे ही अपना सर्वाइवल कर रहा है।
1: जी
0: और एक चीज होती है डोरमेंसी और एक चीज होती है डायपॉज। इस पे मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा, खास करके जब आपने डेजर्ट प्लांट्स और एनिमल्स की बात कही।
1: बिल्कुल
0: डायपॉज तो एक ऐसी स्थिति है कि जहां हम अपना डेवलपमेंट रोक लेते। एग है, एग से लार्वा प्यूपा नहीं बना, एग एग ही रहा,
1: एक स्टेज में रुक गया,
0: स्टेज पर रुक गया,
1: ठीक है।
0: इसको डायपॉज कहा। मिट्टी में सीड पड़ा है वो डायपॉज में है, अभी वो विकसित नहीं हो रहा है।
1: नहीं हुआ, ठीक है।
0: और जब अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, पानी गिरेगा तो अंकुरित हो जाएगा। कभी कभी गलत मौसम के अंदर बरसात आती, तब भी देखिए घास उगाती है,
1: घास उगाती
0: वो
1: है
0: सीड तो पड़े थे,
1: जी।
0: सीड को पता नहीं कि कौन से मौसम की बरसात है और वो जर्मिनेट हो गए।
1: जी
0: और एक होता है कि हम डोरमेंसी में चले जाते हैं। हम मतलब हमारे बहुत सारे जीव, खास करके जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, वो डोरमेंसी में रहते हैं। छिपकलियां आपको सर्दी में नहीं नजर आती,
1: हाइबरनेशन इसी को कहते हैं
0: हाइबरनेशन।
1: जी सर।
0: हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दो टर्म है ना। तो हाइबरनेशन शीत समाधि को कहते हैं।
1: जी
0: सर्दियों में जो एनिमल्स छुप जाते हैं, जैसे छिपकली का मैंने उदाहरण दिया, ऐसा नहीं कि ये मर गए हैं, इन्होंने अपनी मेटाबॉलिक रेट को न्यूनतम कर लिया है।
1: जी
0: उपापचयन की दर न्यूनतम है, किसी घड़ी के पीछे, किसी कैलेंडर के पीछे, किसी क्रेविसेस के अंदर ये छुप करके, और अपनी केवल जीवित रहने के लिए जितनी मेटाबॉलिक रेट चाहिए उतने पर जीवित रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिली, अगली गर्मियां आएंगी, दिवाली के आसपास आप देखिए ये छुप जाते हैं और फिर होली के आसपास वापस निकल आते हैं,
1: जी
0: क्योंकि अब टेम्परेचर नॉर्मल है।
1: इस दौरान ये लोग
0: कुछ नहीं खाते,
1: कुछ
0: कुछ भी
1: नहीं
0: नहीं
1: खाते
0: खाते, कुछ भी नहीं पीते।
1: जी।
0: और ग्रीष्म समाधि, जिसको हमने कहा कि एस्टिवेशन, क्योंकि तेज जब गर्मी होती है तब भी बहुत से कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ने ग्रीष्म समाधि
1: ले
0: ले
1: लेते
0: लेते हैं,
1: हैं।
0: जैसे मेंढक है, दलदल में चले गए, अंदर पड़े हैं, जब वापस बरसात आएगी तालाब में पानी आएगा फिर निकल आएंगे।
1: जी
0: तो ग्रीष्म समाधि और शीत समाधि, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन जिसको हम कहते हैं, ये एक प्रकार की ऐसी परिस्थिति, ऐसी अवस्था है जिसके अंदर हम अपने एक्टिविटीज को रोक रहे हैं, डेवलपमेंट को नहीं रोक रहे।
1: जी
0: डायपॉज में तो डेवलपमेंट रुक रहा है
1: हाँ,
0: और इसके अंदर एक्टिविटी को रोक
1: एक्टिविटीज
0: लिया
1: को
0: गया।
1: रोक रहे हैं, कम कर रहे हैं।
0: हाँ, कम कर लिया,
1: हाँ,
0: ये डोरमेंसी है।
1: हमारा इस बात का उद्देश्य यही था कि हम ये जान पाएं कि एक पेड़ या एक अगर शब्द को हम नुकसान पहुंचाते हैं तो वो सिर्फ एक को नुकसान पहुंचाना नहीं, उसके साथ
0: सैकड़ों
1: जो
0: जीव जुड़े हुए हैं,
1: हाँ सैकड़ों जीव
0: सैकड़ों
1: जुड़े
0: जीव
1: हुए हैं,
0: जुड़े हुए
1: तो
0: हैं।
1: एक माइक्रो इकोसिस्टम को हम नष्ट कर रहे हैं।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही फरमाया।
1: हाँ, तो हम इसके बारे में यही जानना चाहते हैं कि एक आम आदमी या किसान जो हमें सुन रहा है वो इनको संरक्षित करने के लिए क्या उपाय कर सकता है, उसके लिए आपकी क्या राय है?
0: देखिए, मेरा निवेदन ये है कि हमारे यहाँ पर खेतों के बीच झाड़ियाँ भी मिलेंगी और कुछ वृक्ष मिलते हैं, वृक्ष नेचुरली बहुत कम है, खेजड़ी जिसमें एक है।
1: जी
0: और ये झाड़ियाँ और वृक्ष ऐसे हैं जिनको बचाते हुए हम खेती कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना एरिया है कि जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं। हम सोलर प्लांट सब लगा रहे हैं लेकिन हम अपने इन पेड़ों और वनस्पतियों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे,
1: जी
0: तो इनको बचाते हुए काम करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे किसान को भूखा मरने दें और वो खेती ना करें, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि हम अपने पारिस्थितिकी तंत्र को भी बचा कर रखें, और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है, न सिर्फ हमारे लिए।
1: जी तो बरसात के मौसम में इनकी ज़्यादा केयर की जाए, इनके पौधारोपण किया जाए या फिर अपने ही खेत में इनको छोड़ दिया जाए, किस प्रकार इनका संरक्षण
0: देखिए,
1: किया जा सकता
0: पौधारोपण
1: है?
0: की जरूरत तो जब पड़ती है कि अगर हमने किसी को नष्ट कर दिया, प्राकृतिक रूप से जो चल रही है वनस्पति उसके लिए आपको किसी एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, उनको ग्रो करने दीजिए, अपने आप जर्मिनेट हो रहे हैं, आपकी एक खेजड़ी से पांच छह खेजड़ी बन गई है, बनने दीजिए उन्हें,
1: जी
0: लेकिन नष्ट ना करिए, क्योंकि एक खेजड़ी को नष्ट किया तो हमने कितने सीड्स नष्ट कर दिए। तो पेड़ अगर हम नष्ट कर रहे हैं तो उनके सीड्स को हम नष्ट कर रहे हैं।
1: हमारे पूर्वज जो थे वो इस बात को समझते भी थे, वो प्रत्येक पेड़ और उसका लाइफ साइकिल समझते थे,
0: जी
1: प्रत्येक जानवर को भी वो समझते थे कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये कैसे बिहेव करता है।
0: एग्जैक्टली
1: और अब जो हमने प्रगति के नाम पर अगर कुछ इनका शोषण किया है या दोहन किया है या हम कहें नष्ट किया है इनको, तो वो हमारी गलती है जिसको हमें अब समझने की आवश्यकता है।
0: निश्चित रूप से जो हमारे नष्ट हुआ है सारा सिस्टम, वो व्यवसायीकरण की वजह से हुआ है। पहले शिकार भी किया जाता था, हमें ध्यान है कि पूर्व काल में शिकार होता था,
1: बिल्कुल
0: लेकिन उस समय भी ये था कि चौमासा जो था वो शिकार के लिए वर्जित था। वो वर्जित इसीलिए था कि जो एनिमल्स जिनको हम मार रहे हैं, हो सकता है उनमें कुछ फीमेल प्रेग्नेंट हो, क्योंकि उनका प्रजनन काल है।
1: अच्छा
0: तो ये एक स्थापित परंपरा थी कि
1: जी
0: हम ऐसा नहीं करेंगे,
1: जी
0: इसी
1: बिल्कुल
0: तरह से पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे, उनकी पूजा करेंगे। हमने कुछ त्यौहार ऐसे बना रखे कि बड़ की पूजा होगी, खेजड़ी की पूजा होगी, ताकि लोगों में एक तरह का भाव जगे कि हमें इन्हें संरक्षित करना है,
1: बिल्कुल, हमारी जो धार्मिक परंपराएं जुड़ी है वो इन्हीं लिए जुड़ी है कि हम पेड़ों का संरक्षण कर
0: संरक्षण
1: सकें।
0: कर सके।
1: जी डॉक्टर साहब, आपसे एनवायरनमेंट के बारे में बातें खूब की हमने, लेकिन हम आप जानते हैं कि आप एक कलाकार भी हैं, लिखते हैं कहानियां, लिखते हैं कविताएं, लिखते हैं। हमारे श्रोता जो आपको सुन रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप एक अपनी कविता जो

0: लिखी हो हमारे श्रोताओं को सुनाए?
1: देखिए, मैं बहुत स्थापित कवि नहीं हूँ, स्पष्ट करूँ, लेकिन एक उम्र में हर आदमी कवि होता है। तो
0: जी
1: युवावस्था में मैंने कविता और कहानियाँ लिखी और अच्छी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, और लोगों ने जब उसे रिकॉग्नाइज किया और हमें पत्र लिखे या हमसे संवाद किया, तो हमें लगा कि शायद कुछ ठीक लिखा होगा, इसलिए लोगों ने पहचाना।
0: बिल्कुल सर।
1: और उसके बाद जब वैज्ञानिक जीवन में हम रहे, तो कभी अवसर ही नहीं मिला कि इन चीज़ों की तरफ हम सोच सकें। यदि समय मिलता था तो एक रिसर्च पेपर लिखने की कोशिश करते थे, कुछ किताबें लिखने की कोशिश करते थे जो साइंटिफिक थी। लेकिन अब जब थोड़ा विश्राम मिला है, तो निश्चित रूप से हमारा हृदय वापस उस युवावस्था की तरफ लौटने की कोशिश करता है कि जहां हम फिर पकड़ सकें जहां हमने छोड़ा था।
0: जी, कला इंसान को जीवित रखती है सर।
1: संभव है आपका
0: नहीं
1: ज़्यादा अनुभव है इस बारे में,
0: सर।
1: क्योंकि मैं कोई बहुत कलाकार नहीं हूँ। अभी गत माह ही एक छोटा सा गीत मैंने लिखा था, जिसको एक गीतकार है और जो म्यूज़िक कंपोज करते हैं, उन्होंने उसको कंपोज किया। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्वीकार करता हूँ कि मुझे गाना नहीं आता, इसलिए मैं कोई भी चीज़ आपको तरन्नुम में पेश नहीं कर पाऊँगा।
0: कोई बात नहीं
1: लेकिन जो गीत है वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ,
0: जी।
1: जिसके बोल हैं, आओ दस्तरखान बिछाए। दस्तरखान मेरे ख्याल से हमारे बहुत से श्रोता नहीं जानते होंगे कि उस जाजिम को कहते हैं उर्दू में जिस पर बैठ करके खाना खाया जाता है।
0: अच्छा।
1: तो उस दस्तरखान को बिछा करके हम लोग बैठे, आइए बहुत समय हुआ, और साथ बैठ करके कुछ खाना खाया जाए।
0: खाना खाया जाए।
1: तो ये गीत का बोल यही है कि आओ दस्तरखान में,
0: नहीं सर।
1: क्योंकि मैं कोई बहुत कलाकार नहीं हूँ। अभी गत माह ही एक छोटा सा गीत मैंने लिखा था, जिसको एक गीतकार है और जो म्यूज़िक कंपोज करते हैं, उन्होंने उसको कंपोज किया। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्वीकार करता हूँ कि मुझे गाना नहीं आता, इसलिए मैं कोई भी चीज़ आपको तरन्नुम में पेश नहीं कर पाऊँगा।
0: कोई बात नहीं
1: लेकिन जो गीत है वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ,
0: जी।
1: जिसके बोल हैं, आओ दस्तरखान बिछाए। दस्तरखान मेरे ख्याल से हमारे बहुत से श्रोता नहीं जानते होंगे कि उस जाजिम को कहते हैं उर्दू में जिस पर बैठ करके खाना खाया जाता है।
0: अच्छा।
1: तो उस दस्तरखान को बिछा करके हम लोग बैठे, आइए बहुत समय हुआ, और साथ बैठ करके कुछ खाना खाया जाए।
0: खाना खाया जाए।
1: तो ये गीत का बोल यही है कि आओ दस्तरखान बिछाएं, तुम भी बैठो हम भी बैठें, लुत्फ लजीजी साथ उठाएं, आओ दस्तरखान बिछाएं। तेरी प्याली मेरा प्याला, एक तश्तरी एक निवाला, एक सुराही भर यादों की, ख्वाबों के प्याले छलकाएं, आओ दस्तरखान बिछाएं। ये कुछ कहते वो कुछ कहते, अपने ही अपनों से डरते। देखिए क्या विडंबना है।
0: जी
1: ये कुछ कहते वो कुछ कहते, अपने ही अपनों से डरते, सब झूठे हैं यार सही है, दुनिया को कैसे समझाएं, आओ दस्तरखान बिछाएं। यार मिलते कहाँ हैं आजकल, ना शिकवाना गिला सहेली, कल की बातें रहे पहेली, आज सलोना कितना देखो, बाहों में भर गले लगाएं, आओ दस्तरखान बिछाएं। तुम भी तुम थे मैं भी मैं था, कहाँ भरोसा हम में कम था, इधर सेवैयां उधर मिठाई, ईद दिवाली साथ मनाएं, आओ दस्तरखान बिछाएं, ईद दिवाली साथ मनाएं, आओ दस्तरखान बिछाएं। थैंक यू।
0: बहुत बहुत अच्छी सर। आज की जो समस्या है कि जो लोग अलग अलग हो गए हैं, उसको आपने बखूबी पकड़ा है कि दस्तरखान जब बिछेगा तब लोगों के जो गिला शिकवा है वो दूर होंगे और आपस में गले मिलेंगे, तभी जो हमारा समाज है वो एक हो पाएगा, एक साथ रह पाएगा।
1: धन्यवाद। मैं मानता हूँ कि अच्छे संबंधों का संबंध अच्छे ही होते हैं और उनका कोई विकल्प है
0: कोई
1: नहीं,
0: विकल्प नहीं
1: और
0: है
1: मैं
0: सर।
1: सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रिय है जीवन में वो चीज़ है संबंध,
0: क्या
1: उनको मैं
0: बात है
1: बहुत बहुत मान देता हूँ।
0: जी, बिल्कुल। हम आपसे, हालांकि काफ़ी देर बात आपसे की जा सकती है, आप ज्ञान का सागर हैं,
1: नहीं
0: लेकिन
1: नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
0: हम आपकी एक और बात है जिसको हम जानना चाहेंगे, जिसके बारे में आपने जिक्र किया था, विटलिंग आर्ट। विटलिंग आर्ट क्या
1: अच्छा,
0: होती है
1: विटलिंग, देखिए ये अभी कोई 6-7 महीने से मैंने शुरू किया है।
0: जी?
1: ये एक तरह का पास टाइम है और ये एक बहुत पुरानी कला है कि जिसमें लोग खेतों में जंगल में घुमा करते थे, और नोमेडिक्स विशेष करके,
0: जी
1: और उन्हें जो लकड़ी मिलती थी और उनके पास कोई साधन होता था उसको छील करके उससे कोई कलाकृति बनाने का प्रयास करते थे। सबसे पुराना जो विटलिंग का ऑब्जेक्ट मिलता है वो है एक चिड़िया का रूप,
0: अच्छा।
1: तो किसी ने वो लकड़ी छील करके चिड़िया बनाई। और इसको मैंने देखा और मैंने समझने की कोशिश की, तो लगा कि क्या ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते हैं, हो सकता है उस स्तर तक हम ना पहुंचा पाए। लेकिन फिर मैंने जब कोशिश की, और विटलिंग का जो आर्ट है उसके अंदर सिर्फ एक ही खासियत है कि इसमें चाकू के अलावा तीसरी चीज, लकड़ी और चाकू के अलावा तीसरी चीज़ का उपयोग नहीं होता।
0: जी
1: किसी और चीज़ को, किसी और यंत्र को हम उपयोग में नहीं लेते, लकड़ी को छीलते हैं, उसको आकृति देते हैं। और उससे फिर मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए, बहुत सारे कामगारों के ऑब्जेक्ट बनाए, हमारे जो सेवाकर्मी होते हैं, पोस्टमैन है, डॉक्टर है, नर्स है, सफाई कर्मी हैं, इस तरह से जो भी मुझे सामने दिखा या मेरे स्मरण में आया, जो मेरे को एक चित्रित में कर पाया, उसके ऑब्जेक्ट मैंने लकड़ी से खोद करके बनाए और उसको समाज ने अच्छे से स्वीकार किया। ये मेरे लिए एक शगल है। अमूमन मैं वीकेंड में यानी शनिवार की रात को कोशिश करता हूँ, संडे तक उसको पूरा करता हूँ।
0: जी
1: तो ऐसा कोई विशेष वो नहीं है कि जिसको एक मैं व्यावसायिक रूप दे पाया,
0: नहीं,
1: लेकिन ये मेरा शौक है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ रचनात्मक कर
0: इसमें
1: पाऊँ।
0: कोई विशेष तरह की लकड़ी का उपयोग किया जाता है?
1: नहीं, लकड़ी देखिए सॉफ्ट हो तो अच्छी होती है
0: अच्छा
1: और उसमें फाइबर बहुत बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना डिटेल्स नहीं आ पाती।
0: जी,
1: और बहुत कठोर लकड़ी होती है तो हमें मेहनत उतनी ही
0: मेहनत
1: करनी पड़ती है,
0: अधिक करनी
1: इसलिए
0: पड़ती
1: मैं सॉफ्ट लकड़ी प्रेफर करता हूँ। लेकिन लकड़ी के लिए मेरे को कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। फर्नीचर की दुकान में जाता हूँ, जो कुछ उनके बचे हुए टुकड़े होते हैं 3-4 इंच के, 1x1 इंच, उस 1x1 इंच का उसका साइज़ हो और लंबाई उसकी 3-4 इंच हो,
0: इंच
1: तो मेरे लिए बहुत होता है।
0: जी
1: इसके अलावा अड़ोस पड़ोस में देखता हूँ कहीं कोई पेड़ कटा है
0: हाँ
1: तो उसकी टहनियाँ तोड़ लाता हूँ और सुखा करके उसमें भी खुदाई कर लेता हूँ।
0: जी जीवन में शगल होना बहुत ज़रूरी है
1: बिल्कुल
0: ताकि मन जो है वो स्थिर रहता है उससे। डॉक्टर साहब, हम आपसे अंत में यही जानना चाहेंगे, जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, बहुत सारे शोधार्थी भी आपको सुन रहे हैं, किस प्रकार अपने जीवन में वो पढ़ाई को, शोध को अपनाएं, एनवायरनमेंट को किस प्रकार बचाएं और शौक जो है जीवन में, शगल की आप बात कर रहे हैं, वो कैसे अपनाएं, एक संदेश में हम आपसे चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को आप
1: बस
0: बताएं।
1: छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि 24 घंटे का समय हम सभी को मिला है।
0: जी
1: कोई 24.5 घंटे का दिन नहीं कर सकता, किसी के लिए 23 घंटे का दिन नहीं है।
0: जी सर
1: उस 24 घंटे की एक प्लानिंग अगर हमारे पास है, जिसमें हमें संतुलन करना पड़ेगा परिवार के साथ, समाज के साथ और अपने प्रोफेशन के साथ।
0: जी
1: और प्रोफेशन को मैं इसलिए जोड़कर चलता हूँ क्योंकि समाज हमें हमारे प्रोफेशनल के रूप में ज़्यादा पहचानता है, तो उस प्रोफेशन के साथ कई तरह की बेईमानी नहीं होनी चाहिए। एक विद्यार्थी है तो

0: उसका प्रोफेशन स्टडी ही है, उसके लिए शॉर्टकट ना अपनाएं। विद्यार्थियों को मैं हमेशा कहता हूँ, छलांग लगाने की कोशिश ना करें,
1: जी
0: चलें और ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ लें। छलांग लगाने में हारेंगे अल्टीमेटली,
1: जी
0: तो अपने प्रयास को सतत रूप से चलने दें और किसी से कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने किसी से जीवन में कंपटीशन नहीं किया और किसी से राइवलरी नहीं रखी,
1: जी
0: क्योंकि प्रतिस्पर्धा जो है वो हमें अपने आप से दूर ले जाती है। मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ, मेरा कंपटीशन मेरे साथ ही होना चाहिए, और
1: जी
0: प्रतिद्वंदिता तो होने की ज़रूरत ही नहीं है।
1: आवश्यकता ही नहीं है। जी सर, डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
0: मैं आप कि मुझे अवसर दिया आपने,
1: जी
0: थैंक
1: सर,
0: यू।
1: थैंक यू सर।
2: अभी आप पर्यावरण दिवस के अवसर पर विशेष भेंटवार्ता सुन रहे थे डॉक्टर M.M. सक्सेना से। इनसे बातचीत कर रहे थे नवीन सिसोदिया। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कार्यक्रम सुनिए गा मेरे मन गा। आइए पहले सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में जवानी दीवानी फिल्म का ये गीत।

0: प्रोग्राम की अगली पेशकश आम्रपाली फिल्म से, आवाज लता की, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे गा मेरे मन गा। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीतमाला। कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं लक्ष्मी। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत से।

श्रोताओं, अभी आपने लता मंगेशकर और कृति कुमार को सुना। फिल्म का नाम था राधा का संगम। गीत के बोल हसरत जयपुरी के थे और संगीत दिया था अनु मलिक ने। इस गीत की फरमाइश की थी रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। सिद्धार्थनगर दयापुर भाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले। गांव खोखरावाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, शगुन बारासा। इसी गीत की फरमाइश की थी अनूपगढ़ से भगवती देवी, ज्ञानचंद, कोमल, पूनम, रवि कुमार, मेहन चंदन, नेहा, लक्ष्य, माधव। इसी गीत को सुनना चाहा था भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रीस खत्री, नूरू मीना, इरफान मीना, कासिफ मीना। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खारेवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल। इसी गीत को सुनना चाहा था गांव घमंडिया से जगदीश ढुकिया, प्रमीला ढुकिया, ज्योति, शिवम ढुकिया, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, साइना, विष्णु ढुकिया, ईवा धानिया। इसी गीत की फरमाइश की थी उज्जैन मध्य प्रदेश बोरखेड़ा पितामल से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिशा, कुश मूणत। चक 14 पीएसबी से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण, हरदीप सिंह, मनराज, वीरक। गांव कुम्हेरखेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम, अदीब। हयात कॉलोनी अरिया बिहार से फैशल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीजा प्रवीण। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है चोर मचाए शोर। आवाज़ ये लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गीत के बोल इंद्रजीत सिंह के और संगीत रविंद्र जैन का।

अभी आपने चोर मचाए शोर फिल्म का गीत सुना। इस गीत की फरमाइश की थी दो के एसआर से उस्ताद इंद्र मोहन, रंगमहल से अमित कुमार मंगलाव और सुखदेव नाथ। इसी गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश मोहन, वंदना गुहर, मयंक गुहर, तन्वी गुहर, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, पटेल नगर मलोर से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, गुड्डू, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, धनश्याम भार्गव, बाबू गोरी, हसन सिक्का, इसी गीत की फरमाइश की थी गांव हीरावाली फाजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा।

सरवन रिनवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रंजीत राम किरोड़ीवाल, गांव बनवाला हनवंता, फाजिलका पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और सारा मायल परिवार, सादूर शहर से रामकुमार रिवार, चंद्रकला रिवार, गांव खारिया ढाणी, जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू, नव्या बिजारनिया, भागवत उत्तर प्रदेश से संजय ढिगिया, नमन ढिगिया, अपा ढिगिया। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है प्रेम कहानी, आवाजें लता मंगेशकर मुकेश की, गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

प्रेम कहानी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत को सुनना चाहा था गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बागड़िया, क्रियांश बागड़िया, योगेश बागड़िया, रजत और बेबी गरिमा बागड़िया, गांव जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम सारन, मोनिका और मनी सारन, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, चक 15 पीएसए सरजीत सिंह जोशन, सरजीत कौर जोशन, गुरमन, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्शपाल सिंह जोशन, वेंकटूर कनाडा से रोबिन सिंह जोशन, दत्रेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहा था जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसी मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद, फैजान मोहम्मद। बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग। गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। गोविंदपुरा सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता कवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है सफ़र, आवाज़ मुकेश की, गीत के बोल इंदिवर के हैं और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अभी आपने सफ़र फिल्म का गीत सुना। इस गीत की फरमाइश की थी दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। तहसील ओसा जिला लातूर से गांव हिपर सोगा से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद खान, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान। गांव जलालापुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन प्रजापति, लविश प्रजापति व और मुनीश देवी प्रजापति। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, किरसन मायल, हनुमान सहारन, किडू राम जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। आसाम से हितेंद्र दास,

मोती नगर दिल्ली से मानसी, अनिल, गौरव, कविता, अरोड़ा, गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी, सौरभ डोडी, अलीका, तहसील डबवाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत सिंह, सरबजीत लखोत्रा, रानी, सोनू, रजनी। लीजिए।

ने कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है दर्पण। आवाज लता मंगेशकर की है, गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, अभी आपने दर्पण फिल्म का गीत सुना। इस गीत की फरमाइश की थी सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका। गजरूवाड़ा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी। संगरिया जिला हनुमानगढ़ से भूपेंद्र सुथार, शिवरतन वर्मा, रमाकांत टाटिया, कुंदन कटारिया, सुल्तान सिंह तरड़, मोनिका जैन, अनिल कुमार सहारन। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो,

इसी गीत की फरमाइश की थी सुल्ताना जैसलमेर से विकास जाखड़, भावना जाखड़, हेमंत जाखड़, तेज प्रताप जाखड़, वान्या जाखड़, अभिमन्यु जाखड़। इसी गीत को सुना चाह था बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान। बने बुजुर्ग पलेर पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा। बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हीना कोसर। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद शहीद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और पूरे अबान परिवार के सभी सदस्य। साथ ही इस गीत के लिए हमें कुछ पत्र भी आए हैं। मरुड़ कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचंद ग्रोवर, रमेश मिगलानी। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश बत्ता। गंगानगर से शोलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू, मोहित, हेमंत। बठिंडा से परम सिंह जोड़ा, मंजीत को जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंद्र, वरिंद, सिमरन, एकन, दमन, अभिजोत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है लोफर, आवाज आशा भोसले की, गीत के बोल शैलेंद्र के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने लोफर फिल्म का गीत सुना। इस गीत की फरमाइश की थी आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर, पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग, रवि गर्ग, शिल्पा गर्ग, बेहरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैना जाखड़, हिमानी जाखड़, शिवम जाखड़, बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिश्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यस मंसूरी, नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश तरड़, रामचंद्र तरड़, कपिल देव तरड़, हिमानी जाखड़, गांव अरायन से डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, विमला सोनू, ममता दिशा, मोक्ष सुशांत, विक्रम जयपाल, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा, जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, मंडी डबवाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, कुलदीप सिंह, मंडी केसी सिंहपुर से बिलू सूद, सुनीता सूद, आशीष सूद, चांदनी, विश्वजीत, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद फासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यसब अब्बासी, मुनीब अब्बासी, इशरत परवीन। साथ ही इस गीत के लिए हमें फरमाइश के लिए कुछ पत्र आए थे। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतेक बीरक, मीका बीरक, डब्बाली हरियाणा से जेके बोकोलिया, सुनीता बोकोलिया, संजय अनिल मीनू बोकोलिया, साधु शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, श्रीगंगानगर से बजरंग लाल शर्मा, जसपाल सिंह सिद्धू, जगमोहन सिंह अनेजा, नरेश कुमार शर्मा। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है शक्ति, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर की हैं, गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत राहुल देव बर्मन का।

अभी आपने शक्ति फिल्म का गीत सुना। इस गीत की फरमाइश की थी गांव ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। तहसील भादरा अनुपशहर से गजानन सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार साहिल, राघव, मुरारी लाल शर्मा, ममता, मीतू, कीनू, अक्षकू, महावीर लोहरा, फूसाराम मिल और घर के सदस्य। शेरवानी स्कूल गजरूवाड़ा, उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी।

मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, चक साथ, डीबियन भाटू वाड़ी धानी से, टेकचंद सारण, संतोष देवी, सत्यप्रिय चारण, जय सिंह चारण बिटिया, योगेश्री, रंजीत सिंह सुथार, गुरुदेव सिंह भागड़िया, हनेक सिंह भागड़िया, कृष्ण लाल राहड़, 63 LNP से, पिंगावाला चौक गोरिया जालंधर से, संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत मकर, भरत मकर, कमल साहनी। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश की थी नई बस्ती गजडुवारा से मोहम्मद यसीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। रामपुरा मटोरिया से मुरारी लाल, अमन, रमन, तनीश, रवि, सीताराम, मदन लाल शर्मा, पंकज कुमार, हर्ष, मनीष, राजेश कुमार, पूसाराम मेल, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, रामसिंहपुर से अशोक बब्बर, पवन, राजेश बब्बर, अजय, राहुल, जैन मंदिर वाली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसीन अंसारी, नोरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है उम्मीद।

उम्मीद फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत की फरमाइश की थी हमें डोडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से, देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डोली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। मधुबनी बिहार बेनीपट्टी जिला से अरविंदर कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी। इस गीत की फरमाइश की थी हमें दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू, माफ कीजिए ये हमने पत्र पढ़ लिया था इसका। गांव डाबली रंगाला जालोर से धनवंती, आंसू, खुशबू, खुशवीर, देडू, तेजवर्धन सिंह, सिद्धार्थ, देडू, रमेश, संगीता, दिनेश, ममता, अशोक, लीला रोपड़िया, ममता, जगदीश, विनोद, लुखा, ज्योति, प्रतिभा, भरत, तरण, चोचवा। बीर शहर महाराज से नंद किशोर, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि कारवां, बाबा साहेब कारवां, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टवूल, पीबी कुलथे। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है रास्ते प्यार के। इस गीत की फरमाइश की है हमें अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, सना, हीना, सकीला, जश्मीन, राजिया, सुल्ताना, अख्तर अंसारी, सूरज, मोहम्मद जावेद अंसारी। चंडीगढ़ से धनराज बाबू, सोहन जी जाखिर, चेतन जी सारवा, राजेंद्र काशनिया। नलेश्वर नगर नरवेल महाराज से पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, सोपान ताड़े, नारायण इंगले, आशीष मोहकर, ढाड़ीलाल खां, जावेद खां, अरफान खां, इरफान खां, सीमा बानो, विनोद खां। इसी गीत को सुनना चाहे अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट, कृष्णा केवट। अमरपुरा जालू जगदीश चंद्र प्रजापति, विमला प्रजापति, मोनू प्रजापति, राजेंद्र प्रजापति। झारेड़ फार्म हाउस गांव बहलोल नगर से नरेंद्र झारेड़, भीमसेन झारेड़, लोकेश झारेड़, गौरव झारेड़, पुनीता झारेड़, आरवी झारेड़। अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल रंजीत को, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

इसी के साथ ही गीतमाला कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30 पर। खेत खलियान कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:50 पर। इसमें आज जानकारी का विषय रहेगा बुआई से पहले ध्यान रखने योग्य बातें।

बहनी अपना कार्यक्रम घर आंगन सुनेंगी दिन में 1:05 पर। इसमें आज आप सुनेंगी विश्व पर्यावरण दिवस पर जानकारी, गर्मी में हल्के रंगों के कपड़े क्यों पहने, रेफ्रिजरेटर की दुर्गंध से छुटकारा, टी टाइम चाहत या फिर जरूरत।

फिल्म संगीत का समय रहेगा दिन में 2:30 पर। युवाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे पीएम सूत्रीय फार्मूला, लू से बचें स्वस्थ रहें, राजस्थानी लोक भाषा, शिक्षा और कौशल और आज का इतिहास।

सराय की आप सुनेंगे शाम 6:05 पर, जिले की चिट्ठी कार्यक्रम आप हमारे जयपुर केंद्र से सुनेंगे 6:40 पर। चौपाल कार्यक्रम का समय रहेगा 7 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे गीता रो गजरो, बाजार भाव और मौसम की जानकारी।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे राती 10:30 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: सभी सैनिक भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत से।
1: होशियार होशियार

अभी आपने हिंदुस्तान की कसम फिल्म का गीत सुना। आवाज़ें थी सुखविंदर सिंह, उदित नारायण और जसविंदर नरूला की। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत सुखविंदर सिंह का। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है कुदरत।

अभी आपने लता मंगेशकर को सुना, फिल्म का नाम था शागिर्द। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और लीजिए अब सुनिए इंतकाम फिल्म का ये गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

अभी आपने मशाल फिल्म का गीत सुना, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी। इसी के साथ ही सैनिकों के लिए कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे गजल गायक जगजीत सिंह को।

0: श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलियान।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बात करें आप खेती पाती की, और खेती पाती में देखा नहीं तो आपने जो किसान भाई लोग है भी अब जी सावणी की जिकी फसल है बिंग बिजात जिकी है लगभग कई आपने नरमें की है कपास की है बा करी दी। लेकिन अभी आपने जिका किसान भाई लोग है ग्वार जैसी फसलें भी बिजांत करेगा, और बिजांत करने से पहले अपने कई बातों को ध्यान रखना जरूरी है कि जिकी बात अगर आप ध्यान में रख गए अगर खेती करांगा तो अपने ज़्यादा फायदा होगा। और बात भी ये है कि सहसु जरूरी बात है कि जब भी आप कोई खेत की बिजांत करा कोई फसल की बिजांत करा तो बिंग खेत तैयारी जकी है वह बड़ो अहम आपको हिस्सों रख है। तो आप खेत तैयारी जकी है आप शुरुआत करनी चाहिए है, और खेत तैयारी के लिए अपन सहसु जरूरी बात है कि आप अच्छी तरह बिंग जुताई करनी चाहिए है। अब लारले दिन सी गर्मी जकी ही बा सांगो पांग पड़ी, और ये गर्मी में जका स्याणा मिनखा स्याणा किसान भाई लोग अभी तो जुताई करी जका ना करी बंग में अजी थोड़ी बहुत दिक्कत आज कल। लेकिन जका जुताई कर दी और बढ़िया तरीका से कल्टीवेटर से या फिर तोई से खेत की जुताई करी तो बीच क्या गर्मी के माँ आपने क्या माटी के माँ कई सा खरपतवार का जका बीज है या फिर जका कीड़ा लटांगा जका अंडा है प्यूपा जका है या फिर बांगा जका बिल है बे खत्म हो गया। और बीच क्यों क्या अब जिये अपनी फसल जकी आप बीजांत करांगा बढ़वार लेगी फसल बिंगू जो उत्पादन होगा बिंग में अपन ऊपर से रासायनिक जो छिड़काव है या फिर रासायनिक जो नियंत्रण है वो ज़्यादा करने की जरूरत कौन पड़े नहीं, ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत कौन पड़े नहीं, ज़्यादा खेचल करने की जरूरत कौन पड़े नहीं। तो ये जबकि छोटी बात जरूर है लेकिन अगर ध्यान में रखता तक अगर आप खेती करें तो बड़ो फायदो है। अब बात करें जी हाँ जका भाई लोग अभी फसल की बीजांत करेगा तो बे सहसु जरूरी काम तो पेल पुत वो करना है कि जट्ठो से आप बीज ले गया वो बीज प्रमाणित बीज होना चाहिए बढ़िया तरीके से उपचारित करेड़ो बीज होना चाहिए। और उपचारित करे बगैर तो अपन ने किया का फसल की कोई भी बीजांत किया बा नहीं करनी चाहिए। लारले दिन सी मैं इन जागे या राजपुरा कानी और बिन्ने आपने जगह विशेषज्ञ बात बताई एक रेडियो रिपोर्ट ले गया तो भी माँ बात कही कि जक्का भाई लोग अगर बीज उपचार करे बगैर फसल की बीजांत करे नहीं तो बिंग माँ क्या क्या 20-30% का आसा पास है जिकी फसल का उत्पादन है वो घट जाए। तो बीज उपचार करना जरूरी है, और बीज उपचार करने से क्या है कि 40% तक पौधा जो लगाव है जो फुटान है उगाव जो है वो बढ़िया हो जाए। तो 100 पौधा या माना नहीं तो भी 40 अगर खत्म हो जाए तो अपन नुकसान है भी चीज़ को। तो आप इसका काम करा जगह की वजह से अपन ज़्यादा नुकसान ना हो ज़्यादा घाटो ना हो नहीं। तो बीज उपचार जो करना जरूरी है, और इनका सागे सागे अपन भूमि उपचार करना जरूरी है क्योंकि भूमि में कई ऐसा कीटाणु जो है विषाणु जो है लटा है कीड़ा जो है भी अपनी खड़ी फसल ने नुकसान पुगा है। और बंग में एक मुख्य कीट वो है जगह का नाम है दीमक। थे जानी जान हो और पिछाड़ेड़ो कीट है जो को भले ही छोटो कीट है लेकिन इनको जो को नुकसान है बहुत बड़ो है। अगर आप इनको टेम सर नियंत्रण ना करांगे रोकथाम ना करा तो बड़ो नुकसान कर सके। वो क्या है उगानू लेगे और फसल जब तक आखिरी पड़ाव तक कवे बी तक नुकसान पुगवे और पूरी फसल ने चौपट करने की हिम्मत रखे हिमाकत कर सके तो बड़ो नुकसान कर सके। तो आप इनको जो को नियंत्रण है वो करना जरूरी है। और दिमक लागना का कई कारण जो है भी मैं थाना बता दूँ या खेत का माँ ज़्यादातर सुकोपन अपना रेवे आप पानी धानी कई बार कम देवा या फिर पानी जो है वो थोड़ो लगावा तो अपन हल्को फुल्को पलेओ जो है रूणी जकी है वह टेम टेम पर निकाल तो रहना चाहिए ताकि खेत का माँ नमी जकी है बा

बनी रहे। इंग साग साग अपन की करनू है कि अपा जकी खेत का मां गोबर की कच्ची पक्की खाद जकी है वा ले गए और नाक देवा और बी शुकी है कि दिमग मां आपने बीमा घर घर जका है भी बनाना शुरू कर दिया और गोबर जो है वो थन ध्यान है दिमक को खाद्यान्न मानी जाए और जठे गोबर है बैठे दिमक है, जठे छोटी मोटी लकड़ी कचरो चुको है वो है तो बैठे दिमक है। तो अपन आ बातों को पूरा ध्यान रखना है कि खेत का माँ जद भी आप घर से कूड़ी की जिकी खाद ले गए जावा घर की जिकी खाद है बा कच्ची खाद मानी जाए और अपा घर को जो कचरो है या फिर वो भेड़ो करे रखा पशुओं का जो गोबर है वो भेड़ो करे रखा और बीम बाद में क्या ट्राली में भर गए यार बिन खेत में ले जाकर नाक देवा तो वो ज़्यादा कोई फायदा वाली बात को नहीं। आ कच्ची खाद मानी जाए और कच्ची खाद की वजह से अपनी फसलों का दिमक लगने की संभावना जकी है वह ज़्यादा रहे। इनके अलावा अपने खेत का माँ पुराना जका फसल अवशेष है भी नहीं छोड़ना चाहिए। अभी लारला दिन से आप कणगी की कटाई भी करी और इनके अलावा सरसों की जगह कटाई करी सरसों का जो गुणो है बिंगा जगह सलरा है कच्चा जका है बिंगा जगह डंठल है और इनके अलावा कणगो जो कचरो है पराली जकी है वह अपने खेत में पड़ी। अपना भाई लोग के एक रहे कि जी अपने सामने की फसल की बिजांत करा तो बिंग माँ हड़के फुड़को पानी देगे और छोटी मोटी जुताई करके और बिंग माँ बिजांत करते हुए तो यह नहीं करना चाहिए। अपने जो को कचरो अपने खेत का माँ है बिंग माँ के है कि आप बिना छित्रियाँ जुताई करा बिना तोई छू या फिर कोई और तरीका छू बिना खाद के रूप में बदलने की कोशिश करा ताकि अपनी भूमि की जी उर्वरा शक्ति है भी में भी बढ़ोतरी हो जाए और इंग सागा सागा अपनी माटी में पानी धारण करने की जी क्षमता है वह भी ज्यादा हो जाए। एक तो जो खेत को खरपतवार जो है कचरो जो है वो क्या है कि अगर आप बिन बढ़िया तरीका छू जुताई कर देसा बिन खेत का वहां मिट्टी में मिला देसा तो वो खाद को रूप ले लेसी और खाद जकी है वह ऊपर से अपन के बार इसे सूक्ष्म पोषक तत्व जो है भी अपनी माटी का माँ है बिंग वजह से क्या अपन ऊपर से देना कौन पड़े नहीं भी खाद का माँ के का अपन ज्यादा फायदा होगा और वो काम जो को है वो अपन जिए कटाई हो जाए और जिए अपना जो अवशेष जो है कचरा जो है बिना आप माटी मिलाना शुरू कर दो और जिए अपना सावनी जी की फसल महीना बाद में 20 दिन बाद में अपनी बिजांत करनी हुआ तो बी टाइम क्या वो कचरो जो है सड़ सड़ा गए और खाद बढ़िया बन जाए। और इनके अलावा माटी के माँ जो जैविक पदार्थ है वो असंतुलन जो को है वो दिमक लागना मुख्य कारण भी मानी जाए तो जो जैविक कार्बन जका है कारण जका है वे भी अपन पूरा सुधारना पड़ेगा। माटी की जांच की हवा करवानी पड़ेगी माटी का माँ किसा पोषक तत्व जका है वे कम है ज़्यादा है बिंगी पूरी परख करके फिर ही अपना अपनी जो फसल है बिंगी भी जांच करनी चाहिए है। अब बात करें जो दिमक जकी है फसल की जड़ांग माँ तड़ांग माँ और पौधा के जगह अवशेष है बना नुकसान पुगा के उत्पादन कम कर दिया बात है जानो ये चीज़ ने और समय पर अगर नियंत्रण ना करा तो फिर क्या कह धीरे धीरे बिंगो जो को कुंभ है बिंगो जो को क्षेत्रफल है वो ज़्यादा बढ़ते जाएगा। अगर कट्ठी थोड़ी एक बीघा माँ या फिर थोड़ा सा कोई मरला कनाल में अगर दिमक है तो पूरे बीघा में पूरे मरबंग में फैलने की भी रखा था बिंगो जो को नियंत्रण है वो करना चाहिए। लेकिन स्याणा मी ने कहा बात के है कि दिमक को बिना कोई रासायनिक जो को नियंत्रण है वो तो ज़्यादा कारगर को नहीं फिर भी आप जका अपना जका विशेषज्ञ है अपना जका जानी जान किसान है बांग संपर्क में रहना चाहिए बांस जानबूझ के थोड़ा पतो कर लेना चाहिए कि आप दिमग को जो को इलाज है वो क्या कर सका। और इंगे अलावा थाने बता दें खेत की जी जुताई है बागेरी करनी चाहिए शुरुआत के मैं थाना बताई हो कि गर्मी का मौसम में जी गर्मी पड़ती है बी टाइम अगर आप जुताई कर दें तो गर्मी से आओ जो को कीट है दिमक जो है वो खत्म हो सके। इनके अलावा आप खेत का माँ उचित नमी जकी है वह बना के रखा थोड़ो थोड़ो हड़को पलेयो जो है वो पानी धानी जो है वो खेत में देता रहा नमी जट्ठा उसी नहीं बट्ठा दिमक कम लग गए। कई बार आप देखिए करानी का सुक्को जट्ठे है और भट्ठा अगर थोड़ो बहुत अगर नमी आ गई हल्की फुल्की नमी आ गई तो सुक्को और नमी ने मिला गया भट्ठे दिमक पैदा हो जाए तो अपन पूरी त्रिया से अपन नमी रखेंगे तो अपनी फसल का माँ अपनी भूमि का माँ अपने खेत का माँ दिमक जिकी हवा कौन लगे नहीं। और अच्छी त्रिया से सडेड़ी जिकी गोबर की खाद है वह ही इस्तेमाल करनी है या तो आप कंपोस्ट खाद तैयार कर सकें बहुत सा ऐसा जैविक तरीका है जका आप अपना के यार कंपोस्ट खाद जकी हवा तैयार कर सकें बी शू क्या आप खेत का मली जाके नाखांगा तो बिंगो दुगुणो तिगुणो फायदो जो है वो आपने मिलेगा। एक कच्ची जकी खाद है बस ज़्यादा आपने तो असर कौन करेगी नहीं लेकिन कंपोस्ट खाद जकी है बिंगी मात्रा भी आपने हिसाबगी सी रखनी है और फायदो भी आपने ज़्यादा होगा फसलों ने जो भी पौधो है जकी भी फसल आप बिजांत कर सें बिन पूरा जो सूक्ष्म तत्व जका है वे मिलेगा पूरा पोषण जो है वो भी नहीं मिलेगा। तो इन तरीके से आप क्या है जकी खाद जकी है वह बढ़िया तरीके से तैयार करके और फिर ही आप खेत में नाखनी चाहिए। और फसलों का जो अवशेष है थोड़ी देर पहले बात करी नहीं जकी पराली बच जाए ला रहा है कचरो जो को बच जाए गुणों जो को बच जाए भी गुणों ने माटी के माँ अच्छी तरीके से मिलाना जरूरी है ना। आजकल तो ऐसा बहुत सा तरीका जैविक तरीका आ रहा है जगह की वजह से कचरो जो खेत को है खेत को जो खरपतवार है एक तरीके से आप इन खाद में बदल सका तो वो भी आप तरीकों अपना सका। और इनके अलावा नीम की जगह खड़ी है वो एक कारगर उपाय माना अपना जगह विशेषज्ञ खेत का माँ अगर नीम की खड़ी को प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सें तो बिगवा किया है।

0: दिमाग लागने की जी की संभावना बा कम रहेगी। और बुआई के टाइम अपन ने नीम की जी की खड़ी है बा 100-150 किलोग्राम प्रति एक्टर के हिसाब से अगर आप खेत में नाखांगा तो आपने खेत की जी की माटी जी की है वह उपजाऊ बनेगी, और माटी के सागा सागा आपने खेत का माँ सूक्ष्म पोषक तत्व है बांगी भी भरपाई हो जाएगी, और इनके अलावा दिमक से भी खेड़ो छूट जाएगो, है ना। वो भी एक बहुत बढ़िया तरीको है। जैविक नियंत्रण तरीके के अलावा बात करें तो एक ब्यूबेरिया बेसियाना नाम से एक जैविक फंपू दवा है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कारगर उपाय है। और इनके सागा सागा आप नीम की जी की पत्तियाँ हैं वे भी अपना खेत का मान ले जाके नाक देनी चाहिए, तो भी क्योंकि अपने खेत का माँ एक तो खाद को काम कर जैसी एक खेत का माँ हड़को फुड़को कोई कीटाणु विषाणु जो है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो हम बातों को पूरा ध्यान रखना ऐसा, पर अब खेत करिए काम धंधा और भी करना है। हूँ चलूँ, राम राम सा राम राम।
1: श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे खेत खलियान। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रकृति का संतुलन को बनाए रखना देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्होंने ये बात कही। श्री शर्मा ने कहा कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और ये हम सभी का दायित्व है कि हम भी उसे बदले में कुछ दें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया।
1: प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रकृति सब कुछ हमें देती है। जो आपकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति हमारी ये प्रकृति करती है। सब कुछ हमें देती है, इसको कुछ हम भी देना तो सीखें। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। चाहिए कि आज से मैं संकल्प लेता हूं कि इसके क्षेत्र में मैं ये काम करूंगा, या मेरे खुद के व्यवहार में चेंज लाते हुए मैं पानी की बिजली की बचत भी करूंगा और पर्यावरण में मेरा सहयोग करूंगा।
0: मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य को कई सौगात दी। उन्होंने अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से इन औद्योगिक क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता पता लगाया जा सकेगा। इस दौरान राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल और CSIR सीरी पिलानी के बीच एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए MOU किया गया। इसका उद्देश्य प्रशासन में इको फ्रेंडली तकनीकी और नवाचार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने चार औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए ग्रीन को रेटिंग पुरस्कार दिए गए। श्री शर्मा ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चार नए क्षेत्रीय कार्यालयों का शिलान्यास किया। ये कार्यालय जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा और झुंझुनू में बनाए जाएंगे। उन्होंने 7 वन पौधशालाओं का भी लोकार्पण किया। साथ ही वन्य जीवों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए 8 प्री बेस एनक्लोजर का लोकार्पण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में पौधा रोप कर शुरुआत की। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तीसरे चरण की भी शुरुआत हुई। गंगा दशमी से शुरू हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आज ही संपन्न हो रहा है। अभियान के तहत सभी जिलों में समारोह रखे गए हैं। इस दौरान जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को जल गौरव सम्मान दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भीलवाड़ा की खारी का लांबा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री गांव में ही रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन सुबह गांव का भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री का गांव की प्राचीन बावड़ी में जल पूजन का भी कार्यक्रम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है।

0: द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है। स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी सेवा का जयपुर में ट्रायल शुरू कर दिया गया है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने इसे सहकारी परिवहन पहल को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि जयपुर के नागरिक अब भारत टैक्सी की बाइक, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जयपुर में लगभग 13,000 टैक्सी चालक इस प्लेटफार्म से जुड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि नए ग्राहक ऐप के माध्यम से यात्रियों को सुलभ किराया, पारदर्शी और निश्चित दरें, SOS आपातकालीन सुविधा, स्थानीय और विश्वसनीय चालक तथा बेहतर ग्राहक सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगण सुणण वारी सगळी भेणाने भाई केणांगा हिवड़शूं मोकला मोकला राम राम। बहनों कठी मैं लाइना पढ़ी कै तातो तातो बायरो, कै तातो तातो बायरो तपती पड़े अपार, पाका पाका टापरा ताता हुए अबार। पानी गा फोड़ा पड़े, कै पानी गा फोड़ा पड़े पड़े खर्च रो भार, काम काज होवे नहीं किकर पड़सी पार। दिन उगता सूरज तपै, कै दिन उगता सूरज तपै होवे उमस अपार, बढ़ती तो बढ़ती सुखा करे तावड़ो ध्यार। रे आनी अब रूंखड़ा, कै रे आनी अब रूंखड़ा ठंडी छायादार, नहीं खुला अब टापरा नहीं रियाती बार। नहीं लगावा रूंखड़ा, कै नहीं लगावा रूंखड़ा काट्या बारंबार, किन्ने देओ अब ओलमू खुद हाँ जिम्मेदार, खुद हाँ जिम्मेदार। सही बात है बहनों, आज के है विश्व पर्यावरण दिवस है, हैं तो है तो विश्व पर्यावरण दिवस भी, पर्यावरण के बारे में अपन के सावचेत करें भी आज पर्यावरण दिवस है, आज के दिन भी बताई जाए भी आ धरती अपनी माँ है और पर्यावरण है जिको ओ इनको सिंगार है। जद पेड़ पौधा पानी हवा और जीव जंत है नी ये सुरक्षित रहे लगा जन ही अपनो जीवन है वो खुशहाल बनेगो। और हर साल की है कि 5 जून ने विश्व पर्यावरण दिवस मनायो जावे, जिका को मकसद वही हुए कि पर्यावरण ने इन दिन बचावण की प्रेरणा मिले। पर देखो जे क्या करे नहीं कि भी आप ही जिन्ना पर्यावरण का दुश्मन बन जाए तो पर्यावरण ने बचा सी कौन, है नी। तो आज को के है आज के टाइम में आप देखा कि जिको बढ़ तो प्रदूषण है, पानी की कमी है, जंगलों की कटाई होने लग रही है,

और इन सब के कारण की है कि बढ़ती गर्मी पर्यावरण खातर एक बहुत ही मोटी चुनौती बन गई है। हाँ कारण शु बहनों की है कि आपने जिका छोटा छोटा कदम उठावा, जिया के देखो पेड़ लगावा, पानी बचावा और प्लास्टिक वाली चीज़ें नहीं बांगो उपयोग जी आप कम करा और आपने आसे पासे की है सफाई रखा, जन्ना ही की है कि इन पर्यावरण दिवस को जिको मकसद है वो पूर्ण हो लो है नी। और कह भी है कि स्वच्छ हवा और साफ जल जीवन री पहचान, कह स्वच्छ हवा और साफ जल जीवन री पहचान, पर्यावरण ने बचाओ जो ओ मारो अभियान, ओ मारो अभियान। अभियान सफल कद बनेंगो जना आपा सारा सावचेत रहेंगा है नी पर्यावरण के प्रति। आजकल की है कि देखो छुट्टियां हो रही है, लोग घूमने घामन जावे है नी, पहाड़ां पर ही घूमन जावे तो अठे तो जिको कचरो खिंडा हुआ जिको खिंडा हुई है, बट पहाड़ां पर जाके जिकठे बा शुद्ध हवा है, बठे शुद्ध वातावरण बिन्न भी जागे शुद्ध करी आवे, बठे ये चीज़ां ले जाए बोतलां ले जाए भी बठे फेंक फेंक कर आ जाए, तो आ कितनी गलत बात है नी। भी आप कोई भी चीज़ आप भी पर्यावरण की सारी पर्यावरण आप सुरक्षित कौन है अपनों कट्ठे भी आप मेन सुरक्षा कौन देन लाग रहा, अपनी जिम्मेदारी बने भी आप कट्ठे भी जावा तो पर्यावरण को पूरा ख्याल रखा है नी। जन्ना ही की है कि आपनों पर्यावरण सुरक्षित रहे सी। आप बात तो भी पर्यावरण पर और भी कर सी पर बीच में पहली सुन लिया आप एक चोखो सो भजन।

एक-एक पौधो रोप जो, एक-एक पौधो रोप जो, कर जो नेक विचार, आवण आली पीढ़िया ने मिलसी सुंदर संसार। तो बहनों आपा ने के है कि सही के वे भी एक एक पौधो जिन आप लगावांगा नी, जिन्ना ही के है कि अपनी जकी आने वाली पीढ़ियाँ नी बने सोहनो संसार। देखो पेड़ पौधा चारों मेर लागे जेड़ी जितनी हरियाली है बीसू, देखो कितो सोहनो लागे नी अपना संसार ने। देखो बेजा ही सोहनो लागे, बेजा ही फूटरो लागे, अपने मन ने मोह नालो है नी, और बैठे जी भी लागे इसी जगह पर। पण के है कि इं सीधा वीरान जगह पड़ी हुए तो बैठे जी भी कौन लागे नी। तो आपनों फर्ज बने कि आप अपने घर से शुरुआत करा, है नी। आप के है कि कोई जन्मदिवस गए मौके पर, या फिर कोई इसो मौको है भी जिके पर आप कोई यादगार मेकिंग गई है नी, तो आप सारा मिल गए आप एक एक पौधो जरूर लगावा, है नी। देखो आपने इतनी खाण की चीज़ें मिलन लाग रही है, इतनी अच्छा या अच्छी मिलन लाग रही है, ईंधन मिलन लाग, सारी चीज़ मिलन लाग रही पेड़ा से। तो आपनों भी फर्ज बने कि आपने आने वाली जी पीढ़ी है बने भी सारी चीज़ें अच्छी तरह मिल सके नी। नहीं तो देखो एक टाइम इसो आजी का हर किन्नी की है कि ऑक्सीजन खातर ला रहा सिलेंडर रखना पड़ेगा, है नी। ऑक्सीजन वाला जी का सिलेंडर आवे नहीं, आप हॉस्पिटलों में देखा तो बे सारा ना अपनी पीठ पर रागे चालनो सी जे इन तरह जी पेड़ कटता रहा। तो और देखो बहनों पेड़ अंग सग सग आप पानी की बात करें, पानी भी आपको की है कि पर्यावरण के माही आवे जी की पानी है, हवा है, पेड़ पौधा है, अपनी माटी है, अपना जानवर है, अपना आसे पास एक धरती है, वो सब पर्यावरण ही तो है। आप चारों मेर जी को देखन लाग रहा जिकी अपनी अखा ने सुहाण लाग रही है जिकी चीज़ बस पर्यावरण में ही तो आवे, है नी। तो आपनों सारा को फर्ज बने कि आप अपने पर्यावरण ने बचावा। अपने करे कि भी पानी की भी अपने को नहीं भी हर कठी आप देखो कोई घूम जाए, कई लोग के हुए कई आदत हो घूम जान लाग रहा है नी, जिया मान लो बसा में जावे ट्रेना में जावे, तो भी बने कोई सफाई कोई मतलब को नहीं, खायो और भट्ठी गाल दियो सारी चीज़ा। कई लोगों की आदत हो खायो पियो पेकट पाकट, आप देखा नहीं सड़कों पर जाता। अब देखो भी आप राजस्थान में रहे हो, आपने राजस्थान की भूमि कितनी पवित्र भूमि है, लोग बाहरों देख आवे अपने देश ने, अपने राज्य ने, अपने देश ने भी हाँ भाई वो भारत देश है, वो राजस्थान सूरवीर की धरती है, इन देख चलना। पर आप करके रखियो है, आप देखो कोई पार्टी पुर्टी अजकल चलन लग गई तो क्या डिस्पोजल, पहला तो सुने थाल हूं तब मैं जीमता तो भी बंज जानता, अजकल के डिस्पोजल आन लग गया तो डिस्पोजल में खाओ और भी डिस्पोजल रेड़िया, अबे हवा गए रुखू कदी इन्ना उड़ता फिर है कदी बिना उड़ता फिर है नी। और टाबरी आजकल पैकेट वाली चीजें आने लग गई दुकाना पर, बे लिया वे तो ही बे खा पी गए रेड़ दे नाख दे इन्ने बिन्ने, तो भी सड़कों पर किनारे किनारे अपन देखा नहीं कितना मोम जामा, और तो और लोग गरगो जिको अड़सीड़ो है नी जिको बच गयो वो भी आगे सड़कों पर रेड़ जे भी हाँ ठेकी है मारे घरे, तो भी घर साफ होना चाहिए देश राज्य बड़ी ना साफ हो, आ कोई बात है कि है आप अपनी देश भक्ति को इन त्रिया भी परिचय देश का भी आप अपने आस पास की ना कि गर्गी बल्कि जी के आस पास की जिज्ञा है आपनों क्षेत्र है जिको बिना आप साफ रखा, आप साफ रखा तो जिका लोग घूम आवे या दूसरे राज्य का जिका लोग आवे बेजना अपने राज्य ने देख सी तो बंग मन में उसी कह भाई देखो कितो सुनो आ सजा रखियो है नी, अंगू भाई राजस्थान में जाओ बैठे तो बेजा ही सुनी है नी, चारों पास ऐसी सुनी सफाई है। अब आप देखो और किसी राज्य में जावा तो बट देखा तो कई जगह कितना साफ हो तो अपना जिसोर हो नी बिसो अगलांगो जिसोर होना चाहिए, पर ना जी अठे तो जे

गुट कोकिंग खाए वो भी थूक दियो, और देखे ही कौन ही भी। हाँ भी सार्वजनिक जगह है तो बस हर सारा खाते ही है, सारा ही फर्ज भी बने भी, बटे सफाई भी तो रखो। जे बैठे की थे सफाई रख सो तो ही के है कि लोग अपने राज्य की सराहना कर सी, अपनी बड़ियाई कर सी। नहीं तो देखो कैसी भाई राजस्थान का लोग तो ऐसा है। अब तैसा लोग बनना चाहो या अच्छा लोग बनना चाहो, आपका राज्य ने ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहो या नीवे स्तर पर ले आना चाहो, वो थारे हाथ में। चलो बातें तो आप और कर, आओ सुना आप चो खुशो गीत।

कै बिनो पेड़ लगाओ प्रेम सू धरती रो श्रृंगार, हरियाली सू जीवै जगत खुशहाल गो संसार, खुशहाल बने संसार।

की है कि आपां ने परेशानी को कम सामनो करनो पड़े। तो इन वास्ते की है आपां ने देखो अपने तन की शांति खातर और मन की शांति खातर हल्के रंगा और हल्का वस्त्र पहनना चाहिए, जनाई की है कि आपां सुखी लेवाना है नी गर्मी में। और देखो काया को सुख तो बहुत ही जरूरी है, जे थोड़ी सी अड़कन सी लग गए नी भी बोली गर्मी लग गए या और हुए तो भाई बहुत जी दो रोवे है नी। इन वास्ते की है और जी खुश क्यों हुए, जी खुश तो देखो जे थे रेडियो में मारे प्रोग्राम सुनन लाग रहा हो और जे मैं अब सुनो सपूटरो सो गीत सुना दूँ तो भी सी भी थारू जी खुश हो जाए। तो आओ बहनों आप मिल गए सुनाओ चोखो सो गीत और करा जी ने खुश।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों थे सुनन लाग रहे हो थारो आप गो प्रोग्राम घर आंगन और मैं हूँ थारी बहन किरना। तो बहनों अब आप बात कर शां मीन टाइम के बारे में भी मीन टाइम है वो चाहत है और जरूरत है इन पर आप बात करा। तो सबसे पहला तो आपने वो समझना है कि मी टाइम को मतलब के है। तो मी टाइम को मतलब है बहनों भी आप खातर थोड़ो सो टेम निकालनो। देखो एक लुगाई को जीवन है नी वो चारों मेर की है घर गृहस्थी में फंसे डोई रहे है नी। बाप देखो कुंवारी कान माँ बाप के बारे में सारा के बारे में भाइयों के बारे में सोचती रहे है। और ब्याह बाद देखो जिया सास रह माजे तो सासरला खातर सोचती रहे फिर टाबर हो तो टाबरा खातर सोचती रहे। अठे ताई के देखो जे एक लुगाई ने टेलीविजन भी देखना हुआ नी तो बाप गए मर्जी से वो टेलीविजन पर चैनल कौन देख सके। देखो आदमी तो देखना है मैच टाबरियाँ देखना है कार्टून भी मैं लुगाई की चाहत है बा कट्ठी खो जावे है नी। और देखो बा जना खानो बनावे रसोई में जावे तो भी के है कि बा ने टाबरा की पसंद पूछिए बनावे आदमी की पसंद पूछिए बनावे पर आप गई पसंदगी कभी बा कोई यह सोचा है कि भी हाँ आज तो मैं भी मैंने आ चीज़ अच्छी लगे तो आज आ बना लूँ सारे खा ले सी है नी। तो गरगा ने भी सोचना चाहिए कि जिकी लुगाई है बस हर दिन थारे काम करने लाग रहे सब कुछ करना बिन भी बिंगी चाह तू कभी बिन पूछ लियो भी तेरी पसंद को आज ले रही तेरी पसंद को बना ले कभी बिला भाई तेरी पसंद को कोई चीज़ देख ले तना फिल्म देखने तो आ देख ले कोई गीत सुनने तो वो सुन ले है नी। पर आजकल देखो थोड़ी सुराई होगी आप का फोन हो गया तो बिंग मैं बस चीज़ देख सके। पर आप बात करा भी मी टाइम की भी आपकी पसंद का भी काम करे तो के है कि आप वो जना भी टेम निकालना है जब भी आदमी कोई आपको पसंद को काम करे आराम करे या सोच विचार करे तो भी चूंकि है कि मन में शांति रहे। तो आप बात कर शां भी इनकी जरूरत क्यों है तो इनकी जरूरत इन वास्ते है भी जना भी मन को काम कर सी नी तो भी चूंकि है मन और दिमाग दोनों ने आराम मिल सी है नी। कोई भी बिलुआई को नहीं घर में कोई भी आदमी है आज के टेम में भी कोई भी आदमी है लुगाई है टाबर है टिक्कर है जे भी आप गए मन को काम कर सी नहीं तो बन गए मन ने के है कि आराम मिलेगो हैं। और देखो तनाव है नहीं वो भी कम हो जाएगो और इन जरिए के है वो खुद पर भी ध्यान दे सके गो बीबी ने इन चीज़ की जरूरत है तो भी इन चीज़ में जो कोई कमी पेशी है तो वो भी ने सुधार भी सके है नी। और काम में के है काम करने से फिर भी ने भी नई ऊर्जा को संचार हुए गो। और आप बात करा चाहतगी तो कई बार लोग हुए भी आपकी पसंद रो काम जिया के किताब पढ़नो है कोई प्रकार को संगीत सुननो है घूमनो फिरनो है या कई भी तरह का शौक जे पूरा करना हुआ है तो भी खातर के है कि मी टाइम की बहुत ज़्यादा जरूरत हो है। और आपने देखो एक राजस्थानी में कोत भी है कि जिको आदमी खुद खातर थोड़ी देर निकाले नी वो दूसरा खातर भी के है कि बेहतर बन सके है नी। के वह भी है भी जे अपने से प्यार कर सा नहीं तो ही आप दूसरा से प्यार कर सका। जिको आदमी आप प्यार कौन करे नी वो दूसरा ने भी प्यार कौन दे सके है नी। सही कौन नहीं तो देखो बातों को सिलसिलो तो आप जारी रखांगा पर पहला आप सुन लिया प्यारो सो गीत।

बहनों बहुत ही फूट रो भजन सुनियो का बटाऊ आयो लेवाने बटाऊ तो जी कुआ सी बुत ले गई जा सी यानी भले कितना ही जतन कर लियो फिर तो पण के है कि बटाऊ ना आप थोड़ा दूर रखा ई वास्ते के है कि

बेनो जना भी मेरी याद आवे नी या प्रोग्राम की मार रेडियो की याद आवे तो रोन की जरूरत कौन करनो के है कि थे मैसेज करके कागजी लिख के भेज दिया करो और बताया करो कि थाना प्रोग्राम किसो को रखा है। और गर्मी तो बहुत पड़न लाग रही है, तो मेरी बहना ने आई विनती है कि देखो इन गर्मी में आप गो आपका परिवार।

गो है नी, बुढ़ा बडेरा गो, आपके टाबरिया सब को ध्यान रखो है नी, क्योंकि ये अम्मी की है का एक लुगाई की जिंदगी बस सेड़ियो आपके परिवार में, तो खुश रहो और देखो सुनता रहो रेडियो प्रोग्राम। अब बाई के नाने दो आज्ञा, राम राम।

अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे घर आंगन। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: का तमिलनाडु पुदुचेरी एंड कराईकल. एंड नाउ बिफोर वी एंड द बुलेट इन द हेडलाइंस वंस अगेन. Prime Minister Narendra Modi to dedicate and lay foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Gujarat today. Centre grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI keeps repo rate unchanged at 5.25%, reduces GDP growth projection to 6.6% from 6.9% for current fiscal. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal to arrive in New Delhi on three-day visit today. World Environment Day being observed, government inaugurates 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi. And India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under-18 Asia Cup hockey in Japan this evening. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की. रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा. चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया. नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर. विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है. सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया. और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे. प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे. प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे. हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी. प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे. समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी. अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत.
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है. ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी. सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा. मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है. रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है. द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है.
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है. इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है.
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने आरबीआई के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
4: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
5: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
6: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे।

0: अच्छा माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
1: पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
2: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमरीका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
3: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान

0: के काका मेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आपने मुकेश की आवाज़ में मधुमति फिल्म का गीत सुना। गीत के बोल शैलेंद्र के थे और संगीत था सलिल चौधरी का।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था अभिमान। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के थे और संगीत एसटी बर्मन का।

किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था सत्ते पे सत्ता। गीत के बोल गुलशन बाबरा के थे और संगीत आदि बर्मन का।

अभी आपने वारिस फिल्म का गीत सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की। गीत के बोल वर्मा मलिक के थे और संगीत उत्तम जगदीश का था।

एक दूजे के लिए। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, आवाजें थी लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में

0: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। वजीर आजम ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो आयुष वजारत की 365 योगा मुहिम के सफीर बने। मरकज ने सरकारी तमस्कात में असासों के फायदों पर गैर मुल्की इदारा जाति सरमाया कारों को टैक्स में छूट दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के दबाव से भारत रूस ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। उन्होंने भारत को एक काबिल भरोसा साझेदार करार दिया। आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हुकूमत ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का इफ्तिताह किया और शतरंज में ओस्लो में नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट के 90वें राउंड में आर परगनानंदा ने अपने ही हमवतन डी गुकेश को शिकस्त दी। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो जब अपने अपने वतन वापस जाएं तो आयुष वजारत की 365 योगा मुहिम के सफीर बने। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के इफ्तिताही की तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आयुष की वजारत ने योग के साथ पूरे साल सरगर्मियों की हौसला अफजाई करने और सभी तबकों में सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए योग 365 का आगाज किया। वजीर आजम ने कहा कि ये चैंपियनशिप खेल मुकाबले से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर है और इससे दुनिया भर में योग के वसी तरफ पैगाम की तशहीर का मौका फराहम हुआ है। मरकज ने सरमाए पर हासिल होने वाले मुनाफे पर गैर मुल्की इदारा जाती सरमाकारों और सरकारी तमस्कात में सरमाकारी से होने वाली आमदनी में सूद पर टैक्स में छूट दी है। हुकूमत ने इस सिलसिले में इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 को नाफिज कर दिया है। ये छूट इस साल 1 अप्रैल से काबिल इतलाक होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे के सफर को काबिल तहसीन रफ्तार मिल रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बताया कि एयर ट्रंक ने भारत में तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का सरमाया लगाने और 5 गीगावाट वाले डाटा सेंटर तैयार करने के मंसूबों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क के डिजिटल बुनियादी ढांचे के इको निज़ाम में सरमाकारी की सबसे बड़ी तजवीज़ है। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह की सरमाकारी से क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई के लिए एक आलमी मरकज के तौर पर भारत की पोजीशन को इस्तेहकाम हासिल होगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रूस की कलीदी साझेदारी की सताइश की है और जोर देकर कहा है कि रूस के साथ अपना इश्तराक कम करने के लिए भारत पर दबाव डालने की मगरबी मुल्कों की कोशिश ला हासिल है और इनसे आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच रहा है। सरकर्दा आलमी खबर रसां एजेंसियों के सरबराहों के साथ गुफ्तगू में सदर पुतिन ने भारत की माशी तरक्की और उसकी आज़ादाना खारजा पॉलिसी को सराहा और कहा कि रूस भारत के साथ अपने इक्तिसादी रिश्तों को वसत देने का पाबंद है। सदर पुतिन ने कहा कि भारत की माशी तरक्की उस मेहनत का नतीजा है जो भारत सरकार वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कर रही है। रूस के सदर ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ भारत के सिफारती रिश्तों से रूस के साथ वक्त की कसौटी पर खड़े उतरने वाले उसके रिश्तों में कोई खलल नहीं पड़ता और न ही ये कमज़ोर होते हैं। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक काबिल भरोसा साझेदार मानता है और किसी दूसरे के साथ भारत के बाहमी ताल्लुकात की वजह से किसी तरह के मनफी मुजमिनात की कोई बात नहीं है। सदर पुतिन ने मजीद कहा कि भारत एक अजीम मुल्क और अजीम जमहूरियत है और रूस के साथ अपने ताल्लुकात को वसत देता रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौजूदा माली साल में

लगातार दूसरी बार शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौजूदा माली साल के लिए दूसरी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि माली पॉलिसी कमेटी ने कम मुद्दत के कर्जे देने की शरह रेपो रेट को 5.25% की सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ने मौजूदा माली साल में मजमूई अंदरूनी मुल्क पैदावार GDP की शरह तरक्की कम होकर 6.6% रहने का अंदाजा लगाया है, जबकि इससे पहले इसके 6.9% रहने की बात कही गई थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने मौजूदा माली साल के दौरान अशियाए सार्फिन की कीमतों के इशारे पर मबनी अफरात जर की शरह का निशाना अब 5.1% कर दिया, जबकि इससे पहले 4.6% रहने की बात कही गई थी। गवर्नर ने तरक्की में सुस्त रफ्तारी के अंदेशों के तौर पर आलमी सप्लाई चेन में देरी न रुकावटों, बैन अवी माली मार्केट्स में गैर यकीनी सूरत हाल और मौसम से मुतालिक गैर यकीनी का जिक्र किया। RBI ने शेयर बाजारों में गैर रिहायशी भारतीयों, भारत के बैरून मुल्क आबाद शहरियों और बैरून मुल्क दीगर अहम सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के मौकों में भी इजाफा किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुर्रे अर्ज पर ज़िंदगी बचाने के लिए पैदावार बेदारी पैदा करने के खातिर माहौलियात से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 1973 से हर साल 5 दिन को ये दिन मनाया जाता है। नायब सदर CP राधा कृष्ण ने हमवतनों से कहा है कि वो माहौलियात के तहफ़ ज़िंदगी को बरकरार रखने और हयातियाती तनवों के तहफ़ के अपने अज़्म पर कायम रहें। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, उन्हें भी माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर अपने हमवतनों को मुबारकबाद दी है और कहा है कि ये दिन माहौलियात के तहफ़ और पायदार तरक्की के अज़्म का इआज़ा करता है। फितरत और कुर्रे अर्ज़ के तहफ़ के लिए माहौलियात के एतबार से मुस्बत इकदामात करने के लिए बेदारी बढ़ाने की खातिर ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत कौमी राजधानी में मैदानी गढ़ी के मुकाम पर नमो ऑक्सीजन पार्क में दरख्त लगाने के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। माहौलियात और जंगलात और आबोहवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के हमरा आज माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब यादव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत माहौलियात के मामले में कार्रवाई करने के एतबार से एक आलमी लीडर के तौर पर उभरा है। उसने शमसी सलाहियत में दुनिया का एक सरकर्दा मुल्क बनने समेत अहम हसूलियाबियाँ हासिल की हैं और आबोहवा में तब्दीली से मुतालिक UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत प्रोग्राम शुरू करने से कबल बैन अलावा शमसी इतहाद कायम करने, बैन अलावा बिग कैट्स अलायंस का आगाज़ करने के अलावा कौमी सतह पर मुतयन शराकत के आदाफ हासिल करने समेत कई संग मील तय किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज त्रिपुरा में लंका मुरा सरहदी चौकी पर सरहदी हिफाजती फोर्स के अमले से खिताब करते हुए सरहदी हिफाजत का एक जामे खाका पेश किया है। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर जनाब शाह ने मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों के माहौलियाती ताउन को उजागर किया। उन्होंने कहा कि 2019 में CAPF अमले ने तकरीबन 4,40,00,000 पौधे लगाए थे। वजीर दाखिला ने सरहदी हिफाजत पर जोर देते हुए कहा कि हुकूमत त्रिपुरा मगरबी बंगाल और बिहार के सरहदी इलाकों में गैर कानूनी आबादी में तब्दीली की रोकथाम की पाबंद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका मुल्क ईरान के साथ मुजाकरात कर रहा है। अलबत्ता उन्होंने इसरार किया कि किसी भी समझौते की रूह से ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से मुस्तकिल तौर पर रोका जाए। जनाब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि न्यूक्लियर अदम तोसी उनकी इंतजामिया के नज़रिए का मरकजी नुकता है। भारत के परगना नंदा रमेश बाबू ने ओस्लो में नार्वे शतरंज 2026 के 9वें राउंड में आलमी चैंपियन गुकेश को शिकस्त दे दी। इस जीत के साथ ही परगना नंदा को 15 पॉइंट्स हासिल हो गए और इस तरह वो वैसले से महज आधा पॉइंट पीछे रह गए हैं, जिन्हें 15.5 पॉइंट्स हासिल हैं। अली रजा फिरोज जा तीसरे नंबर पर हैं, उन्हें 14.5 पॉइंट्स हासिल हैं। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वजीर आजम ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया।

0: है कि वो आयुष वजारत की युवा 365 मुहिम का के सफीर बने। मरकज ने सरकारी तमस्सुकात में असासों के फायदों पर गैर मुल्की इदारा जाती सरमाकारों को टैक्स में छूट दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमरीका के दबाव से भारत रूस ताल्लुक मुतासर नहीं होंगे। उन्होंने भारत को एक काबिल भरोसा साझेदार करार दिया। आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब।

जी दोस्तों, मौसम यकीनन हसीन और हसीन हो सकता है अगर हम और आप चाहें। आज जो मौसम की बदएतदाली है, मौसम में जो डिस्टरबेंस है, जो आप गर्मी पे बढ़ती ज़मीन पर बढ़ती हुई गर्मी देख रहे हैं, ये सब हम लोगों की वजह से है। अगर हम चाहें तो इस मौसम को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है और वो तवज्जो आपको और हमें ही करनी है। देखिए, जैसे जैसे इंसानी

बढ़ती गई, जंगलात घटते गए। जो हमारा सब्ज इलाका था, जिसे हम ग्रीन एरिया कहते थे, वो सब खत्म होता गया, जिसके बाइस कूल एयर्स पर टेम्परेचर बढ़ता गया, और धीरे धीरे ये हम सब की ज़िंदगी के लिए खतरे की अलामत बन गया। लेकिन इसको आप और हम मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे वो बताएंगे आपको इस नगमे के बाद।

यहाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मौसम की। ये जो आज जिस दिन को मना रहे हैं आलमी यौम माहौलियात, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इस इन्वायरमेंट को बैलेंस करना हम सब की जिम्मेदारी है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, ज़मीन पर दर्जा हरारत बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे हमारे पानी के, जो साफ पानी के ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलते जा रहे हैं। आने वाली नस्लों को पानी का खतरा भी हो सकता है। साफ हवा तो एक बड़ा मसला है ही, लेकिन साथ ही साथ पीने के पानी का भी बहुत बड़ा मसला सामने है। हम इन सब से निमट सकते हैं अगर थोड़ी सी कोशिश करें, और बहुत मामूली सी कोशिश है। हमारे वज़ीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी ने भी इस जानिब कदम बढ़ाया है, और उन्होंने कहा है कि एक पेड़ ज़रूर लगाएं, और वो पेड़ माँ के नाम लगाएं। पेड़ लगाना ही मकसूद नहीं, बल्कि उसकी हिफाजत करना, उसकी परवरिश करना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। तभी ये मौसम खूबसूरत होगा, फिर मौसम पुकारेगा भी।

मौसम तो यकीनन भीगा भीगा हो सकता है। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि एक पेड़ लगाइए, उसकी परवरिश कीजिए, छोटा सा पौधा लाएंगे, आपके आसपास का मंज़र बदलेगा और आसपास का मौसम भी बेहतरीन हो जाएगा। वो एक पेड़ आपको कितनी तब्दीली देगा आपके आसपास के माहौल में, इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। और यकीन कीजिए कि जब वो पेड़ आप लगाएंगे, उसकी परवरिश करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, ये जो नन्हे नन्हे पौधे होते हैं ना, इन बच्चों से मिसाल मिसाल दी जाती है कि ये भी हमारे बच्चों की तरह होते हैं, हमें उन्हें उन्हीं की तरह उन्हें ट्रीट करना चाहिए। वक्त पर उनमें पानी दें, खाद दें, और फिर जब बड़े होने लगें तो अपने घर के आसपास किसी पार्क में लगा दें, तो उससे पूरा का पूरा मंजरनामा तब्दील होगा, एक सेहतमंद मौसम आपको मिलेगा। और यकीनन फिर ये कहेगा कि देखो मौसम क्या बाहर है।

0: बोले
1: झूल झूल के
0: साहिल का मुँह
1: झूल झूल के
0: ऐसे में चूहा
1: दीवाने हो।
2: तमन्नी सिलेक्टमी के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है मारूफ अदाकारा निम्मी से की गई गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग। आपसे महबूब गुफ्तगू है जनाब के कन्हैया।
3: मैं दरअसल हाजिर हुआ हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो उर्दू सर्विस के सामईन हैं उनके खत आते रहे हैं बेशुमार हमारे पास, और उसमें उनकी फरमाइश रही है कि आपके फन, आपकी जिंदगी, आपकी दिलचस्पियों, पसंद नापसंद, शौक, उनके बारे में मालूमात हासिल करें। उन्होंने आपकी फिल्में देखी हैं, आपके फन को सराहते हैं, तो आप इजाजत दें तो चंद एक सवाल मैं आपसे पूछूं।
4: इजाजत मांगकर शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं?
3: तो ये बताइए कि उस बरसात में जो रोल आपका था पहाड़ी लड़की का, उसके लिए राज साहब ने आपको मुंतखब किया
4: जी।
3: वो कैसे और क्यों?
4: जैसे लड़की उनको उस रोल के लिए चाहिए है, और उन्होंने मुझको पहली बार अंदाज की शूटिंग पर देखा था
3: जी।
4: और मेरा तो फिल्मों में काम करने का इरादा भी नहीं था, और नहीं मैं इस वजह से बॉम्बे आई थी। कुछ हादसात इत्तेफाकात के धारे बहाकर यहाँ ले आए थे, मगर यहाँ आने के बाद ये एहसास जागने लगा जब मैंने हर तरफ, क्योंकि मैं जहाँ से आई थी वहाँ आमतौर से लड़कियों को सिर्फ घर में बिठाकर एक ही चीज करवाई जाती है कि उनके पके हुए खानों को एडमायर किया जाए, उनकी तारीफ की जाए, और वो कैसे कपड़े सी लेती है और कैसा घर के तरीके जो हैं बस उन्हीं की तारीफें सुन सुन कर वो अपनी जिंदगी गुजार देती है। बहुत कम देहात के लोगों में, अब शहरों में तो अब बहुत कुछ हो गया, अब तो समझिए 15 बरस हो गए

0: यहाँ अगर जब मैंने देखा कि हर तरफ लड़कियां हैं और कैरियर हैं और ये है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, अगर मैं करूँ तो बहुत अच्छा है। जिन हालात में हम आए थे तो वापस जाना था, और मेरी ग्रैंड मदर जो थी, मेरी नानी, वो मुझे मेरे वालिद के पास पहुँचा कर जाना चाहती थी, और मैं उनसे इतनी मानूस थी कि मैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहती थी।
1: तो जब इन्होंने राज साहब ने आपसे कहा, ये वही था
0: अंदाज के सेट पर ही कहा, मैं तो भटक जाती हूँ, मैं आपसे कहा था
1: जी।
0: तो यहाँ जब लड़कियों को देखा कि कोई ना कोई काम टेलीफोन डिपार्टमेंट में, यहाँ वहाँ आर्टिस्ट भी नरगिस थी जो एक्टिंग कर रही थी उसमें अंदाज में, तो मैंने बहुत ही हिम्मत करके, जब सोचा भी नहीं था मैंने कि मेरी जिंदगी के साथी वो बन जाएंगे, अली रजा साहब दिख रहे थे अंदाज, और वो उनकी पहली फिल्म थी। तो मैंने बहुत डरते डरते उनसे कहा कि देखिए मैं यूपी की हूँ और उर्दू में अच्छी खासी लिख लेती हूँ, अगर आप मुझको अपना असिस्टेंट बना लें तो बहुत मेहरबानी होगी।

0: साग लेने को जाए पयंबरी मिल जाए। तो वो जब आए तो उन्होंने कहा बीबी जी ये किसकी तस्वीरें हैं? तो उन्होंने कहा इस लड़की की है। तो वो मेरी तस्वीर देखने लगे, कभी मुझे देखते थे कभी तस्वीर, कभी मुझे देखते थे, मुझे इतना गुस्सा आया ये कोई तहजीब है? और इतना गुस्सा से मैंने वो तस्वीरें छिनाई उनसे और मैं चली गई। पता नहीं उनको ये कैसा लगा। फिर मैं महबूब साहब का जिक्र किया, महबूब साहब ने किसी को भेजा कि बेबी आपसे साहब मिलना चाहते। तो मैंने सोचा महबूब साहब हमारे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त थे और वालदा वालिद सब लोग बहुत फैमिली फीलिंग थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इनको जानती हो? मैंने कहा कि मैं नहीं जानती थी बखुदा, मैंने राजस्थान की कोई फिल्म नहीं देखी थी। क्योंकि हम लोग तो देहात में रहते थे ना, तो कभी कभी शहर आने का अपने अजीजों में मौका मिलता था, तो एक आध फिल्म देख लेते थे। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने आग, ये पृथ्वीराज जी के बेटे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, इन्होंने आग बनाई थी, देखी थी? तो हालांकि मैंने नहीं देखी थी, मगर मैंने अखलाकन हाँ हाँ जी हाँ यहाँ देखी थी, नहीं नहीं और हाँ हाँ के बीच में बोलते, ये तुमको अपनी एक फिल्म में लेना चाहते हैं, तुम काम करोगी? आप यकीन कीजिए कि एक लम्हे के अंदर काम मुझे मिल गया, मैं काम करूंगी, कर पाऊंगी कि नहीं, एक हजार एक करोड़ यानी सवाल और जवाब मेरे दिमाग में घूम गए और मैं उसी खुशी में घर गई। और मैंने अपनी नानी से कहा कि अब हम लोग मिल जाएंगे क्योंकि मुझे कहीं काम मिल रहा है। तो वो उनके वो एक डर जो खौफ था वो अक्सरबाजी ने दूर किया। देखिए ये तो जगह ऐसी है कि कोई भी जगह हो, कोई भी तबका हो, कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें अच्छाई जो है वो तो नियत की पाकीज़गी और अपना ईमान है, बाकी अच्छाई बुराई तो हर जगह है।
1: निमि जी, ये जो पहली आपकी फिल्म बनी बरसात
0: जी हाँ,
1: तो इसके बाद बहुत से लोग आपको जानने लगे, आपको कैसे लगा एकदम शोहरत मिल जाने से? जहाँ आप ये महसूस कर रही थी कि कोई भी मुझे नहीं जानता है, और फिर आप जिधर जाएं वो नजर उठती है, लोग देखते हैं या इशारा करते हैं कि ये निम्मी जी हैं
0: जी हाँ,
1: तो तब आपको कैसा महसूस हुआ?
0: वो एहसास तो अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता।
1: कुछ अल्फाज तो जिनका सहारा लिया जा सकता
0: ये कुछ ऐसा साथ ऐसे होते हैं कि अल्फाज साथ छोड़ देते हैं। मुझे कैसा लगा मैं बता ही नहीं सकती आपको, एक कस्सा जरूर सुना सकती हूँ मैं।
1: जी जी इरशाद।
0: मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, दिल्ली में फिल्म रिलीज हो गई थी और यहाँ इश्तिहारों में अखबारों में तस्वीरें आने लगी थी, पोस्टर्स भी यहाँ बरसात के लग गए थे, दिल्ली में पहले रिलीज हो गई थी। तो मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे कुछ कोल्ड हुआ, सर्दी हुई थी। तो अक्सर जैसे मैं डॉक्टर के यहाँ जाती थी, डॉक्टर के यहाँ चली गई और उसके बाद मुझे ये मालूम हुआ कि एक हुजूम है और एक हंगामा है और हजारहा लोग जमा है बाहर। तो मैं बिल्कुल तमाशाई की तरह देखने के लिए आने लगी, तो डॉक्टर ने कहा कि आप न जाइए, ये सब आप ही की वजह से। तो मुझे ये मालूम हुआ कि वो मैं इतने हम हो गए। तो एक मतलब से भी फीलिंग आई, एक एहसास हुआ कि
1: वैसे ये वादा सुना के आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया है। आप कहती थी कि मुश्किल है, इसके बाद बरसात के बाद आपकी फिल्म?
0: बरसात के बाद तो यूं समझिए कि कुछ खुदा की कुदरत ऐसी थी कि डिस्ट्रीब्यूटर वहां से यानी ये तकाजे करते थे कि मैं हूँ फिल्म में तो वो खरीद लेंगे, तो इसलिए मैं कलम से खेलने लगी। मुझे ये मालूम ही नहीं था कि कौन सी फिल्म अच्छी है, किसके साथ काम करना चाहिए, किसके साथ नहीं। बस जिसने आकर मुझे ये कहा कि बस आप काम कर देंगी तो यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा बस। तो उसके बाद तो कितनी फिल्मों में मैंने काम किया और कौन सी पहली थी, कौन सी सेकंड थी, कौन सी थर्ड थी, वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है।
1: मेरा इरादा था कि मैं आपसे पूछूं कि आपने कितनी फिल्मों में काम किया है,
0: बिल्कुल
1: आपने मना कर दिया। तो अगर मैं आपसे ये फरमाइश करूँ कि आप ये बताने की जहमत करें कि जितने भी रोल आपने किए
0: जी हाँ,
1: उसमें से तीन चार चुन लीजिए जो आपको जाती तौर पे बहुत पसंद है।
0: हाँ, तक रोल की पसंदीदगी का सवाल है, सच पूछिए तो जिस तरह का रोल मैं करना चाहती हूँ, यूं तो मुझे मुख्तलिफ रोल करने का बहुत शौक है, वो मेरी पसंदीदगी का अभी तक मुझको मिला नहीं। लेकिन ये मेरी आदत है कि मुझे जो रोल मिल जाता है उसको मैं सिद्ध दिल से ये नहीं करती हूँ। बाकी अब तक की मेरी फिल्मों में मुझे दो फिल्मों के रोल पसंद थे और वो दोनों ही फेलियर हैं।

0: फिल्म?
1: दूसरी फिल्म थी क्षमा।
0: अच्छा,
1: क्षमा जो भाकरी साहब ने बनाई थी, तो वो वाकई इतना खूबसूरत था कि मुझे करने में एक्टिंग नहीं करना पड़ी। समझिए कि
0: दो फिल्में आपकी ऐसी हैं जो बहुत मकबूल हुई और देखने वालों ने आपकी अदाकारी को बहुत पसंद किया। पता नहीं किस मसलहत की वजह से आपने उनका जिक्र नहीं किया। एक आन और एक फिल्म थी आपकी पूजा के फूल में, आपका रोल था एक अंधी लड़की।
1: जी हाँ।
0: और ये बताइए आपके आपने कैसे रोल निभाया, ये बड़ा मुश्किल रोल था।
1: देखिए, रोल निभाना जो है उसका राज मेरे ख्याल में तो यही है कि जो रोल भी आप कर रहे हैं, अगर आप उसको महसूस करने लगे, अगर वो एहसास ले आइए, जो भी किरदार आपको करना है, जो भी रोल आपको करना है, अगर वो पूरे तौर से एहसास अपने आप में ले आइए, तो वो खुद ब खुद हो जाता है, उसे करने की जरूरत नहीं पड़ती।
0: तो आप समझिए कोई भी मुश्किल रोल अगर मिल जाए तो उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
1: मेहनत वो एहसास पैदा करना है अपने आप में, बस उसी में जिस कदर आपको मेहनत करना है, वो लम्हात है जिनमें आपको ये तो स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है ना, कि अपने आप को भूल कर और आपको वो एहसास लाना है, वो महसूस करना है कि आप निमी नहीं है, कि आप दलीप कुमार नहीं है, आप वो किरदार है जो प्ले कर रहे हैं आप। तो उसके बाद मुश्किल हल हो जाती है, वो लम्हात मुश्किल के हैं और इतने मुश्किल के हैं कि मैं आपको बता नहीं
0: सकता। अंधी लड़की का रोल करना है तो किसी अंधी लड़की को देखना कि ये कैसे चलती है,
1: मैनरिज्म देखना पड़ते हैं वो अंधी लड़की के लिए, क्योंकि वो हम लोगों से जिंदगी से बाकी तो हमें जिंदगी के किरदार करना पड़ते हैं ना, जो रोजमर्रा हमारे सामने रहते हैं, लेकिन क्योंकि अंधी लड़की का रोल करना है तो अंधे लोग हर वक्त आपके सामने इर्द गिर्द नहीं रहते, तो यकीनन मुझे देखना पड़ा। मैं अंधों के स्कूल में भी गई और मैंने अंधों को देखा भी, और मैंने ये भी देखा कि सब अंधे एक सा नहीं होते, सबके मैनरिज्म बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो उसमें से मैंने मुंतखब भी किया कि कुछ पलक झपकाते रहते हैं, कुछ अंधों की पुतलियां जो है वो चलती रहती है और किस्म किस्म के होते हैं। जब आप वहां जाइए तो आपको महसूस होगा कि कितने मुख्तलिफ अंधों के भी मैनरिज्म होते हैं, एक खास चाल होती है अंधों की, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता।
0: आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपकी फिल्म पूरन खटोला की तरफ भी इशारा करूं।
1: जरूर, जो जी चाहे पूछिए।
0: आपने उस रोल के बारे में आपकी क्या राय है?
1: बस वो एक रोल था, यानी जो हकीकी जिंदगी से अलग था, वो एक समझिए ख्वाबी दुनिया का रोल था। इन कहानियों में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो उड़न खटोला में थे।
0: अभी तो आप एक फिल्म में रोल कर रही तकमील की तरह गामजन है।
1: बस दुआ कीजिए कि जल्दी उसकी तकमील हो जाए।
0: अपनी ही जबान से उसका नाम और उसका तारीफ दीजिए, अपने रोल के बारे में बताइए कैसा लग रहा है।
1: वो तो जो इस वक्त हमारे मोहब्बत करने वाले और हमें इज्जत देने वाले जो सुन रहे हैं उन्हें मालूम ही होगा, उस फिल्म का नाम लव एंड गॉड है, जिसे मोहब्बत और खुदा भी कहते हैं।
0: अपने रोल के बारे में बताइए।
1: वो रोल तो सभी को मालूम है, वो लैला मजनू का बेस किया है उस कहानी को, बहुत ही नए अंदाज में और बिल्कुल हकीकी उसके जो बैकग्राउंड है, जो उसके ड्रेसेस हैं, उनको बड़ा रियलिस्टिक दे रहे हैं, अंदाज उसका बना रहे हैं। और लैला का रोल कैसा है वो बताने की तो जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे भी लोग बहुत दफा लैला को देख चुके हैं, स्टेज पे भी देख चुके हैं और फिर देखेंगे। पहले तो गुरुदत्त जी थे जिनकी याद के साथ ही एक दुख दिल में उमड़ता है और आंखों में नमी भी हो जाती है मेरी जब भी उनका जिक्र होता है। बहरहाल वो तो नहीं रहे और अब उनकी जगह संजीव कुमार ने ले ली है, और मुझे खुशी है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं इस रोल को, और उनकी छवि बहुत है उनमें।

0: कभी कभी तो मैं ये भूल ही जाती हूँ कि मैं गुरुदत्त जी के साथ काम कर रही हूँ या संजीव कुमार के।
1: तो फिर तो आपको एक ऐसा एहसास है कि जो एकदम बहुत बड़ी कमी पैदा हो गई थी, खलासा था कुछ हद तक तो ऊपर हुआ। पिछले इन्हीं दिनों जब मैं बंबई में हूँ, ये मुझे मौका मिला है, बड़े पुराने मुमताज डायरेक्टर हैं किरा शर्मा साहब, उनसे मिलने का। तो उन्होंने बातों बातों में आपकी फिल्म बेदर्दी का भी जिक्र किया।
0: जी हाँ, ये उनका बहुत एहसान है, मोहब्बत है, उन्होंने मैं याद आ गई। वो तो बहुत अच्छे डायरेक्टर है, मैं तो उनके फैन हूँ।
1: वो सिर्फ याद नहीं किया उन्होंने, वो आपके फन की तारीफ कर रहे हैं।
0: ये उनका अपना बड़म्पन है।
1: अच्छा ये बताइए निमित जी के, ये आप क्योंकि फिल्मों की तादाद तो आपको याद नहीं है, लेकिन हैं बहुत सी और बहुत से लोगों के साथ आपने काम किया है, तो आप किसके फन से मुतासर हुई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस में से?
0: ये यूं

0: or exorcismes.
1: You two, Nargis, you have just such a time inspired here? Or, you have such a time as set to be made on you could take her? Or, you have such a time as you could use name tea? Film में तमाशे की तरह देखती थी और इतनी समझबूझ नहीं थी कि किसने कैसा काम किया और कौन कैसा फनकार है. तो सबसे पहले मुझे नरगिस ने इंस्पायर किया जब से मैंने ये जानना शुरू किया कि एक्टिंग क्या चीज है और फन का मियार क्या है. उनके बाद गीता बाली, खुदा उनको बहिष्ट नसीब करे, वो मेरी बड़ी फेवरेट आर्टिस्ट थी.
0: वो बहुत प्यारी अदाकारी करती,
1: बहुत अच्छा काम,
0: बिल्कुल जिंदा जीती जा रही.
1: हमारी बदकिस्मती है कि वो हमसे बिछड़ गई. और जैसा कि अभी आपने कहा कि संजीव कुमार गुरुदत्त जी की जगह पुर कर देंगे, ये खला जो है इसको पुर कर देंगे, मगर उनका यानी जितने अच्छे वो टेक्नीशियन थे, जितने अच्छे वो डायरेक्टर थे, मैं समझती हूँ वो जगह
0: वो पुर करना मुश्किल है. इसीलिए मैंने कहा कुछ हद तक मैंने इंतजार किया था. ये मीना कुमारी जी के बारे में क्या रहा?
1: अरे बहुत बहुत ही उनके आशिक हूँ मैं और उनसे बहुत जलस भी हूँ. बहुत रश आता है मुझको उन पर, क्योंकि हम लोगों को तो काम करने की बहुत कोशिश करना पड़ती है और एहसास लाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ती है, लेकिन उनकी तो शक्ल, उनकी सूरत कुदरत ने, कुदरत का एक इतना बड़ा अतिया है कि वो कुछ ना करे, एक क्लोजअप आ जाए तो सारी एक्टिंग हम लोगों की घड़ी रह जाती है.
0: वही रहमान
1: बहुत अच्छी
0: है. एक्ट्रेस में आपने अपनी पसंद नहीं अभी तक बताई कि किसके फन से आप मुतासिर हुए?
1: वो तो सबसे पहला तो दलीप कुमार का ही नाम लेना पड़ेगा. उनके बाद राजकुमार, मुझे उस खासतौर से मैंने उनकी जो फिल्में देखी हैं, उनकी एक फिल्म मैंने देखी थी. वैसे यूं तो मैंने पहली बार उन्हीं के, उन्होंने मेरे साथ काम किया था पहली बार कह सकती हूँ या नहीं, क्योंकि वो एक फिल्म में आ चुके थे, मगर दूसरी फिल्म समझिए उन्होंने अपनी इब्तदाई दौर में मेरे साथ काम किया था. उसी वक्त मुझे ये एहसास था कि वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और हो सकते हैं. राज कपूर साहब का निकल तो यू समझिए कि निन्नी खुद उनका क्रिएशन है ना. अब ये जिसकी तकलीफ उन्होंने की है उनका मैं क्या जिक्र कर सकती हूँ. वो तो मेरे लिए बड़ी इज्जत की चीज़ है और इसमें कोई शक नहीं है कि बेहतरीन डायरेक्टर प्रोड्यूसर होना कोई इतनी कमाल की बात नहीं है, मगर एक्टर भी वो इतने अच्छे हैं कि जाकर वो आपने देखी थी
0: जी हाँ.
1: क्या ख्याल है आपका? अंदाज में भी उन्होंने इतना खूबसूरत काम किया था. यूसुफ साहब के साथ, दलित साहब के साथ बहुत अच्छा काम किया था. और यूं समझ लीजिए कि इनका उनका जो फर्क है ना, दलित साहब का और राज साहब का, वो ये है कि दलित साहब जो है वो फन की हिफाजत है, समझिए हिफाजत करते हैं, समझिए फन की, ये फन की हिफाजत करते हैं, वो फन की सहावत करते
0: हैं. अशोक कुमार साहब के बारे में क्या ख्याल है? उनके साथ तो आपने काम किया है फिल्म मेरे महबूब में.
1: हाँ, अशोक कुमार साहब के साथ काम किया है और मेरे महबूब का ये सुनिए कि इस कदर में उनकी दीवानी अशोक साहब की. इन लोगों के साथ, दलित साहब के साथ कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उनके साथ वाकई काम करना खुश नसीबी है आर्टिस्ट की, जो बार बार काम करने को जी चाहता है उनके साथ. लेकिन अशोक कुमार साहब के साथ मौका ही नहीं मिल रहा था काम करने का, दीदार में किया तो हमारा उनका शायद कोई घड़ी दो घड़ी का कोई एक सीन हुआ. तो बड़ी तमन्ना थी, क्योंकि एक वही ऐसे आर्टिस्ट हैं कि कैमरे के सामने, यानी कैमरा खुद काम करता रहता है, उन्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने रिलैक्स वो एक्ट करते ही नहीं है कभी कैमरे के सामने. यानी एक्टर की सबसे बड़ी खूबी है कि वो एक्टिंग न करे.
0: मोतीलाल जी के साथ आप कभी काम किया?

0: कोई नहीं, आशक्ति होगी।
1: मेरी सुन के आपने एक अदीब से शादी की है
0: जी,
1: तो ऐसा लगता है कि अदब से आपका खासा लगाव है। आप खुद भी देखती हैं क्या?
0: अदब से लगाव तो यकीनन है, लेकिन मैं किस हद तक जानती या पहचानती हूँ ये मुझे नहीं मालूम। और लिखने की बात तो ये है कि मैं सिर्फ अपने अजीजों को खत लिखती हूँ। सुना तो है कि उन लोगों को बहुत दिलचस्पी होती है पढ़ने में।
1: तो उनमें से किसी ने तकाजा नहीं किया कि आप अफसाने लिखा कीजिए, खत क्यों लिखते हैं?
0: खत लिखने में इतनी काहिल हूँ कि उनके तकाजों के बाद भी उस हद तक नहीं लिख सकती जिस हद तक वो चाहते हैं, तो अफसाने लिखने की बारी कैसे आएगी? आप बताइए।
1: ये बताइए कि जो आपकी शख्सियत के दो पहलू हैं, एक तो फनकार का पहलू है और एक पहलू वो है जो घर की चार दीवारी में एक औरत का जो पूरे घर की रौनक है, तो वो वक्त जो आपका घर की चार दीवारी में कटता है
0: उस रौनक को जिस हद तक बढ़ाने की कोशिश में मुनहमिक रहती हूँ मैं, वो आपको बता नहीं सकती। मैं कोशिश करती हूँ कि खुदा करे मेरे घर की जो खुशगवारी है वो हमेशा हमेशा कायम रहे।
1: क्या क्या करती हैं?
0: इतनी बहुत सारी चीजें हैं कि क्या करूं क्या न करूं, उन्हें सोचती रहती हूँ, काम रह जाते हैं और दिन गुजर जाता है।
1: माला जी से मैं मिला तो वो कहने लगे कि मुझे खाना पकाने का बहुत शौक है, आपको ऐसा शौक है कुछ?
0: मुझे इतने सारे शौक हैं कि मैं ये फैसला ही नहीं कर पाती हूँ कि सबसे ज्यादा शौक मुझे किस चीज का।
1: एक आप गिनवाइए तो अच्छा है।
0: ये दुनिया इतनी खूबसूरत है और चीजें इतनी खूबसूरत हैं, इतनी दिलचस्प हैं कि जिससे देखती हूँ ऐसा लगता है कि शायद मुझे इसी का शौक है। जैसे जब मैं बहुत हसीन फूलों को देखती हूँ तो मुझे लगता है मुझे बागवानी का शौक है, बागवानी करना चाहिए। करती हूँ जब बहुत अच्छा कहीं खाना खाती हूँ या मेरे शौहर दावत करते हैं किसी की और मुझे खुद खाना अगर ना भी बनाऊँ सुपरवाइज करना पड़े, ये जी चाहता है कि मुझे बहुत अच्छा कुक होना चाहिए, बहुत अच्छे खाने पकाना चाहिए। जब ये घर फर्निश करने का सवाल आता है तो ये जी चाहता है कि इसमें कुछ बड़े सलीके और बड़े कमालात दिखाना चाहिए। तो मैं फैसला ही नहीं कर पाती हूँ कि मुझे किस चीज़ का शौक है, बस लगी रहती हूँ और जब जिस वक्त जो काम करती हूँ उस वक्त ये महसूस होता है कि मुझे इसी का शौक है।
1: तो आपको कौन कौन से शायर हैं जिनका कलाम आपको पसंद है?
0: बहुत से शायर हैं जिनका कलाम पसंद है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा दीवान न पसंद आए और किसी एक शायर का एक शेर जो है वो जिंदगी भर मुझे याद रहता है और रहा है। वैसे मेरे पसंदीदा शायरों में है गालिब, इकबाल, जोश, फैज अहमद फैज और जी हाँ बहुत ही बेहद पसंद है। फैज साहब की तो वो नज़्म जो है मेरे छप गई है दिमाग में, जहन से उतरती नहीं। नूर जहाँ ने जो तरन्नुम भी देने से वो हाँ जी हाँ जी, और मैं अक्सर उसको गुनगुनाती रहती हूँ बेसुरे अंदाज में अपने। कभी कभी आपको पता है कुछ काम कर रही हूँ तो भी बस मुझे वो सुर ये नज्म और वो सुर बस मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं।
1: मेरा गाने जरूर अच्छे होंगे।

0: निमित साहब आपका शुक्रिया कि आपने फैज साहब का कलाम तरन्नुम से पढ़ा। मुझे यकीन है कि हमारे सामीन इसे सुनकर जरूर खुश होंगे। आदाब।
1: सामीन भी आप सुन रहे थे मारूफ अदाकारा निम्मी से की गई गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग। आपसे मैं अभी गुफ्तगू थी जनाब के के नैयर। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है फिल्मी नगमे में।

आप सुन रहे थे लोफर फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जिसे मौसीकी सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और दोस्तों लीजिए सुनिए SH बिहारी का लिखा है गीत, जिसे मौसीकी सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। फिल्म है प्यार झुकता नहीं।

एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में आप सुन रहे थे असल भोपाली का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजाया था राम लक्ष्मण ने। फिल्म थी मैंने प्यार किया।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये नगमा। नगमनिगार थी इब्राहिम आशिक, मौसीकार राजेश रोशन, फिल्म थी कहो ना प्यार है। और सामने लीजिए सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज़ों में जतिन ललित की मौसीकी से ये नगमा। फिल्म है जब प्यार किसी से होता है।

किशोर कुमार और मनहर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे प्रोफेसर प्यारेलाल फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए उषा खन्ना की मौसीकी से नगमा, फिल्म है आओ प्यार करें।

लाख करोड़ रुपए का सरमाया लगाने और 5 गीगावाट वाले डेटा सेंटर तैयार करने के मंसूबों का ऐलान किया है। मरकज ने सरकारी तमस्सुकात में अदासों के फायदों पर गैर मुल्की इदारा जाती सरमायाकारों को टैक्स में छूट दी है। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई तब्दीली न करते हुए इसे 5.25% पर बरकरार रखा है। उसने जीडीपी से मुतालिक अपनी पेशगोई में शरह तरक्की को कम बताया है। इस माली साल के दौरान पहले यह पेशगोई 6.9% पर थी, अलबत्ता इसे कम करके अब 6.6% कर दिया गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमरीका के दबाव से भारत रूस ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। उन्होंने भारत को एक काबिले भरोसा साझेदार करार दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका को अब नए हुरमुज के रास्ते जहाजरानी की सलामती के लिए यूरोपीय इत्तेहादियों की तरफ से फौजी मदद की जरूरत नहीं है। और आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को डिजिटल बुनियादी ढांचे के सफर को काबिले तहसीन रफ्तार मिल रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बताया कि एयर

0: दोबारा खुल जाएगी और महफूज रहेगी। व्हाइट हाउस में नामाधिकारियों से बात करते हुए जनाब ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने यूरोपीय और दीगर इत्तेहादियों को मदऊ किया था कि वो अबनाए हुरमुस की हिफाजत की कोशिशों में साथ दें। अलबत्ता उन्होंने दावा किया कि इस पेशकश से अब इनकार कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि जो ममालिक खलीज से आने वाली तवानाई की सप्लाई पर ज़बरदस्त तरीके से इन्हिसार करते हैं, उन्हें इस फैसले के सबब काफ़ी ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के पास तवानाई के घरेलू भरपूर ज़राए मौजूद हैं, लेकिन कई यूरोपीय और दीगर ममालिक खित्ते में बिला रुकावट जहाज़रानी पर इन्हिसार करते हैं। इस मामले को ईरान के साथ बातचीत से जोड़ते हुए जनाब ट्रंप ने कहा कि एक बुनियादी शर्त है कि ईरान न्यूक्लियाई हथियार हरगिज हासिल न करे। उन्होंने ये भी कहा कि आबनाए हुरमुस जल्द ही खुल जाएगी। आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुर्रे अर्थ पर जिंदगी बचाने के लिए बेदारी पैदा करने की खातिर माहौलियात से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 1973 से हर साल 5 जून को यह दिन मनाया जाता है। नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने हम वतनों से कहा कि वो माहौलियात के तहफ्फुज़, जिंदगी को बरकरार रखने और हयातियाती तनवु के तहफ्फुज़ के अपने आज़म पर कायम रहें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर अपने हम वतनों को मुबारकबाद दी है और कहा है कि ये दिन माहौलियात के तहफ्फुज़ और पायदार तरक्की के अज़्म का इरादा करता है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता के हमराह आज माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क्स का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर ने इस मौके पर मुल्क की मुहिम एक पेड़ माँ के नाम के तहत माहौलियाती इकदामात का भी आगाज किया। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे के सफर को काबिले तहसीन रफ्तार मिल रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बताया कि एयर
1: और राजस्थान में बोली जाने वाली सारी बोलियां राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, इन बोलियों की, उप बोलियों की अपने चर्चा करेंगे इस गीत के।

दोस्तों अपने बात कर रहे थे राजस्थानी लोक भाषा की। तो राजस्थानी भारत के राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में बोले जाने वाली एक समृद्ध और प्राचीन इंडो आर्य भाषा है। यह अपनी विशिष्ट संस्कृति, लोक साहित्य और मिठास के लिए जानी जाती है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में पहली बार इसे राजस्थानी नाम दिया था। और दोस्तों बात करें राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियों की, तो इसकी प्रमुख बोलियां और उप बोलियां मारवाड़ी बोली, यह पश्चिमी राजस्थान जोधपुर बीकानेर जैसलमेर में बोली जाती है, और

यह सबसे विस्तृत व प्रमुख बोली है। जयपुर और इसके आसपास क्षेत्रों में टोंक, किशनगढ़ में बोली जाने वाली जो राजस्थानी भाषा की बोली है ढूंढाड़ी, वो बोली जाती है। और मेवाड़ी बोली उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसी प्रकार से कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा के इलाकों में हाड़ौती बोली पाली जाती है। अलवर, भरतपुर क्षेत्रों में मेवाती, राजस्थानी की जो बोली है वो बोली जाती है। और दोस्तों, शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू और सीकर क्षेत्रों में बोली जाती है। और राजस्थानी भाषा और साहित्य की जो विशेषताएं हैं उनकी अपने बात करें तो राजस्थानी मुख्य रूप से देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से इसे महाजनी या बाणियावाटी लिपि में भी लिखा जाता था। साहित्यिक शैलियों में राजस्थानी साहित्य को डिंगल और पिंगल शैलियों में विभाजित किया गया है। डिंगल चारण कवियों द्वारा प्रयोग की जाती है, जबकि पिंगल पर ब्रजभाषा का प्रभाव अधिक रहता है। और दोस्तों, बात करें लोक साहित्य की तो इसमें वात, ख्यात, गीत और कहावतें बहुत लोकप्रिय हैं, जो राजस्थान के इतिहास और वीरों की गाथाओं का वर्णन करती हैं।

दोस्तों, अपने बात कर रहे थे राजस्थानी भाषा की और बात अब करें इन दिनों राजस्थान में सबसे ज्यादा जो आम जन को, जानवरों को, पक्षियों को परेशान कर रही है उसकी, यानी कि लू की। तो लू से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य को हम किस प्रकार से लू से बचा सकते हैं, तो दोस्तों लू से बचने के लिए हमें हमेशा हाइड्रेटेड रहना होगा और धूप में निकलने से बचना होगा। इसके लिए हल्के ढीले सूती कपड़े

हम पहने और जब भी तेज धूप हो तो सिर को ढक करके हम बाहर निकलें। और सही मायने में तो दिन के जो सबसे गर्म समय होता है दोपहर के 12 बजे से लेकर के शाम के लगभग 4 बजे के आसपास तक, तो इसके बाद ही हम अगर घर से बाहर निकलें तो लू से, इस धूप से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और दोस्तों, जो हमारी त्वचा है, हमारा शरीर है, इसको हम तरोताजा किस प्रकार से रख सकते हैं इस लू के अंदर, तो इसके लिए हमें सादे पानी के अलावा नींबू पानी, ओआरएस, नारियल पानी, कच्चे आम का रस, छाछ आदि का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। और खान पान में भी पानी से भरपूर फल, तरबूज, खीरा, ककड़ी और हरी सब्जियों का हम अधिक से अधिक इस्तेमाल करें तो लू से, गर्मी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और दोस्तों, धूप से बचाव के लिए अपने सिर को ढककर बाहर निकलें और जब भी निकलें तो छाते का, सूती कपड़े का इस्तेमाल करें, सिर और कान को अच्छी तरह से ढक करके बाहर निकलें। और दोस्तों, जो कपड़े हम पहनते हैं वो भी गहरे रंग के और टाइट कपड़े इस मौसम के अंदर न पहने, हल्के रंग के, पूरी बाह के और ढीले सूती कपड़े पहने, जिससे हम हमारा जो गर्मी से बचाव हो सकता है, हमें लू नहीं लगेगी। और धूप में हम जब भी निकलें तो हमारी आँखों के बचाव के लिए धूप के चश्मे का इस्तेमाल जरूर करें। और दोस्तों, हमारे घर को ठंडा रखने के लिए दिन के समय जो घर में खिड़कियां बनी हुई हैं, जो पर्दे हैं, वो हम बंद रखें ताकि गर्म हवा और धूप अंदर न आ सके। और शाम को या रात के समय में हम जब तापमान कम हो जाता है तो ताज़ी हवा के लिए हम खिड़कियां खोल सकते हैं। और दोस्तों, लू से बचाव के लिए जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनकी हम राय भी ले सकते हैं, तो इसलिए जब भी हम धूप में बाहर निकलें तो हमें अपना ख्याल, बच्चों का ख्याल, बुजुर्गों का ध्यान और जानवरों का, पशु पक्षियों का भी जो ख्याल है, हमें ही रखना है।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों, बात करें पीएम सूत्रीय फार्मूला की, तो प्रधानमंत्री का जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम है अल्पसंख्यक कल्याण के लिए, यह 2005 में शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र द्वारा जो अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन के जो वंचित वर्ग हैं, उनको समान अवसर प्रदान किए जाएं। इनके लिए अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और मदरसा शिक्षा का प्राप्त कर सकें, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बनाया गया है, और इसी प्रकार से कौशल विकास और आर्थिक गतिविधियों के लिए आसान ऋण की सुविधा भी इस वर्ग को दी जाती है। और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी विकास किया जाता है और इस समुदाय को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

और इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी इनको प्रदान की जाती है। और दोस्तों, आपदा प्रबंधन पर 10 सूत्रीय जो एजेंडा बना है उसमें भी आपदा जोखिम प्रबंधन के जो सभी विकास कार्यों का यह हिस्सा बनते हैं, गरीबों से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक सभी के लिए जोखिम कवरेज की व्यवस्था भी इस वर्ग के लिए प्रदान की जाती है। आइए सुनिए कार्यक्रम में अगला खूबसूरत गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों बात करें शिक्षा और कौशल की, तो किसी भी प्रकार के कौशल से पहले हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और आज के समय में प्रत्येक नागरिक का पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है, और विशेष रूप से दोस्तों महिलाओं का शिक्षित होना समाज के विकास के लिए वर्तमान दौर में यह बात सर्वमान्य है कि महिलाओं को भी शिक्षित होना चाहिए जितना कि पुरुषों को। यह सत्य और सिद्ध है कि यदि माता शिक्षित नहीं होगी तो उनकी संतानों का भी सही तरीके से जीवन यापन नहीं।

वे विकसित नहीं होंगे, उनका कल्याण नहीं हो सकता। और श्रोतव, विद्या के समान कहा जाता है ना कि कोई नेत्र नहीं है, और माता के समान दुनिया में गुरु नहीं है। यह बात सच है कि बालक के विकास पर प्रथम और सबसे अधिक प्रभाव उसकी माता का ही पड़ता है। माता ही अपने बच्चे को पाठ पढ़ाती है। बालक का यह प्रारंभिक ज्ञान पत्थर पर बनी अमिट लकीर के समान जीवन का स्थायी आधार बन जाता है। तो लड़कियों का पढ़ा लिखा होना, महिलाओं का पढ़ा लिखा होना समाज के विकास का, देश के विकास का आधार माना जाता है। श्रोताओं, शिक्षा और कौशल की बातें अपने और करेंगे। फिलहाल अब सुनिए ये खूबसूरत संगीत।

दोस्तों, अपने बात कर रहे थे शिक्षा और कौशल की। तो कौशल विकास और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा सैद्धांतिक ज्ञान और समझ प्रदान करती है, जबकि कौशल उसको उस ज्ञान को वास्तविक जीवन में लागू करने और रोजगार योग्य बनाने में सक्षम बनाते हैं। दोस्तों, शिक्षा और कौशल के अपने महत्व की बात करें तो केवल डिग्री प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। आधुनिक उद्योगों में व्यवहारिक और तकनीकी कौशल की अत्यधिक मांग है, तो ये कौशल हमें रोजगार भी प्रदान करता है। और कौशल आधारित प्रशिक्षण युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार करता है, आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। और दोस्तों, कौशल से गरीबी उन्मूलन और व्यक्तिगत आर्थिक वृद्धि का सबसे प्रभावी माध्यम बनता है, हमारा सतत विकास होता है। और इसके लिए जो आवश्यक कौशल के प्रकार हैं वो दोस्तों डिजिटल साक्षरता, मशीनों का संचालन करना, कोडिंग करना, और इसके लिए तकनीकी कौशल जरूरी है। संचार, टीम वर्क और समस्या समाधान के लिए हमें सॉफ्ट स्किल्स भी सीखना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन का काम, कृषि और सिलाई कढ़ाई जैसे हुनर भी हमें रोजगार प्रदान करते हैं। इसके लिए हमें व्यावसायिक कौशल की भी आवश्यकता होती है। तो इन सभी के द्वारा हमारा जो विकास होता है, हमें रोजगार प्रदान होता है। आइए दोस्तों, अब सुने कार्यक्रम में अगला गीत।

दोस्तों बात करें आज के इतिहास की, तो आज ही के दिन यानी 5 जून 1946 को अरुणाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री प्रेम खंडू का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1953 में डेनमार्क में नया संविधान लागू हुआ था और भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्रशिक्षक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी रमेश कृष्णन का जन्म 5 जून 1961 को आज ही के दिन हुआ था। और 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण

श्रोताओ, इसी गीत के साथ आज की युववाणी के इस अंक से अपने दोस्त दुर्गाराम नायक को आज्ञा दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ समय बाद शाम के 6:05 पर आप सुनेंगे सैराइकी। संध्या 7 बजे कार्यक्रम चौपाल में आज सुनेंगे गीता रुगजरो। 7:45 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत और रात्रि 8 बजे एक ही फिल्म से जानकारी और गीत कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। रात के 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, समाचार संध्या 8:45 पर और अंग्रेजी में समाचार रात के 9 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले। सुगम संगीत यह कार्यक्रम होगा रात के 9:15 पर। पंजाबी साप्ताहिक प्रोग्राम मिट्टी की खुशबू आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10:30 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

चिंतन का समय रहेगा सुबह 6:45। खेतीहरा वास्ते ये कार्यक्रम होगा कल सुबह 7:10 पर। इसमें जानकारी का विषय रहेगा जल संरक्षण एक आवश्यकता। मानस गान का सेस्वर पाठ आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर। कल सुबह 7:30 पर कार्यक्रम सुप्रभात में आप सुनेंगे चर्चा अच्छा संगीत, मानसिक आराम, तन मन की स्वच्छता और जल ही जीवन विषयों पर। इसके साथ ही आप सुनेंगे कुछ खूबसूरत हिंदी फिल्मी गीत। कल सुबह 8:45 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे कल सुबह 9:00, जिन्हें हम जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। 9:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फरमाइशी प्रोग्राम अनुरोध गीत आप सुन पाएंगे कल दिन में 12:05 पर। सुगम संगीत का समय रहेगा कल दोपहर 12:30 पर। 12:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान में चर्चा उत्पादकता वृद्धि के मूल मंत्र अपनाएं। और दिन में 1:00 आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित। कल दिन में 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे महिलाओं का करियर पत्रकारिता के क्षेत्र में, समर स्किन केयर और मेकअप टिप्स, किडनी स्टोन में डाइट का रखें खास ख्याल, हर घर की कहानी, आज खाने में क्या बनाएं विषय पर चर्चा रहेगी। और दिन में 2:00 आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे कल दोपहर 2:30 पर। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम आप सुना करते हैं दिन में 3:00 से, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल संध्या 5:00 आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। संध्या 7:00 कार्यक्रम होगा चौपाल। और कल रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। 9:30 पर राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका। और कल रात 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम सराय की।

गीत तुहाकू पसंद आया होसी। कलाकार हन कुलदीप माणक, सिराय की भैणो भरावो। आजकल लड़ाई झगड़े बहु वधेंदे पए हिन। आखा वेंदा कि लोगां इच धीरज कैनी, जदण के धीरज हर तकलीफ दा हल है। पर होंदा की है, लोग छोटी जही गल ते झगड़न लग पौंदे हिन। सड़क ते जरा कु अगू टक्कर थी जावे ते लोग केड़ियां गालां कढेंदे, मारण ते उतर आवंदे हिन। हुण कैं को आखे इस तरह ना करो, कुछ तां धीरज रखो। कावड़ नाल दा झगड़ा बिया वधेंदा है, प्यार नाल गाल मुक वंजे तां झगड़ा होंदा ही कैं नहीं। कावड़ तां आवदा है, पर नुकसान भी तां अपना ही होसी, के फायदा। बाबा फरीद कहंदे हिन, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। देही रोग न लग गई, पल्ले सब किछ पाए। केड़ी चंगी गाल आखी है शेख फरीद ने, के कावड़ नाल रोग लगेंदे हिन। अजकल तुसा डेधे बीपी शुगर हां को लगन आले रोग, ये सारा कावड़ नाल ही थींदे पए हिन। धीरज जो कहनी, धीरज नाल प्रेम वधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तैराकी। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 होने वाले हैं। अब हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रादेशिक समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आरबीआई ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर यथावत रखा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में पौधरोपण और वितरण तथा जागरूकता कार्यक्रम हुए। हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने का संदेश दिया गया। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापेमारी की।

0: और बैंक दर 5.5% पर ही है। चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत भारी झटकों का न्यूनतम प्रभाव के साथ सामना करने की स्थिति में है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि घरेलू आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं। मौद्रिक नीति समिति आगे के फैसलों में आंकड़ों, आपूर्ति दबावों और आर्थिक घटनाक्रम पर नजर रखेगी। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। आरबीआई ने अनिवासी भारतीयों, भारत के प्रवासी नागरिकों और अन्य पात्र विदेशी निवेशकों के लिए इक्विटी बाजारों में निवेश के अवसरों को भी बढ़ाया है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इस पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और इस तरह की कमी को तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विधानसभा परिसर में निर्वाचन अधिकारी भारत भूषण शर्मा के समक्ष उन्होंने नामांकन पेश किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। पार्टी ने श्री डांगी की उम्मीदवारी को सामाजिक प्रतिनिधित्व और संसदीय अनुभव के प्रति विश्वास का प्रतीक बताया है। उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह स्थान आर्द्रभूमि पक्षियों की विविधता से समृद्ध है, साथ ही कई तरह के प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का आशियाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के साथ ही हरित भविष्य के लिए सहायक है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि को इकोलॉजिकल संरक्षण की दिशा में अहम बताया है। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वेटलैंड, ग्रासलैंड और वुडलैंड तीनों आवश्यक हैं।
1: मैं हमेशा हमारे वन विभाग में भी जब चर्चा करते हैं और लोगों को भी पर्यावरण की दृष्टि से कहना चाहता हूँ, तीनों महत्वपूर्ण होती है। वेटलैंड भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारी आसपास की झीलें हमारी जमीन में नमी बना के रखती है, पक्षियों को आसरा देती है और अगर एक बड़े शहर में एक अच्छी झील हो तो लोगों को सुकून देती है, घूमने की जगह देती है। झीलें आप देखो कितने लोग घूमने आते हैं, तो हमें इसके जो कैचमेंट एरियाज हैं सभी लोगों को उसको बचाना चाहिए। जितना वेटलैंड महत्वपूर्ण होता है उतना ही ग्रासलैंड महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे वेटलैंड भी है, ग्रासलैंड भी है और वुडलैंड ट्री भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है और इसके संरक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं।
0: विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने और प्रकृति का संरक्षण करने की अपील की है। आज जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित समारोह में बोलते हुए श्री शर्मा ने सभी नागरिकों से पानी बिजली की बचत करने और राज्य को हरित तथा स्वच्छ बनाने में योगदान देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस साल राजस्थान में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश भर में हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने के संदेश को लेकर कार्यक्रम रखे गए। अलवर में सशस्त्र सीमा बल की ओर से पौधरोपण और वितरण किया गया। हनुमानगढ़, डीग, सिरोही, नागौर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सवाईमाधोपुर सहित अन्य स्थानों पर विद्यार्थियों और आम लोगों ने पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। भरतपुर में पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई। झुंझुनू में पर्यावरण संरक्षण संबंधी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रतियोगिताएं रखी गईं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 5.25% पर यथावत रखा है। स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा

0: वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। तीन दिन की देरी के बाद कल केरलम से मॉनसून का प्रवेश हुआ। इस बीच राज्य में भी प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। कल शाम से ही कई जिलों में आंधी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह में मॉनसून के राजस्थान पहुंचने के आसार हैं। विभाग ने 7 जून तक कई हिस्सों में आंधी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। आज राज्य के 14 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट बताया गया है। मौसम में आए बदलाव से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, बीते 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में गरज और चमक के साथ तेज बरसात हुई। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में 7.5 सेंटीमीटर पानी बरसा। झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू और राजधानी जयपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज अंधड़ से कुछ जगह हादसों की भी खबर है। भरतपुर और भीलवाड़ा में अंधड़ से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आज राजस्थान और पंजाब में 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी की टीमों ने जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में एक साथ कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में मोबाइल, सिम कार्ड और साइबर अपराध से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पकड़े गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि साइबर अपराधियों के तार विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं। ईडी इन ठगों के वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से आज सोमनाथ यात्रा 2026 का शुभारंभ किया गया। प्रदेश में चल रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत लगभग 1000 बुजुर्गों को रेल के जरिए सोमनाथ यात्रा पर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। मीडिया से बातचीत में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि इस यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं निःशुल्क रहेंगी।
1: राजस्थान सरकार ने 1000 यात्रियों को सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए, उनकी भव्यता दिखाने के लिए, उनका इतिहास दिखाने के लिए आज जयपुर से 1000 यात्री ये सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ में द्वारकाधीश के भी दर्शन होंगे, भेट द्वारका के भी दर्शन होंगे और नागेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन होंगे। तो इस तरह से 7 दिन का टूर यात्रियों का रहेगा। उसकी सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग ने की है।
0: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बीकानेर जिले के लालगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम लगभग पूरा हो गया है। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का कायाकल्प कर यहां आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि स्टेशन के हाईटेक होने से पर्यटन, स्थानीय हस्तशिल्प और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
2: सारे एमिनिटीज हैं पैसेंजर के, उनको मॉडर्नाइज किया गया है, चाहे वो सर्कुलेटिंग एरिया हो, सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट हो, चाहे रिटायरिंग रूम्स हो, चाहे वेटिंग हॉल्स हो और चाहे पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, सभी पैसेंजर से रिलेटेड एमिनिटीज को इसमें नया कर दिया गया है। साथ में जो FOB है उसका भी कार्य लगभग 85% पूरा कर लिया गया है। उसके साथ में एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके तहत लगभग 50 किलोवाट सोलर एनर्जी को इस स्टेशन पे इंटीग्रेट किया गया है, जो कि स्टेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
0: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे फर्जी रेलवे भर्ती विज्ञापनों से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मंडल ने इन विज्ञापनों को फर्जी बताते हुए कहा है कि इनके जरिए बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी के प्रयास किए जा सकते हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने कहा है कि भारतीय रेलवे सभी भर्तियां निर्धारित नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत करता है, निजी माध्यमों से चयन की कोई प्रक्रिया नहीं होती। प्रदेश में इबोला वायरस का संदिग्ध मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। युगांडा से राजस्थान आई एक विदेशी महिला में इस बीमारी से मिलते जुलते लक्षण पाए जाने के बाद उसे जयपुर के RUHS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिलाओं को विशेष आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। RUHS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि फिलहाल महिला में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। महिला का सैंपल जाँच के लिए पुणे की प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की एक

0: 235 घड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आरबीआई ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर यथावत रखा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में पौधरोपण और वितरण तथा जागरूकता कार्यक्रम हुए। हरियाली बढ़ाने और प्रकृति बचाने का संदेश दिया गया। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापेमारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आशीष गोयल ने तैयार किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज से ही हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत हुई। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हुआ। वन विभाग की ओर से आज लोगों को पौधे वितरित किए गए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान भी आज संपन्न हुआ। 25 मई को गंगा दशमी से शुरू हुए इस अभियान के दौरान जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जल स्रोतों की साफ सफाई के कार्य किए गए। अभियान के तहत 577 जल संरचनाओं की सफाई की गई, वहीं 37 की मरम्मत और पुनर्जीवन के काम शुरू किए गए। 237 ग्राम सभाओं सहित अन्य गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश आम जन तक पहुंचाया गया। कोटपुतली नगर परिषद इन दिनों पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोक कल्याण मेले लगाया गया है। 30 जून तक चलने वाले इस मेले में अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी पटरी संचालकों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही छोटे व्यवसाय करने वाले वेंडर्स को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में पुलिस की ओर से अवैध मोडिफाइड वाहनों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि इस दौरान वाहनों की बॉडी में परिवर्तन कर प्रेशन हॉर्न और अवैध रूप से लाल नीली बत्तियां लगाने तथा नंबर प्लेट में बदलाव करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने जिले में पड़ रही तेज गर्मी के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को पीने के पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने को कहा। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित लोगों के लिए विशेष प्रबंध करने को कहा गया है। जिला कलेक्टर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला स्तरीय महिला समाधान समिति, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और महिला सुरक्षा केंद्र की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। साथ ही जिला कलेक्टर ने नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बनाए गए जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की भी बैठक ली। पावटा में नया न्यायालय भवन बनाया जा रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने नए भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसके निर्माण पर 3,29,00,000 रुपए की लागत आएगी। जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के तहत मकानों का सर्वे और मकान गणना का काम लगातार जारी है। प्रगणक घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण और आवश्यक जानकारी का संकलन कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने नागरिकों से इस काम में सक्रिय सहयोग देने की अपील की है। बीते दिनों राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ग्राम रथ अभियान चलाया गया। इस दौरान राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाई गई। साथ ही संध्या चौपाल लगाकर आम जन को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। ज्ञान भारतम मिशन के तहत इन दिनों जिले के मंदिरों, मठों और निजी संग्रहों में मौजूद प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, संरक्षण और डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मिशन के जिला नोडल अधिकारी ने बीते दिनों मिशन के लिए बनाई गई क्रियान्वयन समिति के साथ बैठक की। उन्होंने समिति के सदस्यों को विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संग्रहालयों और पुस्तकालयों में जाकर पांडुलिपियों के सर्वेक्षण कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करने का आह्वान किया। उन्होंने इस काम को प्राथमिकता देते हुए डोर टू डोर सर्वे करने को कहा।

0: जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र तथा नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से बहरोड में एमएसएमई प्रोत्साहन जागरूकता कार्यशाला रखी गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों को राज्य और केंद्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी प्रदान करना रहा। इससे पहले नीमराणा, घिलोट और शाहजहांपुर औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगों को भी ऐसी कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूक किया जा चुका है। इसके साथ ही कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किन्नो, 5.25% राखी ची। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखा देश में पौधा रोपण वितरण और जागरूकता कार्यक्रम राखी चिया। हरियाली बधावन और आबो हवा ने बचावन रो संदेश दियो चियो। प्रदेश में चौमासाओं पहली री हलचल शुरू हुई, कई जिला में आंधी बारिश रो दौर जारी। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी साइबर अपराध री शंका वाला रे खिलाफ जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में छापा मारिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किन्नो है। मौद्रिक नीति समिति री समीक्षा बैठक में इनने 5.25% रा लेवल माथे राखण रो फैसलो करी चियो। मीटिंग में स्थायी जमा सुविधा री रेट 5% और सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक रेट 5.5% रा लेवल माथे राखण रो फैसलो करी चियो। चालू माली साल में लगातार दूजी दफा ब्याज री खास दरा में कोई बदलाव नहीं करी चियो। आरबीआई रा गवर्नर संजय मल्होत्रा आ जानकारी दीनी। वे कहो कि बैंक चालू माली साल सारू सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी माय बढ़ोतरी री रेट पहली री 6.9% घटार 6.6% करण रो फैसलो किन्नो। आरबीआई अनिवासी भारतीया भारत रा प्रवासी नागरिका और दूजा पात्र विदेशी निवेशका सारू इक्विटी बाजार माय निवेश रा मौका ही बधाया है। सरकारी दूजा देशा रा संस्थागत निवेशका ने सरकारी शेयरा माथे भेवन वाला पूंजीगत फायदा माथे टैक्स माय छूट दीनी है। देश माय पॉलीमर आधारित नोट चलावन रा प्रस्ताव माथे विचार करियो जा रियो है। भारतीय रिजर्व बैंक रा गवर्नर संजय मल्होत्रा बतायो कि देश रा न्यारा न्यारा हलकाओं बैंका री शाखावां और एटीएम माय नोटा री कमी री शिकायता मिली ही। श्री मल्होत्रा बतायो कि बैंक कने जरूरी तादाद माय नकदी मौजूद है और इन री कमी तुरंत पूरी कर दी जावेला। राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव रा तहत राज्यों 3 सीटा माथे वेवन वाला चुनाव बाबत कांग्रेस रा उम्मीदवार नीरज डांगी आज पर्चो दाखिल किन्नो। वह विधानसभा भवन में चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा सामी नाम पानो भरियो। ये भगत राज्य रा पहली वाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा में विपक्ष रा नेता टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में कांग्रेस रा मुख्य सचेतक रफीक खान समेत कई आला नेता मौजूद हा। कांग्रेस नीरज डांगी री उम्मीदवारी ने पार्टी रा सामाजिक प्रतिनिधित्व और संसदीय अनुभव रा प्रति भरोसा री निशानी बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में बलिया रा जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल रे देश री 100वीं रामसर ठौर वेवन रा ऐलान माथे खुशी जताई है। माना संदेश में श्री मोदी कहो कि ओ जैव विविधता ने बचावण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखण सागे हरित भविष्य सारू मददगार है। सुरहा ताल में भांत भांत रा प्रवासी और वठेरा परिंदा रो रहवास है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ही इन उपलब्धि ने पारिस्थितिकी बचावण ओड़ी खास बतायो है। वे कहो कि पारिस्थितिकी संतुलन सारू वेटलैंड, ग्रासलैंड और वुडलैंड तीनों जरूरी है।
2: मैं हमेशा हमारे वन विभाग में भी जब चर्चा करते हैं और लोगों को भी पर्यावरण की दृष्टि से कहना चाहता हूं।

0: तीनों महत्वपूर्ण होती हैं। वेटलैंड भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारी आसपास की झीलें हमारी जमीन में नमी बना के रखती है, पक्षियों को आसरा देती है, और अगर एक बड़े शहर में एक अच्छी झील हो तो लोगों को सुकून देती है, घूमने की जगह देती है। झीलें आप देखो कितने लोग घूमने आते हैं, तो हमें इसके जो कैचमेंट एरियाज हैं सभी लोगों को उसको बचाना चाहिए। जितना वेटलैंड महत्वपूर्ण होता है उतना ही ग्रासलैंड महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे वेटलैंड भी है, ग्रासलैंड भी है और वुडलैंड ट्री भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है और इसके संरक्षण के लिए हम लोग काम कर।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनताओं आबो हवारा मुजब जीवन रो तरीको अपनावन और धरती न बचावन रियरज कीनी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके जयपुर माए राखी जाए कार्यक्रम माए श्री शर्मा जनताओं पानी बिजली री बचत करण सागे राज्य ने हरित और साफ सुथरो बनावण माए योगदान देवण री अपील कीनी। मुख्यमंत्री कहो के एक पेड़ माँ के नाम अभियान रा तहत ई साल प्रदेश माए 10 करोड़ पौधा रोपणु तय करी चियो है। विश्व

0: दिवस रे मौके जयपुर में राखी जाए एक कार्यक्रम में श्री शर्मा जनताओं पानी बिजली री बचत करण सागे राज्य ने हरित और साफ सुथरो बनावण में योगदान देवण री अपील कीनी। मुख्यमंत्री कहो के एक पेड़ माँ के नाम अभियान रा तहत ई साल प्रदेश में 10 करोड़ पौधा रोपण तय करीचियो है। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखर राज्य में हरियाली बधावण और कुदरत ने बचावण रो संदेश देता थका कार्यक्रम राखी जिया। अलवर में सशस्त्र सीमा बल री ओर पौधा रोपी जिया और जनता ने पौधा बांटी जिया। हनुमानगढ़, डीग, सिरोही, नागौर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सवाई माधोपुर समेत कई ठोड़ा विद्यार्थी और जनता पौधा रोपिया और पर्यावरण ने बचावण री सोगन लीनी। भरतपुर माए पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली जी। झुंझुनू माए पर्यावरण बचावण जुड़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम और होड़ा राखी जी। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप माना एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। देश में चौमासारी बिरखा शुरू होवण रा हालात अनुकूल है। केरलम में चौमासारी बिरखा 3 दिन मोड़ी शुरू हुई। राज्य में चौमासाओं पहले रे हलचल तेज वे की है। काल सिंजा हुई कई जिला में आंधी बारिश रो दौर चाल रियो है। मौसम विभाग रे मुजब आवता महीना रा पहला सप्ताह में राज्य में चौमासारी बिरखा शुरू होवण रा आसार है। ई बीच 7 जून ताई प्रदेश रा कई हलका में आंधी बारिश री संभावना जताई ची है। आज राज्य रा 14 जिला में ऑरेंज और 8 जिला में येलो अलर्ट जारी करी चियो है। मौसम में आया बदलाव तेज गर्मियों थोड़ी साता मिली है। हालांकि तेज अंधड़ रे कारण कठे कठे हादसा री खबर है। भरतपुर और भीलवाड़ा में अंधड़ 2 जना री मौत वे की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी री ओर आज राजस्थान और पंजाब में साइबर अपराधा में शामिल फेवन री शंका वाला रे खिलाफ 7 ठोड़ा छापा मारी जिया। ईडी री टीमा जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ में एक सागे करी जी कार्रवाई रे दौरान मोटी तादाद में मोबाइल फोन में लगन वाली सिम और साइबर अपराध में काम आवण री शंका वाला इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान पकड़िया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत करीब 1000 बुजुर्गों ने रेल रे जरिए सोमनाथ री यात्रा कराई जा रही है। इन सारू जयपुर कने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रेलगाड़ी ने हरी झंडी बतार रवाना कीनी। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका देवस्थान मंत्री जोरा राम कुमावत कहो के 6 दिन री ई यात्रा में यात्रुआ सारू सगला सुविधा मुफ्त मुहैया कराया जा रहा है।
1: राजस्थान सरकार ने 1000 यात्रियों को सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए, उनकी भव्यता दिखाने के लिए, उनका इतिहास दिखाने के लिए आज जयपुर से 1000 यात्री ये सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ में द्वारकाधीश के भी दर्शन होंगे, भेट द्वारका के भी दर्शन होंगे और नागेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन होंगे। तो इस तरह से 7 दिन का टूर यात्रियों का रहेगा। उसी की सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग ने की है।
0: अमृत भारत स्टेशन योजना रा तहत बीकानेर कने लालगढ़ रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावण रो करीब 85% काम पूरो वेक्यो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन आ जानकारी दीनी। वे बतायो के लगभग 20 करोड़ रुपया रा खर्चो वठे नुआ सुविधा विकसित करी चिया है। श्री सुदर्शन बतायो के इन स्टेशन रे हाईटेक मेवण सैर सपाटा वठेरा हाथरी कारीगरी रा काम और कारोबारी हलचल ने बढ़ावो मिलन सागे नौकरी धंधा रा मौका ही बधेला।
2: सारे एमिनिटीज हैं पैसेंजर के, उनको मॉडर्नाइज किया गया है, चाहे वो सर्कुलेटिंग एरिया हो, सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट हो, चाहे रिटायरिंग रूम्स हो, चाहे वेटिंग हॉल्स हो, और चाहे पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, सभी पैसेंजर से रिलेटेड एमिनिटीज को इसमें नया कर दिया गया है। साथ में जो FOB है उसका भी कार्य लगभग 85% पूरा कर लिया गया है। उसके साथ में एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके तहत लगभग 50 किलोवाट सोलर एनर्जी को

0: स्टेशन पे इंटीग्रेट किया गया है जो कि स्टेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
1: पश्चिम मध्य रेलवे रो कोटा मंडल रेलवे माय भर्ती रा सोशल मीडिया माथा चाल रिया फर्जी विज्ञापनाओं सावचेत रहन री राय दीनी है। मंडल रा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन कहो कर रेलवे माय सगली भर्तियां ते नियमा रा तेत साफ कोई सागे करी जावे है और गैर सरकारी जरिया चयन री कोई प्रक्रिया नहीं वह है। प्रदेश में इबोला वायरस री शंका वाला एक मरीज रीठा पड़िया पछे स्वास्थ्य विभाग सावचेत वेक्यो है। अफ्रीकी देश युगांडा राजस्थान आई एक विदेशी महिला में ई बीमारी मिलता जुलता लक्षण रीठा पड़िया पछे वाना जयपुर रा RUHS अस्पताल रा विशेष आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराईची है। RUHS अस्पताल रा अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता बतायो कि फिलहाल ये महिला में इबोला संक्रमण रिपुष्टि नहीं हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आज टोंक में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रा AEN और कंप्यूटर ऑपरेटर ने 20,000 रुपये की घूस लेता थका पकड़ लीना। ACB रा एडिशनल SP ऋषिकेश मीणा बतायो कि पकड़ी जिया लोगों माथे शिकायत करने वाला रा घर रो बिजली रो मीटर पाछो देवण और विजिलेंस जांच रपट नी भरण री एवज माय आ रकम मांगण रो आरोप है। ACB कोटा विकास प्राधिकरण माय संविदा रा आधार लाग्योड़ा एक कर्मचारी ने 15,000 रुपये री घूस लेता थका पकड़ लीनो। वा माथे शिकायत करने वाला रा बाप दादा रा घर माय भागीदार लोगों ने लिस्ट माय नाम मांडण सारू घूस मांगण रो आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 28 जून ने विचार बतावेला। आ इन कार्यक्रम री 135वीं कड़ी भैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथ 26 जून ताई राय दे सको हो। आखिर माय खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। RBI रेपो रेट माय कोई बदलाव नहीं कीनो 5.25% राखी ची। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आखा देश माय पौधारोपण वितरण जागरूकता कार्यक्रम राखी चिया। प्रदेश में चौमासाओं पहली रही हलचल शुरू हुई। कई जिला में आंधी बारिश रो दौर जारी। प्रवर्तन निदेशालय साइबर अपराध री शंका वाला रे खिलाफ जोधपुर नागौर और किशनगढ़ में छापा मारिया। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल में गीता रो गजरो। पेशकश है रमेश चमरिया की।

कै खातिली निजरां सूं भाड़ूं, कै खातिली निजरां सूं भाड़ूं, लाखां विश्यूं थाने टालूं। कै खातिली निजरां सूं भाड़ूं, लाखां विश्यूं थाने टालूं। अर घोर निराशा रह अंधरे एक आसरी किरण उछाड़ूं। अर पीढ़ियां राह में बेर मिटाउना, कै पीढ़ियां राह में बेर मिटाउना, म्हारा आंगन जाजम ढाड़ूं। अर था पर ओप आमतो रेवे, तिल तिल करने खुद ने गाड़ूं। अर थाने मनड़े री केवण ने टूटिया फूटिया शब्द संभाड़ूं। राम राम सा कार्यक्रम गीतारो गजरो सुनिया सगड़ा परिवार ने आज भाई रामेश्वर का। और आज थारे लिए कार्यक्रम ले रहे हूँ गीतारो गजरो, और इंगमा थारा फरमाइशी जका लोकगीत है, लोक भजन है, वे आज आप सुन सियाँ। और थारा जका कागज पुगीड़ा है बिंगा ऊपर भी, और इंगा अलावा थारा जका मेल है बे भी है, और व्हाट्सअप पर जी थारा संदेश है बे भी आज आप बांध सियाँ। और बिंगमा लिखी जी की फरमाइश है बिंग साहब से आज आप कार्यक्रम जो है वो जचा सियाँ सा। आपने ती फरमाइशगत तौर पर भजनगी आ मेल पुगती हुई है गांव उमेवाड़ा से, नौरंग सुथार आंगा बेटा है, विष्णु सुथार, नीरज सुथार, योगिता सुथार, जया सुथार, सुमन सुथार, और एकता कलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोथ, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोथ। आ फरमाइशी मेल पुगी आपने।

जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर, उत्तर प्रदेश। हूँ मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। जको थना भी भजन सुना चाहेंगी ही। फिर माई सापना थी पुग्गी है हरियाणा से, अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिशबोध, सीताराम कांगड़ा, साहिल कांगड़ा। और जुट मिल रायगढ़ छत्तीसगढ़ चूँ रेशमा बेलदार, वली बेलदार, सोनम बेलदार, उलाह बेलदार, अशमा बेलदार, सरफुद्दीन बेलदार, डब्लू बेलदार और फातिमा बेलदार। आ फरमाइश पुग्गी है अपना तीन सरगुजा मेन पार्ट चूँ वसीम थापा, सोनम थापा, अदिबा थापा, वली थापा, करम थापा, फातिमा थापा, उलाह थापा, अशमा थापा और डब्लू थापा। बाटापारा दतरंगी छूँ अपना तीन अमरजीत सोनम कौर, परमजीत अशमा कौर, धर्मजीत फातिमा कौर और डब्लू वली जमादार भी अपने ती फरमाइश मांडी है। और आ फरमाइश पुगी है अपने ती इंदिरा बिहार दिल्ली से, याकूब असमा फकीर, यूसुफ असमा फकीर, इमरान असमा फकीर, इरफान असमा फकीर, सरफुद्दीन असमा फकीर। चांदनी चौक दिल्ली से डब्लू उल्लाह डोम, कलीम असमा डोम, सरफुद्दीन असमा डोम, वली असमा डोम, वली उल्लाह डोम, सोनम आदिबा डोम और रेशमा नाज डोम, फातिमा नाज डोम। आ फरमाइश पुगी है कनेरा मोहला पटियाला से, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और निहारिका और वंश बत्ता। ई भजन की ही फरमाइश बिहार स्टेट असलम जमादार आपने ती मांडी है, अक्रम जमादार, बेबी अंसारी जमादार, डब्लू जमादार, वली उल्लाह जमादार, अल्ताफ जमादार। छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, आमना नसरीन, असमा परी, राबिया मंसा, अशु अहमद फूल वाले और सगड़ो परिवार। गांव बनवाला हनुमंता फाजिलका पंजाब से, विनोद मायल, सीमाल, लक्षिता, यशिका और अंगा माता जी है विद्या देवी और सगड़ो मायल परिवार। सगड़ा ने एक भजन सुना दिया वृंदावन को, लियो सुनो सा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बिल्कुल साथ सुनो थे वो भजन वृंदावन को और देखो थे आपने दुर्गा भाई भी आपने कार्यक्रम में शामिल हो गया आज। राम राम दुर्गा भाई, राम राम,
3: राम राम रामेश्वर भाई, राम राम सारा सुननी नहीं मोकली मोकली राम राम।
2: बिल्कुल थारे कहानी से पूर्ति जी की है वह रामा श्यामा होगी और आज हूँ गीतारो गजरो लेर बैठे हूँ तो आज क्यों ना आपा रल मिल के कार्यक्रम दे दिया ना।
3: अभी मैं जी आन लाग रहा हूं तो सुनो सुनो भजन सुनने लाग रहा था। मैं सोचो कि मैं भी आज प्रोग्राम में जाऊं।
2: नहीं नहीं आज अपने कार्यक्रम में भजन।
3: हां जका अपना भाई बंधु है नी जका अपने WhatsApp जका संदेश भेजे।
2: हां हां हां
3: बे पढ़ू के फिर
2: बिल्कुल पढ़ो कि मने सारो लाग जे।
3: जी जी जी जरूर जरूर जरूर सा। तो पहलो संदेश पूग तो करयो है सिद्धार्थ नगर दर्रापुर बांबली से।
2: अच्छा
3: गजानन येले नवदीप येले विश्वदीप अशोक येले और इंग सागे से गई खोखराली श्री गंगानगर से विनोद बारा सा विशाल बारा सा विकास रोशनी और शगुन बारा सा को और संदेशों भी पूग गयो है और नाईवाड़ा जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्डा अलका मिड्डा।
2: अच्छा अच्छा
3: और वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा को भी हो संदेशों पूग तो यार गांव गमंडिया से जगदीश ढोकिया प्रमिला ढोकिया ज्योति विश्वम ढोकिया सरिता सचिन अमना तमना साइना विष्णु ढोकिया रोहिती इवा धारणिया भी केवे राम राम। भजन सुनना चाहिए एक।
2: अच्छा भजन तो आप सुना दियो।
3: हाँ, हाँ, हाँ,
2: भजन सुना दियो।
3: तो अगली फरमाइश आपने ते पूर्ति करी है फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसला जिला चूरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा प्राची सोनगरा सोमल और कार्तिक सोनगरा रंग सागे सचिन चौहान रामसराला भी प्रोग्राम सुन लाग रहे।
2: अच्छा वाह वाह।
3: आगलो आपने संदेश पूग तो करो है सरगांव छत्तीसगढ़ से। देखो कितनी दूर
2: दूर भेजे दूर भेजे।
3: तो दीपेश वर्मा और पूनम वर्मा अंग सागे ज्योति और शिवाम वर्मा भी प्रोग्राम अपने सुनने लाग रहे हैं। फरमाइश पूर्ति करी है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी।
2: अच्छा अच्छा और किसी फरमाइश आई अपना
3: साधुल शेर से अपने पूर्ति करी फरमाइश राम कुमार रिवार्ड और चंद्रकला रिवार्ड।
2: तो आना सगला ना आप क्यों ना एक सुना दें गीत सुना दें ना उडियो
3: जी आण दियो।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: उडियो री उडियो डो डो डो जाए
3: वाह
2: मारो सुवटियो
3: सुवटियो
2: जबरो गीत सुनायो
3: रमेश गीत तो बड़ो फूट रो है सुनो है और एक संदेशात्मक वो सुवटियो जको है हां हां हां ना बिंगली है और बढ़िया वाकई में शानदार गीत है अच्छा गीत है
2: तो अगले गीत की फरमाइश खातर थर के मैं देखना लू कागज दिया दिखना
3: हां अपना भाई लोगों का बड़ा नेस नेस बिजड़ा जका फरमाइशी कागज है जी अली का डब वाली शु वसंत सिंह चंद राजकुमार सुनीता कुलदीप गांधी और आ फरमाइश के तौर पर आपने कागज पुग्यो है मंडी गोलवाल से बिरजलाल चौहान और नीरज कुमार चौहान राजपुरा से आपने ती कागज मांडर भेजे है हरदीप सिंह जगवीर सिंह ज्वाला सिंह डॉक्टर धर्मवीर झोर जगराज सिंह अंग सागर है साधुल शेर से।

0: ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान भी आपने ती फरमाइश मांडी है दुर्गा भाई, और आपने ती कागज फरमाइश के तौर पर लिखी है चहल कला पंजाब शो।
1: वाह जी वाह,
0: अमरजीत सिंह बंग अंबा चहल परमजीत परमिंदर राजा आ रल मिल गई लिखे है, और अंग सागे है कर्ण नाहर, अमन नाहर और रूपलाल नाहर।
1: वाह जी वाह।
0: आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा भी अपना ती फरमाइश मांडी है। गांव खेरका सिरसा स्यू इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, सरगुन, हनी लोट और मसीता डब वाली स्यू, दर्शन लोट और मूर्ति रानी भी अपने ती फरमाइश
1: लोट सब बहुत पुराना श्रोता है अपना,
0: मैं को इतना ज्यादा पुराना है कि आपन तो आंगा नाम ही याद हो गया दुर्गा भाई।
1: सही है जी, सही है
0: ना,
1: 200 लाख गयो।
0: हाँ बिल्कुल, और इन त्रिया ही अपना पुराना मुड पुराना श्रोता सुधी श्रोता गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर से सोलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित और हेमंत और अंजू बेनीवाल भी है ना,
1: आपको भी प्रोग्राम में स्वागत करा सागन,
0: स्वागत बढ़िया
1: बिल्कुल भी सुनासे।
0: हाँ सुनासे सुनासे, और दादो जी है अपना नियमित श्रोता है। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा साइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया अनमोल, धर्मपाल विवान और रमेश मिगलानी भी आपने ती फरमाइश मान दी।
1: हाँ जी,
0: और आ फरमाइश पुगी है मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गिरी इंदौरा, विकास इंदौरा, प्रियंका इंदौरा, रमन इंदौरा, रितु इंदौरा, भविष्य खन्ना, मिशेल खन्ना और किंसुक खन्ना और बेबी दीपांशी इंदौरा। अब इन अलावा थारकन फरमाइशी तौर पर संदेश जका है दुर्गा भाई किसे किसे पुगीड़ा है?
1: आप पुगता हुआ संदेश आरायण सिंह, डॉक्टर बनवारीलाल जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, कल्पना, विक्रम जयपाल, इंगे सागई, नलेवशर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से हूँ, पी एस नामांकर, निर्मला, विशाल, सपना, नारायण इंगले, हैर बागपत, उत्तर प्रदेश से संदेश पुगतो हुए संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया को, पटेल नगर मलोट पंजाब से हूँ, रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, कर्ण वर्मा और बांडीवाला फाजिलका पंजाब से क्रियांश वर्मा, योगेश बगड़िया, ओम बगड़िया, बेबी गरिमा बगड़िया, रजत और मनीष चौधरी रंग सग सा गई ओ संदेश पूग तो या रमेश्वर भाई, हिरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रेणवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल, अगलो संदेश पूग तो या गांव जोगी आला गंगानगर से,
0: अच्छा
1: प्रेम सारण मोनिका और मनीष सारण को, और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा, और दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, नाम देखो कितना अजरो नाम लिखे नहीं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: टाबरियां का नाम लग गया,
0: टाबरियां का नानड़ियां का नाम है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, और गंज डुंडवारा से समसुल, कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अन्नू खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी, और दिग्दर्शन और कविता गोड़ को अपन संदेश से पूगते हुए मेरठ कैंट से,
0: अच्छा
1: ई बात ही गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी, जगदीश जोहरी, एर मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिकर, माही मलिक,
0: बिल्कुल आना सगला ना पा एक रुण जुनाट कर तो गीत सुना दे है ना,
1: सुनाओ सा सुनाओ
0: लियो सुनो सा।

0: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94-144-67-186।
1: बिल्कुल दुर्गा भाई, सुनायो आपा गीत।
2: हाँ जी जरूर सुनायो, बहुत फूट रोगी तो।
1: बिल्कुल, आपने दी फरमाइश पुगी है चक 3RWM राउसर से हूँ, हनुमानगढ़ से हूँ। अपना फरमाइश मांडी है मोहन लाल मोयल, गोपीराम मोयल, राकेश कुमार मोयल, मनीराम, अनुज, मनीष, अलका, मंजू, कनिष्का, अर्चना, रिया, दीपिका, सोनाक्षी, हर्ष, चिराग और मुकुंद और राधिका अरलमिल के लिखी है। और आ फरमाइश आपने दी पुगी है ओम प्रकाश सरवा, बिमला देवी, यशु, विशाल, राजेंद्र कुमार, सुमन देवी, धर्म सिंह वाला, श्री गंगानगर से हूँ। और अगली फरमाइश आपने तई मांडी है शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ से हूँ, मुन्ना भाई सोनकार, पिंकी सोनकार, आर्यन कृष्णा और पीहू सोनकार, और अनारकली बाजार जगराव से हूँ, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा और भाई सुचा सिंह पाठक भी आपने दी फरमाइश मांड दी। और आप फरमाइश पुग्गी है अमरपुरा जालूखाड़ से हूँ, जगदीश प्रजापति, बिमला प्रजापति, मोनू प्रजापति, राजेंद्र प्रजापति, और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हूँ, टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, केथल से हूँ, डॉक्टर अमनदीप, और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, ढाणी लाल खां से जावेद खान, अरमान खान, सीमा बानो, विनोद खान, मुख राम और आरिफ खान, ईयान खान, अरशद खान और अरमान खान भी आपने दी फरमाइश मान दी। और आप फरमाइश पुग्गी है आपने अगली गांव फ्रांसिस हूँ, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, मुकलावा बॉर्डर से हूँ, आपने दी फरमाइश लिखकर भेजी है मदन ब्रोड, मंजू वाला, प्रीति ब्रोड, दिव्या ब्रोड, हितेश ब्रोड, कामना ब्रोड, लुभानी ब्रोड, आरती ब्रोड, अजय पेंटर, मुकेश पेंटर और अंग सागर है राजू पेंटर, अंगा माऊ बापू है हनुमान ब्रोड और इमृति देवी। अब थारकन संदेशा के तौर पर कितनी फरमाइशें आई है बेबी थे बांची दो।
2: हाँ जी, वो संदेश पूग तो हो अपने तई अलीका तहसील डबवाली से।
1: अच्छा,
2: रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत, रानी सोनू और रजनी, अरे बठिंडा रोड डबवाली से हुई राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग। आगलो संदेश पूग तो है गांधी नगर गुजरात से।
1: अच्छा,
2: जी के परमारगो।
1: अच्छा,
2: और आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरभ शर्मा, साइना और निमान शर्मा गो। ई भांति जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर, कासम कलोनी सनावत सूँ, यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रिश खत्री, नूर मीना, इरफान मीना, कासिफ मीना को संदेशों भी पूगते है। और ई भांति दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ सूँ, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, तहसील बादरा अनूप

0: गजानन सारस्वत, ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन, साहिल, राघव, मुरारीलाल शर्मा, ममता, मीतू, किन्नू, अक्षय, महावीर लोहरा, फूसाराम मील, एर और संदेश पूग तो करे रामपुरा मटोरिया से मुरारीलाल, अमन, रमन, तनिष, रवि, सीताराम, मदनलाल, पंकज कुमार, हर्ष, मनीष, राजेश कुमार, और ई भांति चंडीगढ़ से सतीश अनेजर, विमला अनेजा को भी संदेश पूग तो हो
1: बिल्कुल आपने जिकी फरमाई साहब मेल पर भी आईडी है दुर्गा भाई कनवाणी, रावसर से कृष्ण श्याग भी आपनों कार्यक्रम जब सुन ला रहे हैं, और इनके अलावा हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान भी आपने दी फरमाइश मान दी, और आप फरमाइश आपने ती फिर पूर्ति कर दी अगली दोबारा जिकी फरमाइश मान दी ऐसा है ना, तो भाई लोगों से आई कैसे कह फरमाइश जी के भाई एक ही मांडो बहर कला टिब्बी से अपने ती बहर वाला कला टिब्बी से राजेंद्र मोयल, जमुना मोयल, जयपाल मोयल, आरती, पूजा, कुलदीप और सगड़ो परिवार।
0: हाँ जी,
1: और आ फरमाइश पुगी है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा गोस्वामी, और अगली फरमाइश किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी भी आपने थी फरमाइश मान दी दुर्गा भाई। अगली फरमाइश राइसनगर से सोनलाल जांगिड़, मंजू जांगिड़, शिवप्रकाश, सुनील जांगिड़, धनराज भंबू, साहब राम स्वामी आ भी आपने रली मिली फरमाइश जिकी है वह मान दी सा।
0: ठीक है
1: और
0: साहब,
1: अगली फरमाइश आपने ती पुगी है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सावनी, पिंगवाड़ा चौक, गुरैया, जलंधर से सगला ना पा एक गीत सुना दें चिटकली, लियो सुनो सा
0: सुनाओ सा सुनाओ।

0: रिटर्न गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बिल्कुल दुर्गा भाई, आपा एक गीत सुनायो चिड़कली और आपने तो और फरमाइशन की है भी किसी किसी पुगी है।
3: हां रामेश्वर भाई, पहले थे सूवटिया को सुनायो, फिर चिड़कली को सुनायो, फिर पपिया को भी गीत सुनायो। बहुत ही बढ़िया,
2: चिड़िया घर खोल रखी है।
3: बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गीत लगाना।
2: एक जगह तो वृंदावन को रास भी रचा दियो।
3: हां जी, है
2: ना।
3: हां जबरमस्त गीत सुनाने लग रहे थे। अरे अगलो जो को संदेश पुगतो है अपने कन पवन कटारिया शालू कटारिया को, अरे वो लिखे अपन श्री करनपुर से।
2: अच्छा।
3: अरे मंडी डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार सुनीता गांधी, कुलदीप गांधी, एर बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम, अर आशीष विश्वकर्मा, कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, अर दुबीहा निवेदा गाजीपुर से, प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, अर इनी बात डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से संदेश पुगत हो अपने ती देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव, एर नेड़े बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से, वो बुर्ज हनुमानगढ़ अपने फाजिलका जिला में पड़े भाई।
2: बिल्कुल, चक्रांग में मैं भी हूँ, कई बार चेता चूक हो गयो दुर्गा भाई, पंजाब गमा भी हनुमानगढ़ है।
3: वाह जी वाह। हाँ। तो आगो भी बहुत बहुत स्वागत करा। वो लिखियो अपने संदेश रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और मदन लाल वर्मा को, एर आगलो संदेश पुगतो हो अपने ते नाम लिखियो है बिल्लू सूद, सुनीता सूद, आशीष सूद, चांदनी, विश्वजीत मंडी, केसरी सिंहपुर से, नरेंद्र भाटी, वीणा भाटी, गणेश चौक, रातानाड़ा, जोधपुर से, और वो लिखे अपन चक 15 पीएस से, सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत कौर जोसन, गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, आदर्शपाल जोसन वैंकूवर कनाडा से, रोबन सिंह जोसन और भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान और पूजा परिहार, नागपुर महाराष्ट्र से, कमल साहनी, पिंकी साहनी, अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, रामगढ़ कैंट झारखंड से, निप्पी साहनी और सुनीता साहनी, कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब हसन, और नौर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु, पवन सुथार, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री, महेंद्र सुथार और काड़ू, एर इणिज भांत अगलो संदेश पुगतो है अपने तई पद्मा टॉकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह को, एर डॉक्टर आम संदेश पुगतो है आदर्श नगर बठिंडा से, अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, विक्रमजीत, अनमोल सिंह और पवनीत ग्रोवर को, एर आगलो संदेश पुगतो करियो अपने तई लिखियो है झुंझुनू से, अमीर कला झुंझुनू से, भंवर सिंह मीणा और तन्मय मीणा, और सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका, एर ओ संदेश पुगतो होयो अपने तई चक 7 DBN बादू वाली डाणी से, टेकचंद चरण, संतोष देवी, सत्यप्रिय चरण, जय सिंह चरण, बिटिया आंगी है योगेश्री, रणजीत सुथार, गुरदेव सिंह बगानिया, अरनेक सिंह बगानिया और कृष्णलाल राड़, 63 LNP से भी प्रोग्राम सुनने लाग रहे।
2: बिल्कुल स्वागत।

0: बिल्कुल दुर्गा भाई, आपने ये गीत की ही फरमाइश आपने थी पुगी है लुहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र चंडालिया, बरखा योगेंद्र चंडालिया, नरेंद्र कुमार चंडालिया, और ये गीत की ही फरमाइश आपने ती हाथों हाथ पुगती हुई है। 82 RB राइसनगर से और चेतनराम सारसवा, नौरंगराम सारसवा, प्रदीप सारसवा, ज्योति सारसवा, ममता सारसवा, नानू देवी सारसवा, शिवप्रकाश खाती, सोन जांगिड़, धनराज भंबू, सुनील डाल, प्रवीण श्रावगी, नरसी सिमर, हाँ रणमिल की फरमाइश मंडी ऐसा, और आप फरमाइश पुगी है 19 GG R शेरका तहसील टिब्बी सू, सोनू चंद्रकला वर्मा, पप्पू राम, रानी देवी, दया विनीता, मनोहर लाल वर्मा, अरांगा दादा और दादी है मिलाल और शांति देवी
1: जी,
0: और आप फरमाइश पुगी है रायावाड़ी थर्मल सुटगढ़ सू, मुकेश कुमार सिकरिया, बंसीलाल सिकरिया, मुकुंद सिकरिया और राधिका सिकरिया और मंजू, तो सगला ना पाऊँ सुनावा गीत।

0: बिल्कुल साहब, आप गीत सुनाए और थारते फरमाइश जी की है बप्पू गिड़िया बंचो दुर्गा भाई।
1: हाँ रमेश सर भाई, ओ व्हाट्सअप संदेश आपने दी पुग तो है पलारी छत्तीसगढ़ से दिनेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग तनुजा और ईशांत देवांगन और चक 14 PSB से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विर्क और गांव कलाना तहसील बादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश युद्धव कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, किरसन मायल, कीड़ूराम जोया, हनुमान सारण और सुनील पाईवाल और मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी प्रवीण, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हीना कौसर, आपने वो व्हाट्सएप संदेश भेजे शेरकोट जिला बिजनौर से।
0: अच्छा।
1: और इनिज भांत मौनत भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा और हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार को भी संदेश पूग तो हो गयो। और गरोंडा जिला करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजन, कांता रानी, गुंजन साहिल, वाणी जयजन और ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से।
0: अच्छा।
1: पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन।

0: घनश्याम भार्गव बाबू गोरी हसन सिक्का और वो आगलो अपने संदेशो पूगत हुए सा लिखे हुए एम एल बी रोड ग्वालियर सू सुरेश खुराना पप्पी किरण खुराना लव्या आरव मेघा साक्षी आशीष अनुज विशु छोटू और अंगो पूरो परिवार और आगलो संदेशो पूगत हुए गांधीनगर गुजरात सू सुरेश राठौड़ मंजुला राठौड़ विशाल निशा गांव नथाना पंजाब सू हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता गीता और गोविंदपुरा सीकर राजस्थान सू दतार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत और डाबली रंगाला जालोर सू धनवंती आसू साजटा खुशबू देहड़ू खुशवीर तेजवर्धन सिंह सिद्धार्थ प्रियदर्शी रमेश रोपड़िया संगीता दिनेश ममता जगदीश विनोद ममता अशोक कुमार लीला ज्योति प्रतिभा रतन तरड़ हेमेंद्र तरड़ और पेमाराम रंगसागही शेरा राम कोहला राम और वीरेंद्र चौधरी और बुलढाणा महाराष्ट्र सू नारायण हागे कमल दिव्या हागे जय हागे और बाबा कुटीर रायगढ़ सू शिव कुमार चौहान संक्रांति चौहान रितेश कुमार और उत्कर्ष चौहान तुलसी मस्कीन वीणा मस्कीन आशीष राजा चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ सू लिखण लाग रहे और शाहदरा दिल्ली सू अपन मस्कीन साहब लिखियो और चंडीगढ़ सू है राहुल खुराना रचिता खुराना केशु और रियान खुराना और खारिया जिला सिरसा हरियाणा सू प्रताप जनागले इंदिरा मुकेश दिनेश आशु बलदेव कटारिया और बेहरवाला खुर्द सिरसा सू बलवंत जाखड़ ममता जाखड़ प्रिया नैना जाखड़ हेमानी जाखड़ शिवम जाखड़ हनुमानगढ़ टाउन सू सुल्तान सिंह तरड़ कृष्ण मुकेश रामचंद्र कपिल देव कांता चौधरी और राम सिंहपुर सू अशोक बब्बर पवन राजेश अजय राहुल और मन्नू बब्बर और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ सू रोशनलाल देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता और डिम्पल और ये भांति ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साबिर राही महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार सू ये सब आपने ती व्हाट्सएप से दे सब पूछता हुआ
1: बिल्कुल आगे फरमाइश गज का गीत हा बे लगभग आप पूरा कर दिया और हाँ। अगले कार्यक्रम में भी आगे फरमाइश कागजांगी और मेलगी और संदेशा की उड़ीक रहेगी पर आज को कार्यक्रम दुर्गा भाई आपने कन ये तो यार टेम वक्त जो है वो थोड़ो रही है क्यों ना भाई लोगों लेवा आ गया और चला
0: लेवा था आ गया
1: राम राम सा राम राम, राम, राम, राम, राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल में गीता रुगजरो। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 7:45 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुने, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है मस्ताना।

आ यशोदा अब सुने। आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज दी है लता मंगेशकर ने, और फिल्म का नाम है दर्पण।

आइए श्रोताओ कार्यक्रम फिल्म संगीत के आखिर में सुने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है आया सावन झूम के।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत।

श्रोताओं, आज की फिल्म है राम तेरी गंगा वैली। 1985 में बनी हिंदी नाट्य फिल्म राम तेरी गंगा वैली। इस फिल्म के निर्देशक राज कपूर थे और इस फिल्म के लेखक के सिंह, वीपी साठे, ज्योति स्वरूप और राज कपूर थे। इस फिल्म के निर्माता रणधीर कपूर, इस फिल्म के मुख्य कलाकार राजीव कपूर, मंदाकिनी, दिव्य राणा, सईद जाफरी, कुलभूषण खरबंदा और राम तेरी गंगा मैली फिल्म राज कपूर की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के खूबसूरत गीतों को हसरत जयपुरी, रविंद्र जैन और आमिर कजलबाश ने लिखा। आइए सुनिए इस फिल्म का ये खूबसूरत संगीत।

श्रोतो, आराम तेरी गंगा मैली फिल्म में खूबसूरत और मनमोहक संगीत देने के लिए रविंद्र जैन को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार से नवाजा गया और राज कपूर को इसी फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुने रविंद्र जैन का संगीतबद्ध किया ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। आज की फिल्म है राम तेरी गंगा मैली।

मैं ही मैं हूं के लिए सुरेश वाडेकर को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार के लिए नामित किया गया। आइए इन्हीं की आवाज में ये गीत सुनें।

श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। आज की फिल्म है राम तेरी गंगा मैली। आइए सुने अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। आज की फिल्म थी आराम तेरी गंगा वैली। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 8:30 होने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रिले किया जाएगा।

नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर से मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। पहले मुख्य समाचार। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत का दबदबा, आज पहले दिन 5 स्वर्ण पदक जीते। भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम पाकिस्तान को हराकर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हारी। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच कल से न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में आर प्रज्ञानंदा ने हमवतन डी गुकेश को हराया, खिताब की दौड़ में शामिल। और सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में कल मडगांव में भारतीय टीम का मुकाबला बांग्लादेश से होगा।

तो शुरुआत योगासन के साथ। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के आज पहले दिन भारत का दबदबा रहा। भारत के योगासन खिलाड़ियों ने दौ पर लगे 6 में से 5 स्वर्ण पदक जीते। योगासन का सीनियर पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक भारत के अभय बर्मन ने जीता। रजत इंडोनेशिया के अर्कन रियांतो ने अपने नाम किया, जबकि कांस्य पदक उज्बेकिस्तान के एलन के नाम रहा। सीनियर महिला वर्ग में भारत की रितु मंडल पहले स्थान पर रही। कजाकिस्तान की एजहन कोआन याशोबायवा दूसरे स्थान पर रही, जबकि तीसरा स्थान हांगकांग की लैम एनगा ने जीता। सीनियर ए पुरुष वर्ग में सिंगापुर के नथानियल तान लियांग एन पहले स्थान पर रहे। रजत पदक तंजानिया के कारिमुस्वाफी को मिला। भारत के सुमीर तीसरे स्थान पर रहे। सीनियर ए महिला वर्ग में भारत की रितु ठाकुर को स्वर्ण, अर्जेंटीना की नबीला सोल बराजा को रजत, जबकि कीनिया की अबूओर सोलिना को कांस्य पदक मिला। सीनियर बी पुरुष वर्ग में भारत के रोशन थापा ने स्वर्ण पदक जीता। बांग्लादेश के मोहम्मद मामून खान बाबू को रजत और किर्गिस्तान के डेनियल रायकोव को कांस्य पदक मिला। ट्विस्टिंग बॉडी के सीनियर बी व्यक्तिगत वर्ग में भारत की ज्योति देवरकर को स्वर्ण पदक, ओमान की ओलिमुथु नवामानी को रजत और जापान की सारो क्यूई को कांस्य पदक मिला। तो ये थी बात योगासन की, और अब चलते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम

0: एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। जापान के काकामिगहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराया। खिताब के लिए कल भारत का मुकाबला जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: सेमीफाइनल में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पर जीत के बाद निश्चित रूप से भारतीय टीम का हौसला आसमान की बुलंदियों पर होगा। अब उसका लक्ष्य चैंपियन बनना है। अंतिम चार के मैच में भारत ने अपने प्रदर्शन से यह दिखा दिया है कि बड़े मुकाबलों में भी यह टीम किसी भी चुनौती का सामना करने का मादा रखती है। एक समय भारतीय टीम 2-3 गोल से पिछड़ रही थी, लेकिन टीम ने शानदार जज्बा दिखाते हुए न सिर्फ वापसी की बल्कि पाकिस्तान को धूल चटाकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। यह मैच बेहद तेज रफ्तार वाला रहा। दोनों टीमों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और गोल करने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार आशीष तानीपूर्ति ने 12वें मिनट में गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने जोरदार वापसी की। 27वें मिनट में आदिल ने भारतीय गोलकीपर को छका कर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। हाफ टाइम तक दोनों टीमें बराबरी पर थी। तीसरे क्वार्टर में 35वें मिनट में अली शाहरुख ने गोल कर भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई, लेकिन पाकिस्तान ने तुरंत जवाब दिया और महज 2 मिनट के बाद मोहम्मद फरहान असलम ने गोल कर स्कोर को 2-2 कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने मैच में पहली बार बढ़त हासिल की जब 42वें मिनट में उजैर अहमद ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को 3-2 से आगे कर दिया। जहां पाकिस्तान की टीम का दबदबा दिख रहा था, लेकिन आखिरी क्वार्टर में भारतीय टीम ने ऐसा खेल दिखाया जिसने पूरे मैच की कहानी बदल दी। आशीष तानी ने पहले भारत को बराबरी दिलाई और फिर 53वें मिनट में अपना तीसरा गोल दागकर हैट्रिक पूरी की। इस गोल ने भारत को 4-3 की बढ़त दिला दी और पाकिस्तान दबाव में आ गया। मैच खत्म होने से पहले तानी ने अपना 4th गोल भी दाग दिया और भारत की जीत निश्चित कर दी। उनके 4 गोलों के दम पर भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। आशीष टीम के प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आए, उन्हें फाइनल भी जीतने का भरोसा है।
2: काफी अच्छा खेले हम लोग और मेरी टीम ने काफी मेहनत किया और एफर्ट मार रहे थे और आज हम लोग का सेमीफाइनल था पाकिस्तान के साथ और हम लोग उसमें विन किए हैं। अब हम लोग का फाइनल है कल, तो हम लोग उसमें भी विन करेंगे।
1: हालांकि खिताब के लिए टक्कर कांटे की होगी क्योंकि सामने मेजबान टीम होगी। सेमीफाइनल में जापान के खिलाड़ियों की मलेशिया के खिलाफ 8-1 की जीत से हौसले बुलंद होंगे, लेकिन भारतीय टीम अगर आज की तरह कल भी एकजुट होकर खेलने में कामयाब रही तो चैंपियन बनना मुश्किल नहीं होगा। ज्योत्सना पांडे, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो हॉकी के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ आज भारतीय खिलाड़ियों ने, युवा खिलाड़ियों ने बेहद दमदार प्रदर्शन किया और ये दिखा दिया कि हॉकी हमारी ताकत है। इस खेल में हमारा दबदबा क्यों है? क्योंकि जूनियर वर्ग से ही हम इतना शानदार प्रदर्शन करते हैं। और जब हॉकी की बात आती है तो जाहिर है उसके बाद बात क्रिकेट की भी आती है। आईपीएल के फटाफट अंदाज के बाद अब टेस्ट के जरिए भद्रजनों के इस खेल के सबसे कठिन और लंबे फॉर्मेट में भारतीय खिलाड़ियों की परीक्षा होने वाली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच कल से न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। भारतीय टीम करीब 6 महीने बाद कोई टेस्ट मैच खेलने मैदान पर उतरेगी। हालांकि हम आपको बता दें कि यह टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC का हिस्सा नहीं है, फिर भी मुकाबला जोरदार रहेगा। मुकेश से सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले भारत के पास अपने टीम संयोजन को आजमाने का ये अच्छा मौका है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि यशस्वी जायसवाल और उपकप्तान KL राहुल पारी की शुरुआत करेंगे। दोनों का हालिया फॉर्म शानदार रहा है। राहुल ने इस IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 593 रन बनाए थे। दूसरी ओर जायसवाल ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 427 रन बनाए। नंबर 3 के लिए साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के बीच कड़ा मुकाबला है। कर्नाटक के कप्तान पडिक्कल ने पिछले रणजी सत्र में 5 मैचों में 532 रन बनाए थे, जिसमें उत्तराखंड के खिलाफ 232 रन की पारी भी शामिल थी। दूसरी ओर IPL में 722 रन बनाने वाले साई सुदर्शन टेस्ट क्रिकेट में अभी तक खुद को पूरी तरह साबित नहीं कर सके हैं। फिर भी टीम इंडिया के चीफ कोच गौतम गंभीर ने संकेत दिया है कि साई सुदर्शन टीम की पहली पसंद होंगे।
4: He's only played what? Handful of test matches and he started his test career in England, which we all know is not the easiest place. And he's had a phenomenal run in IPL as well and we got to give him a fair chance.
3: Wicketkeeper बल्लेबाज ऋषभ पंत का नंबर 5 पर बल्लेबाजी करना लगभग तय है। हालांकि पंत के लिए इस बार IPL उनके करियर के सबसे खराब सीजन में से एक रहा है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में पंत ने 2018 में शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी टीम के दो प्रमुख ऑलराउंडर हो सकते हैं। सुंदर ने पिछली टेस्ट सीरीज में दक्षिण

0: दीपिका के खिलाफ नंबर तीन पर बल्लेबाजी की थी। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी लगातार अपनी गेंदबाजी में सुधार कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी टीम को अतिरिक्त तेज गेंदबाज का विकल्प भी देगी। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को आराम दिए जाने के बाद भारत को लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर की तलाश है। टीम में नए खिलाड़ियों को भी जगह दी गई है। ऐसे में विदर्भ के हर्ष दुबे राजस्थान के मानव सुधार में से किसी एक को मौका मिल सकता है। इसका संकेत टीम के सहायक कोच रियान टेन की बातों से भी मिलता है।
1: Look, I think the chance of both of them playing in the test are probably pretty small. We haven't finalized the combination, but I'd imagine, you know, Kuldeep will play and Washi will play, and then one of those two will play.
0: Washington Sundar के साथ कुलदीप यादव दो मुख्य स्पिनर होंगे। मानव के साथ हर्ष दुबे के भी अंतिम 11 में जगह बनाने की संभावना है। चीफ कोच गौतम गंभीर ने कहा भी है कि वे श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज से पहले चार स्पिनर को तैयार करना चाहते हैं।
2: This probably is the only test match where we can think of or looking at someone who could be a fourth spinner, because after this we go to Sri Lanka and we might have to carry four spinners as well there. So this is an ideal opportunity to try someone who could be a long-term fourth spinner as well.
0: अफगानिस्तान ने 2018 में बेंगलुरु में भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, जिसे मेजबान टीम ने दो दिन के भीतर ही जीत लिया था। इसके बाद से जून 2026 तक अफगानिस्तान ने 11 और मैच खेले हैं। इसी अवधि में भारत ने 67 टेस्ट मैच खेले हैं। 2018 की टीम से केवल केएल राहुल ही वर्तमान भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, जबकि अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्ला शाहिदी और बल्लेबाज रहमत शाह भी उस मैच में खेले थे। ये मैच जून के महीने में उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच खेला जाएगा और इसमें दोनों टीम की शारीरिक फिटनेस की भी कड़ी परीक्षा होगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
3: योगासन की बात हो गई, हॉकी की बात हो गई, क्रिकेट की बात हो गई और अब माइंड गेम शतरंज की बात। दरअसल ओस्लो में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने विश्व चैंपियन और हमवतन डी गुकेश पर क्लासिकल बाजी में शानदार जीत हासिल करके नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के खिताब की दौड़ में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। प्रज्ञानंदा इस जीत के बाद शीर्ष पर काबिज अमेरिका के वेस्ली सो से सिर्फ आधा अंक पीछे रह गए हैं। अब सिर्फ एक बाजी होनी है और वो निर्णायक साबित होगी। क्या कुछ रहा प्रदर्शन प्रज्ञानंदा का नवी बाजी में और क्या है संभावना फाइनल को लेकर, सुनते हैं विशाल से।
4: शह और मात के इस खेल में प्रज्ञानानंद ने काले मोहरों से खेलते हुए शुरुआत में ही बेहद मजबूत निम्जो इंडियन सैमिश सेटअप को चुना। दूसरी तरफ सफेद मोहरों से खेल रहे विश्व चैंपियन डी गुकेश ने शुरुआती चालों से आक्रामक शुरुआत की और बोर्ड के सेंटर पर नियंत्रण बनाने का प्रयास किया, लेकिन प्रज्ञानानंद ने सीधे तौर पर गुकेश की डबल सी पोन संरचना की कमजोरी को निशाना बनाया। इस मुकाबले में गुकेश की आक्रामकता का जवाब प्रज्ञानानंद ने संयम से दिया। वे लगातार विश्व चैंपियन की चाल का सटीक जवाब देते रहे। ऐसे में धीरे धीरे गुकेश की सफेद मोहरों के जरिए बनाई गई आक्रामकता खत्म हो गई। खेल की 34वीं चाल तक प्रज्ञानानंद ने पोजीशन पर पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया था, जिसके बाद स्थिति को भांपते हुए गुकेश ने अपनी हार स्वीकार कर ली। प्रज्ञानानंद ने गुकेश को क्लासिकल बाजी में हराकर पूरे 3 अंक हासिल किए। इससे वे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। 9वें दौर के बाद प्रज्ञानानंद 15 अंकों के साथ अमरीकी ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो के 15.5 अंक से सिर्फ आधा अंक पीछे दूसरे स्थान पर हैं। इस जीत के बाद प्रज्ञानानंद ने अपनी 9वीं बाजी के बारे में बताया। फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा भी 14.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहकर खिताब की दौड़ में बने हुए हैं। जाहिर है अब बचे सिर्फ एक राउंड में 3 खिलाड़ियों के पास खिताब जीतने का मौका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी खिलाड़ी खिताब जीतेगा वो पहली बार नॉर्वे शतरंज चैंपियन बनेगा। प्रज्ञानानंद निर्णायक दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर का सामना करेंगे, जबकि वेस्ली सो का मुकाबला अलीरेजा से होगा। महिला वर्ग में मौजूदा विश्व ब्लिट्ज चैंपियन बिबिसारा असा उबायेवा ने एक राउंड शेष रहते हुए निर्णायक बढ़त लेकर खिताब अपने नाम कर लिया। उनके 16.5 अंक हैं। भारत की दिव्या देशमुख 10 अंकों के साथ 5वें और कनेरू हम्पी 9 अंकों के साथ सबसे नीचे 6 स्थान पर हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
3: फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में इस समय चेक गणराज्य के जैकब मैसी का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के साथ चल रहा है। दूसरा सेमीफाइनल इटली के दो खिलाड़ियों मेटियो अर्नाल्डी और फ्लेवियो कोबोली के बीच खेला जाएगा। इससे पहले कल पोलैंड की माया खोलिंस्का और रूस की मीरा एंड्रीवा ने अपने अपने मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन

ओपन टूर्नामेंट के मेंस डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा कर्णन की हार के साथ ही भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। भारत की जोड़ी को मलेशिया के गोह जेफेई और नूर इजुद्दीन ने आसानी से 12-21, 10-21 से हराया। फुटबॉल की भी बात करते हैं। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में कल भारतीय महिला टीम गोवा के मडगांव में बांग्लादेश से मुकाबला करेगी। भारत क्षेत्रीय टूर्नामेंट में अपना रिकॉर्ड 6 खिताब जीतने की कोशिश करेगा। भारतीय टीम लगातार 5 खिताब जीतने के बाद पिछले 2 अवसरों पर फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी। बांग्लादेश ने 2022 और 2024 में दोनों मौकों पर नेपाल को हराकर ट्रॉफी जीती थी। श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज रोम डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले 4th एशियाई एथलीट बन गए हैं। उन्होंने कल पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 92.62 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए जीत हासिल की। 23 वर्षीय पथिराज पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा भी 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले शीर्ष एशियाई थ्रोअरों में शामिल हैं। कोलमपुर में द्वितीय एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में भारत ने महिला और पुरुष वर्गों में कांस्य पदक जीता। आज समाप्त हुई चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में कंबोडिया ने स्वर्ण और श्रीलंका ने रजत पदक जीता। महिला वर्ग में कंबोडिया ने स्वर्ण, मलेशिया ने रजत पदक जीता। प्रतियोगिता में एशिया के विभिन्न देशों के करीब 200 पैरा खिलाड़ियों ने शिरकत की। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्सकैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं को

0: उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि

देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद।

0: दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
1: The negotiating team which came from
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर-18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम

0: सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर-18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under-18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: Surat sirf swachhta aur circular economy tak hi simit nahi hai, balki green growth ke dusre madhyamon ka bhi abhutpurva gati se vistar ho raha hai. Surat aisi vyavastha banane mein juta hai jahan sadkon par chalne wali sari basein electric hongi. Saath hi yahan Surat metro ka bhi vistar ho raha hai. ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में गुलाम अली को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत में गुलाम अली को। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 9:30 हुए हैं। अब सुनिए पंजाबी साप्ताहिक प्रोग्राम मिट्टी दी खुशबू।

हाँ जी दोस्तों, अगले जिहड़े अपने कोल मैसेज पहुँचे आ वो लिखिया वा फाजिलका पंजाब तों भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी शालनी ते टिवानशी खेड़ा ते दादरी गेट भिवाणी तों कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल ते कुणाल मेहरा ते मैसगढ़ नाभा तों सोमदत्त ज्योति ते इन्हां दे नाल कौरव ते गुरमन्नत ते इसे तरह मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश तो राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा ते कार्तिक आर्यन वर्मा, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ तो महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, योगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी ते दिशा गोस्वामी, बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ तो बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश मिथलेश वर्मा ते इन्होंने लिखा वा मुंगीसापुर तो मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शविस्ता पालक लुबना ते यस मंसूरी। बहुत बहुत शुक्रिया जी तुहाडा। पटेल नगर मलोट तो रमेश कुमार जाजोरिया, गीता

मेल भी पहुँच गया। इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगला मेल पहुँचा दोस्तों अपने कोल, पटेल नगर मलोट तो रमेश कुमार जाजोरिया, गीता राणी, गगनदीप आरजू जाजोरिया, तेरे नाल गुड्डू। तो इस तरह अगला मेल पहुँचा गुजरात गांधी ग्राम तो प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जोहरी का। तो इस तरह रिंगनी छत्तीसगढ़ तो दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का, पेंड पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश तो सत्येंद्र कुमार चनसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चनसोलिया, तो भोपालगढ़ राजस्थान तो धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, तो पूजा परिहार। मेरठ कैंट तो दिग्दर्शन ते कविता गोड़ का मेल भी पहुँच गया, इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसिला जिला चूरू राजस्थान तो संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल कार्तिक सोनगरा, तो गिरडी झारखंड तो मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन बाबू, अहद मिफरा नवाज, बेबी चाहत ते सादिया, इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह दोस्तों अगला मेल पहुँचे अपने कोल पोटियां कला दुर्ग तो संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, तो सीमा साहू का, तो मोताला महाराष्ट्र तो विजय सुरलकर, रतनवाला आरती गोरी, तो ओम कुमार सुरलकर, तो दिल्ली तो बोधराज खोरवाल, कमला राणी, गीतिका खोरवाल, तो भानु प्रकाश। जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश तो शरवण कुमार प्रजापति, शिवम आर्यन, लविश ते मुनीश देवी प्रजापति। तो इस तरह दोस्तों अगला मेल अपने कोल पहुंचा वा कल्याण मलक्का जिला बठिंडा पंजाब तो अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया परमिंदर, सचनूर ते मनिंदर सिंह, इन्हों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान तो दतार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, तो ढाणी लाल खां तो जावेद खान, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बाना, विनोद खां, मुखराम, आरिफ यान खां, तो इन्हों के नाल अरशद खां, तो अरमान खां, इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह अगला मेल पहुँच गया दोस्तों अपने कोल लिखण वाले आ कोहका भिलाई तो उत्तम सिंह चंगेल, मोरस चंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष चंगेल, तो नंदनी चंगेल का, इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो संबलपुर काकेर तो फागूराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, तो अगला मेल पहुँचा दोस्तों अपने कोल लिखा वा इन्होंने नीमनाबाद सफीदो मंडी डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणे तो जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, कमलजीत कौर, इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहाली पंजाब तो बब्बल मल्होत्रा, तो ओम प्रकाश मल्होत्रा का मेल भी पहुँच गया, इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहारी कलोनी शाहदरा दिल्ली तो तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चैतन्य मस्किन, चंडीगढ़ तो राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना का मेल भी पहुँच गया। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणे तो रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, तो गुरशब सिंह राहुल का भी मेल पहुँचा, इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुलापुर उत्तर प्रदेश तो मुहम्मद फरमान, सलमान, इरफान इसरार, तो नरगिस खातून। तो इस तरह दोस्तों झज्जर हरियाणा तो बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत ते मयंक भाटिया का मेल भी पहुँच गया, इन्हों का भी शुकराना। तो शिवाजी नगर वडाली देशमुख तो राजेश खोबरखेड़े, शिव सागर खोबरखेड़े, इंद्राताई खोबरखेड़े, तो वार्ड नंबर 23 हरिनगर गुड़गांव हरियाणे तो राय सिंह शेखावत, तो 75 NP तो बजरंग सिंह शेखावत, भुपेंद्र सिंह, जयवर्धन, वर्षपान, भावेश, इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह दोस्तों बहलोन नगर जिला हनुमानगढ़ तो प्रेम सिंह बड़वाल, सुखविंदर कौल, लखवीर बड़वाल, राणो, कृष्णा छिंदो, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल, तो चटकू मटकू, बहुत बहुत शुक्रिया जी बड़वाल साहब मेल करने वास्ते। तो गुन्नौर तो आदिल कमर तस्दीक, तो अली मुजफ्फर अली का मेल पहुँचा, इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोन लाल जांगड़, मंजू जांगड़, मनोज, सुनील, संजय, रवि, शिव प्रकाश मेल किया रैसनगर तो, कहिंदे प्रोग्राम बहुत वधिया लग रहा वा, पिछला प्रोग्राम भी जिहड़ा तुसीं फोन ते कीता सी ओह वी बहुत वधिया लग्या, शुक्रिया जी तुहाडा बहुत बहुत। तो कहिंदे जसवीर सिंह जी, बलविंदर

हाँ जी दोस्तों, हुण तुहाडे जिहड़े खत पहुँचे उन्हां नूं आपां शामिल करिए। आ खत पहुँचे पिंड 14 SGM तों राजू, सीमा, पारस, मानवी, दलीप, संतोष ते करतिका दा। इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। ते इस तरह अगला खत पहुँचे अपने कोल कवाई सालपुरा जिला 12 राजस्थान तो सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता ते अभिषेक श्रीवास्तव दा। ते DLF कलोनी रोहतक तो महेंद्र शाह, हरिंदर शाह, जितेंद्र शाह ते मानसी शाह दा। ते कुड़ियाणे तो मलकीत सिंह कुड़ियाणा, मनजीत कौर, दिपेंद्र सिंह बराड़, गुरशब्द सिंह बराड़। लुधेसर तो पप्पू रामगाट, संतोष देवी, लक्ष्मी देवी, प्रियंका, साक्षी, रुचिका देवी। गंगानगर तो बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह रनेजा, दिनेश कुमार ते नरेश कुमार शर्मा। ते बागा पुराणा तो गगनदीप कौर, गुरप्रीत कौर, परमजीत कौर, पाल सिंह ते परमजीत सिंह। ते हनुमानगढ़ टाउन तो दिपेंद्र कांत, पिंड 4 जबी तो महेंद्र सिंह आहूजा, मेजर सिंह। ते आ खत पहुँचे अपने कोल 58 NP रहसा नगर तो सुल्ताना राम, मलखट, सरस्वती देवी, हरबंस लाल, बनवारी लाल, गोपी राम, ललित कुमार, नरेंद्र, मीनाक्षी, गीता, मोनिका, सुखराम, शांति देवी, तेरा दा पूरा परिवार। पिंड कैरों जिला तरन तारण तो गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहत ते गुरशब्द। ते पिंड दौलतपुरा श्री गंगानगर तो शोलाल बैनीवाल, शांति बैनीवाल, मंजू मोहित ते हेमंत, बठिंडा रोड, बठिंडा पंजाब तो जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, JS नायक, शोभा नायक दा खत भी पहुँच गया। इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरायण तो बनवारी लाल जयपाल, विमला जयपाल, सोनू जयपाल, ममता जयपाल, मोक्ष, दिशा, सुशांत ते विक्रम जयपाल। तो डब वाले हरियाणियों JK बाकोलिया, सुनीता बाकोलिया, संजय अनिल ते मीनू बाकोलिए का खत भी पहुँच गया। तो चौटाला रोड डब वाले तो अंग्रेज संघू, सुखविंदर कौर, रॉबिन ते डिंपल। तो अलिका डब वाली तो ही बसंत सिंह, चन, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। तो पिंड शेरगढ़ तहसील मलोट तो बलराज राम कालवा, भोला राम, लक्ष्मी, कुदरत, मनप्रीत कालवा, मेवा सिंह, हरप्रीत ते शिवराज मान दा खत पहुँचा। ते मलोट कैंप पंजाब तो सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया अनमोल, धर्मपाल, रमेश मिगलानी दा खत पहुँचा। इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। मंडी गोलू वाले तो ब्रजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान। तो मुकसरों बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत ते निशु। मखू फिरोजपुर तो बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर, मुनीश बजाज, खुशी राम राणवा, ब्रिजलाल पूनिया, जीतनाथ, काना राम दुसाद, मोहन लाल झाजड़िया, महेंद्र आचार। इन्हों ने खत पाया अपन गोविंदपुरा 18 JG गंगानगर तो, फाजिलका रोड मलोट पंजाब तो कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमनदीप गिल, बलजीत गिल, दिशा मोला ते जगतार जग्गा। फाजिलका पंजाब तो भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल ते टिवंशी। करनपुर तो शिव कुमार सेठी, सुनीता सेठी, कमल, ज्योति, शब्द ते वाणी। पिंड सूरेवाला थेड़ तो सतनाम सवना, सुमन, जसविंदर जस्सी, अंशदीप, तमन्ना, हरमन, बेबी जया ते परमवीर। रावर करनाल तो ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। ते मसीता डब वाली तो दर्शन लोट, मूर्ति राणी, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, हनी लोट, सारिका ते निहारिका। ते चूनावड़ तो हरचंद राम नायक, सरस्वती देवी, मनिंदर सिंह, निर्मला देवी, सुनीता।

अभी आप सुन रहे थे पंजाबी साप्ताहिक प्रोग्राम मिट्टी दी खुशबू। हम आकाशवाणी के काटनसरी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुने मोहम्मद रफी के स्वर में। फिल्म का नाम है जानवर।

आइए श्रोता, वो अब सुनिए लता मंगेशकर को। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, धुन तैयार की है रवि ने, और फिल्म है आंखें।

0: कभी कभी।
1: आइए श्रोताओं अब सुने हसरत जयपुरी की रचना, जिसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, आवाज मोहम्मद रफी की है और फिल्म है पगला कहीं का।

आइए श्रोताओं, अब सुने मुकेश मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर को। फिल्म है दिल ने फिर याद किया।

आइए अब सुने मर्यादा फिल्म का गीत मुकेश के स्वर में। रचना है आनंद बख्शी की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। आइए सुने।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुने, मुकेश के स्वर में, फिल्म है ठोकर।

आइए श्रोताओं अब सुने नितिन कुमार, अलका याग्निक और सब्बीर कुमार को फिल्म तेजाब में।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 11 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित की जाएंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने

कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में पांच प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।